मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 जून 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स

0: रन टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथेन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथेन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। आइए आप और हम सुनते हैं श्री राम चरितमानस।

पार्वती के मन में शिव जैसे बावले वर की कामना जगाने वाले नारद जी को जब हिमवान तथा उनकी पत्नी मैना के विषाद का समाचार मिला, तो उन्होंने पार्वती के पूर्व जन्म की कथा बताकर हिमवान दंपति को सांत्वना दी। शोकाकुल हिमवान तथा मैना को ये ज्ञात नहीं था कि भ्रमवश सीता का वेश धारण करने के कारण शिव ने सती का त्याग किया था तथा सती ने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया था। फिर उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और हजारों वर्षों की तपस्या करके शिव को पुनः वर रूप में पाया है। ये कथा सुनकर मैना, हिमवान, सभी स्त्री पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, समस्त नगर निवासी प्रसन्न हुए और बारातियों के स्वागत सत्कार में जुट गए। प्रस्तुत है जेवनार विवाह मंडप में निर्मित वेदी, ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं का आह्वान, उपस्थित नारी समुदाय के व्यंग्य विनोद का ये प्रसंग।

अभी आपने सुनी श्री राम चरितमानस, स्वर अनुराधा पौडवाल का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सुविचार, जिस प्रकार थोड़ी सी औषधि बहुत से रोगों का नाश कर देती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की स्तुति बहुत से दुखों और कष्टों का नाश कर देती है। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत चोरी चोरी फिल्म से, लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया। शैलेंद्र ने लिखे हैं गीत के बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
0: चले
1: ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश का गाया। शैलेंद्र ने लिखे हैं गीत के बोल, संगीत शंकर जयकिशन,

0: फिल्म संगीत का ये आखिरी गीत मेरा नाम जोकर।
1: ए भाई जरा देख के चलो।
0: मन्ना डे, नीरज और शंकर जयकिशन।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: बड़ा वफादार है। आता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान में माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर सवेरे के 7 बज रहे हैं। आइए सुने कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

0: खुशबू के डेरे।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं शराफत अली लेकर हाजिर हूँ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सवेरा हो चुका है, उठिए जागिए दौड़िए भागिए।

ये कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत, आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल के संग। दिन रोज निकलता है, सवेरा रोज होता है, और ये सूरज कहता है आप मेरी तरह चमक उठिए।

ये कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत, आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल के संग आप इसे सुन रहे हैं। दोस्तों, अच्छे विचार मन को शक्ति देते हैं, अच्छे शब्द रिश्तों को और अच्छे कर्म जीवन को सुंदर बनाते हैं।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। घर हो दफ्तर हो कार हो या बाजार, हम हर वक्त आप

आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल के संग आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और अब कार्यक्रम में बदलते हैं मूड।

0: दोस्तों, सवेरे सवेरे हल्की ठंडक है और दिन चढ़ते चढ़ते गर्मी तेज हो जाती है।
1: बरसात के मौसम में
0: तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं कि जोधपुर पर बरसात झूम

आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल के संग आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर शाम एक नया अनुभव दे जाती है।

जी हाँ दोस्तों, तो चलूं यानी कल सवेरे आपसे फिर मिलेंगे। ये कार्यक्रम था कुछ बातें कुछ गीत, और इसका सफर आपने तय किया शराफत अली के साथ।

0: 64.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में होंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मुड़ दिया है।
4: Today we have a new national health policy.
5: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
4: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
2: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
6: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल

0: वाले टीईटी के चार पेपर से जब्त किए हैं, आगे की जांच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ रोड कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइक्लिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ में मिक्स हो गया, उसकी रिसाइक्लिंग करना कठिन हो जाती है।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहैम और हैरी केन के 1-1 गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर

0: पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल
1: जी। लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई

0: 1,430 as rescuers continue search for survivors. And India's Kidambi Srikanth enters final of men's singles event at US Open Badminton in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:30 हुए हैं। आइए सुने मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार।

0: श्रोताओं, दुनिया में रहने की सबसे अच्छी दो जगह हैं, या तो किसी के दिल में या फिर किसी की दुआ में।
1: दिल में और दुआओं में रहने की बात हो रही है तो दोस्तों, एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से बेहतर है। वन ब्यूटीफुल हार्ट इज बेटर देन अ थाउजेंड ब्यूटीफुल फेसेस, यानी कि एकम सुंदरम हृदयम सहस्त्रम सुंदरम मुखम श्रेष्ठम।

0: तो इन्हीं खास पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार। श्रोताओं, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और मेजबान हिमांशु अवस्थी, और मेरे साथ मौजूद हैं
1: न्यू नूतन सोनी।
0: दोस्तों, नमस्कार एक ऐसा शो है जहां हर सुबह सूरज की पहले किरण अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नई सोच और एक नया मौका लेकर आती है। हर दिन हमें एक नया मौका देता है खुद को पहले से बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों से सीखने का और जिंदगी को एक नई नजर से जीने का। तो आइए इस नई सुबह की शुरुआत करें एक शांत मन के साथ, सकारात्मक सोच के साथ और अनगिनत उम्मीदों के साथ। लेकिन इस सफर में आगे बढ़ने से पहले आइए मिलते हैं उन खास लोगों से जो पर्दे के पीछे रहकर अपनी मेहनत से इस पूरे सफर को और भी ज्यादा खूबसूरत और रोमांचक बनाते हैं, सिर्फ आपके लिए, यानी हमारी तकनीकी टीम से।
1: तो आज के इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए जो टेक्निकली टीम हमारे साथ है, उसमें ट्रांसमीटर पर है पारसपुरी गोस्वामी और कैलाश चंद्र सोलंकी। वहीं कंट्रोल रूम से हमारे साथ बने हुए हैं सुनील जयपाल। दोस्तों, अनाउंसर ऑन ड्यूटी यानी कि कंसोल पर उंगलियां थिरकाते हुए आज हमें म्यूजिकल ट्रैक जो सुनाएंगे वो है शराफत अली। और एफएम पर उद्घोषक हैं सत्येंद्र। और पूरे कार्यक्रम का संयोजन किया है यानी कि कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश लामरोड़।

तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक नई सुबह, नई जानकारी और बेहतरीन संगीत के साथ आने वाले सफर के लिए, क्योंकि नमस्कार में अब हर पल होगा खास।

0: दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हमारे पास आती हैं और चली जाती हैं। पैसा आता है, शोहरत आती है, पद भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, लेकिन एक चीज़ अगर एक बार चली जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो है लोगों का भरोसा। और भरोसा
1: बिल्कुल।
0: बनता है आपकी ईमानदारी से।
1: हाँ दोस्तों, ईमानदारी एक ऐसी क्वालिटी है, लॉयल्टी, जो इंसान को कहीं ना कहीं, आपने नोट किया होगा, भीतर से मजबूत बनाती है, और धन, पद और प्रसिद्धि, तो ये तो क्या चीजें हैं कि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया सम्मान जो है ना, वो जीवन भर साथ रहता है। और ईमानदारी जो है, व्यक्ति को भले ही सफलता मिलने में थोड़ा उसमें समय लगे, लेकिन उसकी जो सफलता फिर मिलती है, वो बड़ी स्थायी, और स्थायी होने के साथ साथ सम्मानजनक भी होती है।
0: दोस्तों, सच की राह पर चलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन लेकिन मंजिल वहीं मिलती है जहां ईमानदारी का नूर होता है।

0: दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं ईमानदारी की, उन अहमियत की और उन छोटी छोटी बातों की जो हमें अक्सर एक बेहतर इंसान बनाती हैं। तो आखिर ईमानदारी होती क्या है? दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि ईमानदारी का मतलब सिर्फ सच बोलना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईमानदारी का मतलब होता है अपने काम को पूरी लगन से करना, किसी का हक ना मानना और गलत रास्ता ना अपनाना और अपने दिल की आवाज़ सुनना। अगर कोई हमें नहीं देख रहा और फिर भी हम अपना काम सही तरीके से करते हैं तो वही असली ईमानदारी है।
1: और बिल्कुल, ईमानदारी जो है केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी होनी चाहिए। जब हम अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों और अपने जो कर्तव्य होते हैं उनको पूरी लगन के साथ निभाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में ईमानदार कहलाते हैं। और दोस्तों, आज के दौर की बात करें तो जहां कई बार लोग जल्दी सफलता पाने के लिए गलत रास्ते चुन लेते हैं, वहीं ईमानदारी हमें सही दिशा दिखाती है। और ईमानदार व्यक्ति जो होता है ना, वो रात को सुकून की नींद सोता है, क्योंकि उसे अपने कर्मों का कोई पछतावा नहीं होता है। और अक्सर दोस्तों हम सुनते हैं ना कि कर्म जो है लौट कर जरूर आते हैं। हमें जब ये कोई लाइन कहे कि कर्म लौट कर आते हैं, तो ये सुनकर हमें डर ना लगे, हमें सुकून महसूस हो।

दोस्तों, ईमानदारी की दौलत बड़ी अनमोल होती है। जिसके पास होती है उसकी पहचान अलग होती है। इसी पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, तो क्यों ना अपने श्रोताओं के साथ साझा कर दूं। दोस्तों, एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये मेरी नहीं है। फिर चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई।

0: उसने फिर मना कर दिया कि नहीं, ये मेरी नहीं है। आखिर में उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई गई तो वो खुशी से बोला, हाँ ये मेरी है। उसकी ईमानदारी देखकर भगवान ने तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे दी। दोस्तों कहानी छोटी है लेकिन सीख बहुत बड़ी। ईमानदारी का फल देर से जरूर मिलता है लेकिन मिलता जरूर है।
1: बिल्कुल दोस्तों, स्टूडेंट्स हो चाहे एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो या ऑफिसर हो, हर एरिया में ईमानदारी सफलता की एक तरह से मजबूत नींव होती है। परीक्षा में नकल करके अच्छे अंक तो मिल सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं, और बिजनेस में छल कपट से प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जा सकता है लेकिन ग्राहकों का विश्वास नहीं। ईमानदारी हमें आत्मविश्वास देती है, कॉन्फिडेंस। जब हम सच बोलते हैं ना और सही काम करते हैं तो हमें किसी बात का डर बिल्कुल नहीं रहता। यही आत्मविश्वास हमें जीवन की चुनौतियां का सामना करने की शक्ति देता है।

0: दोस्तों, झूठ के पांव भले तेज चले मगर दूर तक नहीं जाते, सच के कदम धीरे सही मगर मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं।
1: श्रोताओं, 9 बजने वाले हैं, हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाश

0: वाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। पचपदरा रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी। मुख्यमंत्री समीक्षा के लिए आज रिफाइनरी जाएंगे। पल्स पोलियो रविवार पर आज प्रदेश भर में 1 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य। और मौसम में बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कृषि विभाग ने खरीफ बुआई के लिए तेज बारिश का इंतजार करने की सलाह दी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर हर बार की तरह लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह कार्यक्रम के सामूहिक प्रसारण की व्यवस्था की गई है। प्रदेश भाजपा की ओर से पार्टी कार्यालयों और अन्य स्थानों पर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण रखा गया है। प्रधानमंत्री आज सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल दोपहर विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति हरमीनी ने उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने सेशेल्स को हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त बताते हुए कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते और मजबूत होंगे। बालोतरा में पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इंतजामों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रिफाइनरी पहुंचेंगे और कार्यक्रम स्थल तथा रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे। हमारे बालोतरा संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम की सुचारू व्यवस्था और किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए जिला प्रशासन के साथ HPCL भी अलर्ट मोड पर बना हुआ है।
1: प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की दृष्टि से मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा, आगंतुकों के प्रवेश पास प्रोटोकॉल तथा अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि कार्यक्रम का सफल एवं सुचारू संचालन किया जा सके। गौरतलब रहे कि रिफाइनरी का लोकार्पण पहले 21 अप्रैल को होना था, लेकिन उद्घाटन से एक दिन पहले एक यूनिट में आग लगने की वजह से वो कार्यक्रम टल गया था। करीब 90,000 करोड़ की लागत से निर्मित ये BS6 मानक की अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
0: वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 आज प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 269 पदों के चयन पर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक एक पारी में ये परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के सफल, सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों पर CCTV निगरानी, वीडियोग्राफी, बायोमेट्रिक सत्यापन और मेटल डिटेक्टर जांच के साथ ही आवश्यक पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज पल्स पोलियो रविवार है। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 3 दिन के इस राष्ट्रीय अभियान के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित 59,000 से अधिक पोलियो बूथों पर यह दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ जोगाराम ने बताया कि इस अभियान में मोबाइल और ट्रांजिट टीमें

0: बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक तथा अन्य आवागमन स्थलों पर भी बच्चों को दो बूंद जिंदगी की दवा देंगे। टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉ रघुराज सिंह ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
1: इस अभियान के अंतर्गत हमने 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर हमने 60,000 के करीब बूथ बनाए हैं जहां पर कि हम बच्चों को दवा पिलाएंगे। किसी कारण अगर दवा पीने से बच्चे छूटे तो फिर हम दूसरे दिन और तीसरे दिन घर घर जाकर भी उन बच्चों को ढूंढ करके उनको भी हम ड्रॉप पिलाएंगे, जिससे कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहें। मैं उम्मीद करता हूं सभी अभिभावकों से कि वो सभी अपने बच्चों को ये ड्रॉप आवश्यक रूप से पिलाएं।
0: गौरतलब है कि भारत में साल 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। बीते 15 वर्षों में देश भर में कोई भी पोलियो का नया केस सामने नहीं आया है। 27 मार्च 2014 को भारत को पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि सरिस्का कभी बाघ पूरी तरह विलुप्त हो गए थे, लेकिन अब वहां 53 बाघों का निवास है। उन्होंने इसे प्रकृति के पुनरुद्वार, वैज्ञानिक संरक्षण और सामूहिक संकल्प का एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। इस बीच केंद्रीय मंत्री आज इस संबंध में अलवर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में बाघों के पुनर्स्थापन में योगदान और उल्लेखनीय सेवा देने वाले वनकर्मी, एनजीओ और पर्यावरण कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून पूर्व की बारिश और मौसम में बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। राज्यभर में कई स्थानों पर हल्की बारिश के बीच किसानों ने खेतों में खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि विभाग ने किसानों को बुवाई के लिए कुछ अच्छी बारिशों का इंतजार करने की सलाह दी है, जिससे जमीन में नमी बनी रहे। कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर के प्रभारी दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि किसानों को जल्दबाजी में बुवाई से बचना चाहिए।
2: तब हमने जब बिजाई करनी है तो उसमें ध्यान रखना है कम से कम हमारी 1 या 2 अच्छी बरसात हो जाए, तो उसमें क्या है कि हमारे जो जमीन की हीट निकल जाएगी, वरना अगर जमीन गर्म रहेगी तो हम कोई भी बिजाई कर देते हैं तो उससे हमारे जो बीज है उसके बीज की पैदावार कम होने का, बीज खराब होने के ना चांस बने रहेंगे। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि जब तक बरसात अच्छी नहीं हो, अगर देसी भाषा में कहें तो 5-6 उंगल बरसात नहीं हो, तब तक ना किसानों को अब क्या बिजाई की तरफ नहीं जाना चाहिए।
0: इस बीच मॉनसून की गतिविधियां आगे बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत के कई भागों में आज तेज बारिश तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली कड़कने और तेज हवा का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। गौरतलब है कि देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले इन 6 जवानों में झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव के सुरेंद्र मोगा भी शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। पचपदरा रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी। मुख्यमंत्री समीक्षा के लिए आज रिफाइनरी जाएंगे। पल्स पोलियो रविवार पर आज प्रदेश भर में 1 करोड़ बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाने का लक्ष्य। और मौसम में आए बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कृषि विभाग ने खरीफ बुआई के लिए तेज बारिश के इंतजार करने की सलाह दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

माय डियर रेडियो लवर्स, समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां आपसे शेयर करते हैं और सुनते हैं ढेरों गीत। आइए अब सुनते हैं एक नगमा।

0: और दशा दोनों को बदल दिया। तो आइए जानते हैं 28 जून को इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। श्रोताओं, 28 जून 1838 को सिर्फ 19 साल की आयु में महारानी विक्टोरिया का भव्य राजाभिषेक लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में हुआ था। यह समारोह ब्रिटिश इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बना। इस ऐतिहासिक अवसर को देखने के लिए लगभग 4,00,000 लोगों से ज्यादा लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे।
1: थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और बात करते हैं 28 जून 1894 की। इस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने लेबर डे यानी कि मजदूर दिवस को आधिकारिक राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए। ये निर्णय पुलमेन हड़ताल के बाद श्रमिकों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने और उनके योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया था।
0: श्रोतों, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसने प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक अंत किया। फ्रांस के वर्साई महल के प्रसिद्ध हॉल ऑफ मिरर्स में हुई इस संधि के तहत जर्मनी पर कठोर आर्थिक और भौगोलिक प्रतिबंध लगाए गए। इतिहासकार मानते हैं कि यही कठोर शर्तें आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बनने का एक प्रमुख कारण बनी।
1: तो 2005 की तो इस दिन रूस और ईरान के बीच परमाणु सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस समझौते के तहत रूस ने बुशहर परमाणु रिएक्टर के लिए 10 वर्षों तक परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने पर सहमति दी, जिसे दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। श्रोताओं,
0: तो दोस्तों ये थी 28 जून से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जिन्होंने अपने समय में दुनिया की राजनीति, समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक गहरा प्रभाव डाला।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, वक्त है आज की काम की बात को जानने का। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं ऐसी जानकारियों की जो छोटी जरूर होती हैं, लेकिन सही समय पर वही जानकारी हमें बड़े नुकसान से बचा सकती है। श्रोताओं, आज के समय में तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से साइबर ठगी के तरीके भी बदल रहे हैं। इसलिए जागरूक रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आइए जानते हैं आज काम की बात में, आज की काम की बात है फेक कॉल और डिजिटल अरेस्ट स्कैम से कैसे बचे। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा कॉल आया है जिसमें कहा गया हो कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है या आपके नाम से कोई अवैध पार्सल पकड़ा गया है? अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो सावधान हो जाइए, ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो सकता है। आजकल ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम्स या किसी सरकारी अधिकारी के रूप में बताते हैं और वो डर का माहौल पैदा कर देते हैं और कहते हैं कि आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया है, फिर आपसे वीडियो कॉल पर बने रहने, बैंक की जानकारी देने या तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए दबाव डालते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, भारत में कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर किसी को भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है।
2: बिल्कुल श्रोताओं, और अगर कोई व्यक्ति आपको धमकाए, जल्दबाजी में फैसला लेने को कहे, ओटीपी मांगे, बैंक की जानकारी पूछे या ऐसे ट्रांसफर करने के लिए कहे, तो तुरंत समझ जाइए कि यह धोखाधड़ी है। ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं श्रोताओं, कॉल तुरंत काट दें, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें और इसकी शिकायत करें। याद रखिए, ठगों का सबसे बड़ा हथियार आपका डर है, लेकिन आपकी जागरूकता उसकी सबसे बड़ी हार है।

0: श्रोताओं, रविवार की सुनहरी बेला, मन में भर दे नया उजाला, भाग दौड़ से मिले जो फुर्सत, जीवन लगे फिर से निराला। चाय की प्याली, मीठी बातें, हंसी खुशी के प्यारे नाते, अपनेपन की गर्माहट लेकर रिश्ते फिर मुस्काते जाते। कुछ पल अपने, कुछ अपनों के, कुछ सपनों को दे दे उड़ान। रविवार कहता है सबसे, जी लो हर पल, रखो मुस्कान। तो श्रोताओं, रविवार सिर्फ छुट्टी नहीं होती, जीवन को जीने का एक अलग तरीका होता है। और थोड़ा ठहरना, थोड़ा संवरना और थोड़ा सा खुशी का परिवेश बनाना घर में, बस यही रविवार होता है। आप तो समझ गए होंगे कि अब हम हमारे सेगमेंट मेहमान का रविवार की ओर बढ़ रहे हैं। और आज हम जुड़ रहे हैं चैन सिंह महेचा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली से, और जानेंगे उनके रविवार के बारे में, कैसा होता है उनका रविवार। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: नमस्कार, जय हिंद।
0: नमस्कार सर, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
1: धन्यवाद।
0: जी सर, सबसे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे सर। जैसे पुलिस सेवा में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और पुलिस अधिकारी बनने का आपका सफर कैसा रहा सर?
1: मैं एक पुलिस अधिकारी का पुत्र हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे प्रेरणा के स्रोत मेरे स्वर्ग

0: किए पिताजी जालम सिंह जी महेचा, जो डिप्टी एसपी थे, उनकी प्रेरणा से ही मैंने पुलिस विभाग में प्रवेश किया। और वैसे देखा जाए तो हमारे पूर्वज, मैं बाड़मेर जिले से हूँ, तो हमारे पूर्वज भी क्षत्रिय थे, तो उनका एक धर्म था राष्ट्र रक्षा, देश की सेवा, और बॉर्डर एरिया के रहने वाले थे हम लोग। इस कारण से ये प्रेरणा अनुवांशिक रूप से आप मान सकते हैं, पारिवारिक मान सकते हैं, राष्ट्र धर्म के रूप में उत्तरदायित्व मान सकते हैं। तो इन्हीं गुणों के कारण उत्तरोत्तर मेरे में भी ये भाव आया कि मैं अपनी कौन सी दिशा से अपना कैरियर शुरू करूं। तो कॉलेज में इकोनॉमिक्स में टॉपर रहते हुए अर्थशास्त्र विभाग के हमारे एचओडी थे, उन्होंने मुझे कहा कि चैन सिंह तो लेक्चरर बन जा एमफिल पीएचडी आगे कंप्लीट करके। तो उसी दौरान मेरा जब सिलेक्शन हुआ पुलिस में, तो मैंने सर को बताया, एचओडी जो अर्थशास्त्र के थे, एसी एंग्रेस सर को बताया, तो उन्होंने कहा, अरे तू कहा पुलिस में जा रहा है, तो वो लेक्चरर बन यूनिवर्सिटी में और अच्छी सेवा है। तब मैंने ये कहा, मैंने कहा सर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि युवाओं में कुछ कानून व्यवस्था के प्रति जो लापरवाही टाइप मुझे दिख रही है कॉलेज में भी, तो मैं चाहता हूँ कि युवाओं में अनुशासन रहे, देश में शांति रहे, उन्नति रहे, और मेरे पिता भी पुलिस में थे, तो मैं पुलिस सेवा में जाना चाह रहा हूँ। और इस तरह से मेरा पुलिस का कैरियर प्रारंभ होता है।
1: यानी कि सकारात्मक बदलाव लाने का एक तरह से आप में जुनून रहा सर।
0: जी, यही भाव रहा मेरे में। मैंने देखा कि राष्ट्र के लिए एक आदर्श समाज का निर्माण पहले होना चाहिए, आदर्श समाज में एक अनुशासित युवा का निर्माण होना चाहिए, तो वो सब गुण स्कूल से कॉलेज तक बच्चों में आने चाहिए, और चाहे वो आगे किसी भी सेवा में जाए, अनुशासन को अपना एक मेन ध्येय या दूरी बनाए, तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है।
1: और सर कहते भी हैं कि अनुशासन जो है वो सफलता की एक तरह से कुंजी होता है।
0: जी
1: सर,
0: आपने सही फरमाया।
1: एक पुलिस अधिकारी का सामान्य दिन कैसा होता है सर, सप्ताह के जो 7 दिन?
0: एक पुलिस अधिकारी के लिए वैसे देखा जाए तो सोमवार और रविवार में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि राजस्थान पुलिस की ही बात नहीं करें, अपन पूरी भारतवर्ष में भी पुलिस का जो दिनचर्या है वो इसी तरह से है कि उन 24 घंटे और 7 दिन वो काम करते हैं, जिसको हार्ड ड्यूटी कहते हैं। तो गवर्नमेंट भी नियमानुसार मानती है कि पुलिस हार्ड ड्यूटी करती है, और सिपाही से लगाकर इंस्पेक्टर तक हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। तो जब हम सेवा में आते हैं तभी हमारे को पता है कि हमारे को काम कैसे करना है। हम विश्राम तभी करते हैं नियमानुसार भी, या जिसको आप कह सकते हैं कि पुलिस एक्ट के अंतर्गत भी, और ड्यूटी की दिनचर्या भी मान लें, विश्राम हम तभी कर सकते हैं कि जब कोई इमरजेंसी नहीं हो। कार्य में अगर आपको अवसर मिले तो आप अपने बैरेक में या निवास में जाके विश्राम कर सकते हैं। तो कई बार हमारा रविवार सोमवार से भी डिफिकल्ट हो सकता है, और रविवार के दिन लोगों की एक्टिविटी वैसे बढ़ जाती है, रोड पे भी ट्रैफिक बढ़ जाता है, लोग फंक्शन करते हैं, इवेंट्स करते हैं, इस कारण से रविवार को कई बार पुलिस का उत्तरदायित्व ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पुलिस को यातायात व्यवस्था देखनी पड़ती है, कानून व्यवस्था देखनी पड़ती है, बड़े बड़े आयोजनों में उनको अपना डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, तो रविवार जैसा भाव नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि जो ऑफिस वाले ऑफिसर्स हैं, जैसे आरपीएस एंड अबव, उनके ऑफिस में वो उस दिन अल्प विश्राम के लिए मान सकते हैं कि ऑफिस में नहीं होंगे तो निवास में हो सकते हैं, पर टेलीफोन से, वायरलेस हेड से राउंड द क्लॉक वो जुड़े हुए रहते हैं, और जब फील्ड में जाना होता है तो ऑफिसर्स भी 24 घंटे काम करता है। रविवार के दिन अगर समय मिला तो परिवार इंतजार करता है कि हमारे साथ कुछ पल बिताएंगे, या हमारे कुछ निजी कार्यक्रमों में हम शरीक होंगे, तो ऐसा भी हम प्लान करते हैं कई बार परिवार के साथ में कि आज रविवार है, आज हो सकता है काम का लोड कम होगा तो घर के ये काम करेंगे, या बच्चों के साथ में कहीं बाहर जाएंगे, या सामाजिक कार्य करेंगे। तो कई बार उन योजनाओं में सफलता भी मिल जाती है, और कई बार जो है परिवार इंतजार ही करता रहता है कि अभी कहीं चलना है, और हम फोन पे उनको बताते हैं कि सॉरी।

0: आज अपन जा नहीं पाएंगे, आज ये ड्यूटी आ गई है या ये केस हो गया है या कहीं मर्डर हो गया है। तो वो हमारे हजारों प्रोग्राम जिंदगी में डेफर भी हुए हैं, पर परिवार ने कॉम्प्रोमाइज करना पुलिस की सर्विस के साथ में सीख लिया है। और कहीं ना कहीं हम समय जरूर निकाल लेते हैं, चाहे सोमवार को निकले चाहे रविवार को निकले, ऐसा ही कुछ तालमेल करके ही जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। पर खुशी होती है कि हम समाज के लिए काम करते हैं। अगर परिवार का कोई काम डेफर भी हो जाए और उस काम का फल आपको अपने आपने समाज को दे दिया, तो वो एक बहुत ही बड़ा एहसास अपने दिल में होता है और परिवार को भी खुशी होती है। उनकी हैबिट में आ गया, उनकी आदत में आ गया कि अपने को किस तरह से पुलिसिंग के साथ में जीवन को आगे बढ़ाना है।
1: और यदि सर संडे कभी आपको विश्राम का दिन अगर बन जाए संडे, तो फिर उस संडे की शुरुआत कैसे होती है सर, सुबह सुबह?
0: संडे या रविवार अगर हम फ्री हैं, अगर उस दिन लगता है कि आज परिवार को ही समय देना है,
1: जी
0: तो
1: सर।
0: सवेरे अपनी धर्मपत्नी जी के साथ में, मधु है मेरी पत्नी का नाम, उसके साथ में तसल्ली से चाय पीते हैं और परिवार की बातें या कुछ कई हो सकता है, कई बार तो वो 10 10 15 15 दिन से इंतजार करती है मेरे साथ में कि जब फ्री होंगे, जब बैठ के तसल्ली से बात करेंगे, तो वो तसल्ली के क्षण, जो वो आराम क्षण चाय के साथ में हम
1: यानी कि
0: प्रारंभ करते हैं,
1: चाय की
0: और फिर
1: मिठास और मधु जी तो अपने आप में मिठास लिए हुए होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ
0: आपने सही फरमाया। और हमारा जो सेटअप रहता है घर का और ऑफिस का, तो जैसे मेरा ऑफिस और मेरा घर दोनों कनेक्टेड हैं, इस कारण से, और बीच में कुछ पेड़ पौधे भी हमने लगा रखे हैं
1: वाह
0: और आउट हाउस बना हुआ है, तो हम बाहर टेंट में चले जाते हैं और टेंट में जाके और प्रकृति के बीच में कुछ पल बिताते हैं। तो उस 1 घंटा भी अगर हमारे को मिल जाता है इस तरह से, कुछ काम का डिस्कशन भी हो जाता है, बच्चों के बारे में बात हो जाती है, तो वो 1 2 घंटा भी अगर हमारे को मिल गया, तो हम सोचते हैं कि आज हमने काफी आराम कर लिया, रिलैक्स कर लिया। उसी दौरान जो है मॉर्निंग रिपोर्ट्स के रजिस्टर भी आ जाते हैं, कुछ वायरलेस सेट पे कॉल भी आ जाते हैं, कोई किसी पीड़ित का कॉल भी आ जाता है, तो वो अपने पल के बीच में कुछ कुछ सरकारी कार्य भी चलते रहते हैं। निरंतरता तो हमेशा ही बनी रहेगी हमारे को, किसी भी कॉल को हम इग्नोर नहीं करते हैं। इवन मेरे ऑफिस आवर्स के बाद में भी मकान पे भी कुछ परिवादी कभी आ जाते हैं, तो उनको भी हम पुलिस स्टेशन भेजना या उनके लिए आगे क्या प्रोसीड करना है, उनको हेल्प करना, ये सब चीजें चलती रहती है।
1: जी
0: पुलिस के
1: सर।
0: पास में आजकल व्हाट्सएप के कारण या मोबाइल के कारण भी लोग 24 घंटे कॉल करते रहते हैं, सीनियर ऑफिसर भी कॉल का जवाब देंगे, तो ये पुलिस का उत्तरदायित्व और समाज की सेवा और परिवार के पल, ये सब कॉम्बिनेशन करके एक मॉडल की तरह हम काम करते हैं, तभी जीवन में हम अपना निजी जीवन और सरकारी जीवन या सार्वजनिक जीवन, इस सबको मिलके एक अच्छी तरह से हम चला पाते हैं।
1: जी सर। काम की बात चली है तो पुलिस के काम को लेकर लोगों में कौन सी सबसे बड़ी गलत फहमियां हैं सर, आपके हिसाब
0: गलत
1: से?
0: फहमियां तो लोग ही बता पाएंगे कि वो पुलिस के बारे में क्या गलत फहमियां रखते होंगे, पर कई बार हम खुद भी रियलाइज करते हैं कि लोग अपने मुंह से बोलते हैं कि सर हमने तो सोचा था कि पुलिस बहुत कठोर होगी, पुलिस हो सकता हमारी सुनवाई नहीं करेगी, क्योंकि उनका जिंदगी में कभी पुलिस से काम नहीं पड़ा। ऐसा जो नेगेटिव परसेप्शन है वो लोग रखते हैं जिनका पुलिस से कभी काम नहीं पड़ा। कुछ
1: हाँ एग्जैक्टली
0: कुछ लोग जब किसी क्राइम के कारण, किसी निजी प्रॉब्लम के कारण जब पुलिस से कनेक्ट होते हैं और पुलिस की प्रक्रिया जब वो देखते हैं, तब उनको रियलाइज होता है कि पुलिस कैसे काम करती है, राउंड द क्लॉक उनसे कैसे कनेक्ट होती है। जैसे किसी का बच्चा अगर गुम हो गया, किसी का बच्चा लापता हो गया,
1: जी सर।
0: या किसी जगह पे परिजन कहीं दूर है और उनके किसी भी रिलेटिव का कहीं दूर एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ में कोई घटना हो गई, कोई लूट हो गई है, कोई और किसी भी प्रकार का अपराध हो गया, तब वो पुलिस से कनेक्ट होते हैं। उनको मालूम पड़ता है कि पुलिस किस तरह से राउंड द क्लॉक काम करती है और वो कैसे चाहते हैं। जैसे एक आपात सेवा है, चिकित्सा सेवा या पुलिस सेवा, इमरजेंसी सेवाएं हैं, और इन सेवाओं में जब लोगों

का काम पड़ता है, तब उनको मालूम पड़ता है कि ये कैसे अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, किस तरह से जो है वो अपना सब निजी काम, अपने सब समस्याएं या अपनी छुट्टी या अपने रविवार, इन सब को त्याग करके और वो लोगों से जुड़ते हैं। और जब इमरजेंसी आती है तो उसमें समय नहीं देख सकते आप, आपको 24 घंटे उस चीज को आगे अंजाम तक पहुंचाना होता है।

0: चीज को आगे अंजाम तक पहुंचाना होता है, अन्यथा बहुत विलंब हो जाता है। किसी के साथ में अन्याय हो सकता है, किसी की जिंदगी के साथ में खिलड़ाव हो सकता है, या बहुत सारी चीजें बदल सकती है।
1: जी सर, आपके ड्यूटी के लिए डेडिकेशन को हम सलाम करते हैं। हम फिर से आपको जो है, जब आप विश्राम के टाइम फैमिली मैन होते हैं, उसकी तरफ ले जाना चाहेंगे। सुबह की चाय के बाद आप थोड़ा सा किचन की तरफ भी रुख करते हैं।
0: किचन तो मेरी श्रीमती जी संभालती है मधु,
1: जी
0: और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। और कुछ जिंदगी के पल जो मैं हमेशा याद रखूंगा मेरी सेवा के साथ में, उनकी भी सेवाएं रही वो ऐसे कि मैं अगर रात में 1 बजे भी आऊंगा तब भी वो मुझे गर्म खाना ही खिलाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने खाना बना के रख दिया और मुझे जो है, मैं बोलता हूँ कि आप रख दिया करें, मैं जब भी आऊंगा ले लूंगा, परंतु नहीं, वो हमेशा इस तरह से ही मुझे ताजा खाना बना के खिलाती है, चाहे 24 घंटे में मेरे को कभी भी लंच करना हो या डिनर करना हो। और अगर मैं घर नहीं आ सकता हूँ तो फिर अगर टिफिन भी भेजेगी तो वो बना के तुरंत भेज देगी, और हो सकता है दोनों स्थितियां नहीं है तो बात अलग है। तो उन्होंने अपना जो रसोई का दायित्व है वो बखूबी निभाया है। और इवन जैसे कई बार मैं जब आता हूँ, मेरे साथ में पुलिस कार में मेरा स्टाफ भी होता है, ड्राइवर होता है, गनमैन होता है, और भी एक्स्ट्रा स्टाफ हो सकता है, तो न केवल मेरे लिए बल्कि उन सबको भी वो ताजा खाना बना के जिमाएगी कि आप भी साहब के साथ में खाना जिम लो, फिर अलग से आपको समय नहीं मिलेगा। तो परिवार, हम पुलिस स्टाफ को भी अपने परिवार से कनेक्ट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम जब साथ रहते हैं तो वही हमारा परिवार है, ये फीलिंग, ये भाव रहता है, तभी हम कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। हमारा स्टाफ, हमारे जवान, किसी भी परिस्थितियों में, चाहे वो गोली चलने की स्थिति हो, चाहे विकट परिस्थितियां हो, हम एक पुलिस परिवार की तरह काम करते हैं। ये भाव हमारे परिवार तक भी जुड़े होते हैं, चाहे मेरा परिवार है, चाहे मेरे सबॉर्डिनेट का परिवार है, हम सब इस भाव से काम करते हैं।
1: जी सर, आपके प्रोफेशन में जैसे हम बात करके जान पा रहे हैं, तनावपूर्ण परिस्थितियां भी बनती ही होंगी, तो उनमें आप स्वयं को कैसे शांत और संतुलित रखते हैं? और इसमें कहीं ना कहीं विश्राम का दिन, हमारे हिसाब से रविवार, उसकी भी कुछ भूमिका रहती होगी सर।
0: बिल्कुल, जीवन में काम के साथ में विश्राम बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो किसी भी प्रकार से किया, जिसको रिक्रिएशन कह सकते हैं। तनावपूर्ण जो क्षण होते हैं उनको वापस न्यूट्रलाइज करने के लिए इंसान को शारीरिक व्यायाम करने चाहिए। अपने जब भी जितने भी पल मिले, परिवार के साथ में हम जो पल बिताते हैं उससे भी रिक्रिएशन होता है। आप लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से जब वापस बाहर आते हैं तो कुछ जो समय व्यतीत होता है, चाहे वो रविवार को मिले, चाहे उसी रविवार को हम कहीं घूमने चले जाएं, कि कहीं मंदिर के दर्शन करने चले जाएं और जंगल में कहीं सैर करने चले जाएं, तो ये इवन आप उसको ध्यान और योग से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब पल मिल जाए, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरा शेड्यूल फिक्स रहता है कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, किसी भी पुलिस अधिकारी का शेड्यूल उसके अनुसार तो हो ही नहीं सकता। हमारा जो शेड्यूल है, हमारी जो दिनचर्या है, वो लोग तय करते हैं, हमारा उत्तरदायित्व तो तय करता है। पता नहीं किस समय हम सोएंगे, किस समय उठ के भागेंगे, या सो भी नहीं पाएंगे, सोते समय ही थोड़ी देर में वापस ड्यूटी पे जाना पड़ सकता है या कॉल पे रहना पड़ सकता है। तो वो सब चीजें तो सबको होती है, पर उसके साथ में अपने शारीरिक व्यायाम पे, अपनी धार्मिक दिनचर्या जिससे हमारे को मानसिक शांति मिलती है, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है, और परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में जब भी समय मिलता है तो उसका उपयोग तो हम भी करते हैं। और एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट करके ही आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे परिवार के मुखिया बन सकते हैं, और एक अच्छे पुलिस ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन हमारे को करना ही पड़ता है और वो हम करते हैं। और रविवार निश्चित रूप से हमारे को एक टेंटरलाइज डे तो लगता ही है कि आज रविवार है, कुछ तो समय मिलेगा परिवार के लिए, ये भाव तो हमेशा हमारे में भी रहता है, सब पुलिस ऑफिसर में भी रहता है कि चलो संडे है, शायद 2 पल मिल ही जाए परिवार के लिए।
1: बिल्कुल सर, ये जो दिन है बचपन से लेकर जब तक हम रहते हैं तब तक जो है इस दिन को हम सुकून से ही जोड़ना चाहते हैं। हर एक
0: जी बिल्कुल,
1: मनुष्य जो है जोड़ता है इस दिन को सुकून से।

0: और सर, जीवन में म्यूजिक की तो कुछ जगह होगी ही, जरूर आप सुनते होंगे। आज हम भी आपको एक आपका फेवरेट गाना जरूर सुनाना चाहेंगे, तो हम जानना चाहेंगे सर आपका कोई एक फेवरेट सॉन्ग।
1: मैं बचपन से ही पिताजी के पुलिस अफसर होने से 1971 का वार भी मैंने बचपन में देखा नजदीक से, तो यूं कह सकते हैं कि बचपन से ही पुलिस में आने से पहले से ही अनुशासन और परेड करने के भाव से ही जुड़ा हुआ हूँ। जैसे ही कोई ऐसे जोशीले गीत आते हैं तो बचपन में ऐसा जोश में भर जाते थे जैसे कि भविष्य का पुलिस अफसर प्रफुल्लित हो रहा हो। तो मैं चाहूंगा कि मेरी पसंद का आप गाना अगर बजा सकते हैं तो कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये
0: बिल्कुल सर,
1: आजाद आजाद हिंद फौज का एक परेड का गीत है और मेरी पसंद का है।
0: जी। अब शराफत जी जो है आपकी पसंद का गीत जो है आपको और सब श्रोताओं को सुनाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं चाहूंगा कि आज सबका रविवार बहुत ही अच्छे से हो, हंसी खुशी से हो। धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद
1: जय
0: सर,
1: हिंद।
0: जय हिंद।

तिथि है। एक भारतीय वैज्ञानिक और संख्याविद थे ये। इन्हें सांख्यिकी माप, महाल नोबिस दूरी के लिए और स्वतंत्र भारत के पहले आर्थिक आयोग योजना के सदस्यों में से एक होने के लिए मुख्य रूप से याद किया जाता है। उन्होंने भारत में मानव मिति के क्षेत्र में अग्रणी अध्ययन किए। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की श्रोताओं, और बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षणों के डिजाइन में योगदान दिया। उनके योगदान के लिए महाल नोबिस को भारत में सांख्यिकी का जनक माना जाता है। 2007 से पीसी महाल नोबिस की जयंती और सांख्यिकी विज्ञान और योजना में उनके योगदान को याद करने के लिए 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2009 में प्रशांत चंद्र महाल नोबिस का जन्मदिन यानी 29 जून हर साल भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया श्रोताओं।

श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं पामूला पार्थी वेंकट नरसिन्हा राव जी को, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता, जिन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। वे दक्षिण भारत के पहले और गैर हिंदी भाषी पृष्ठभूमि से दूसरे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बने थे। श्रोताओं, उन्होंने 1991 के आर्थिक संकट के बाद भारत के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करने में उनकी भूमिका के लिए आज भी जाना जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें देश के प्रत्येक प्रधानमंत्री द्वारा जारी रखा जाता है और विस्तारित भी किया जाता है। 2024 में उन्हें भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और एक रोचक बात और श्रोताओं, राव एक बहुभाषी थे और 17 भाषाएं वो बोल सकते थे। इसी के साथ हम आज नाम

ले रहे हैं, याद कर रहे हैं जसपाल राणा को, जिनका जन्म 28 जून 1976 को हुआ। वे एक प्रमुख भारतीय निशानेबाज रहे जिन्हें 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्रोताओं, जसपाल राणा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र से हैं। जसपाल राणा जो भारत के बेहतरीन निशानेबाजों में से है, उनको उनके पिता नारायण सिंह राणा ने BSF अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित किया था और 12 साल के राणा ने अहमदाबाद में 31वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय पदार्पण किया। तो किसी ने नहीं सोचा होगा श्रोताओं कि 12 साल का लड़का रजत पदक एक तरह से छीन लेगा, अपने नाम कर लेगा। और साल 1994 में 46वीं विश्व शूटिंग चैंपियनशिप जूनियर सेक्शन में राणा ने स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग के लिए स्वर्ण पदक जीता, जो उनकी यात्रा में एक और बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। राणा ने शूटिंग के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में 600 से भी ज्यादा पदक अर्जित किए। लेकिन कुछ ही टाइम पहले 12 जून 2026 को वो हमारा साथ छोड़कर अलविदा कह गए। हम उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं श्रोताओं।

श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम का आज का अंक समय को देखते हुए हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन आप सुनते रहिए रेडियो नमस्कार। कार्यक्रम में अब इजाजत दीजिए नूतन सोनी को, और नमस्कार कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राजेश लामरोड़। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर। सवेरे के 10 बज रहे हैं। अब नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम चुनमुन।

चुनमुन सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने श्रोताओं को नम्रता दवे का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों कैसे हैं आप? भाई बहुत सारे बच्चे अब व्यस्त हो चुके होंगे क्योंकि स्कूल जो

वाले हैं। कुछ बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूल खुलने बाकी हैं, है ना? और स्कूल खुलने के समय सबसे पहले क्या याद आता है? याद आता है हमें नए बैग लेना, नया बॉक्स लेना और भी बहुत सारी बातें याद आती हैं। और सबसे ज़्यादा याद आते हैं हमारे दोस्त, है ना? तो चलिए स्कूल को याद करते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, फिर दीदी आपको बताएगी बहुत अच्छी अच्छी बातें जिससे आपको सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

तो बिल्कुल बच्चों, स्कूल की याद तो आपको आ ही गई होगी। और स्कूल जाने के नाम पर हमें लगता है कि बुक्स कवर्ड हैं या नहीं। भाई, नोटबुक्स कवर होना बहुत ज़रूरी है, और वो तो आपने करा ही होगा। और नहीं भी किया होगा तो कहीं आपने अपनी मम्मी को तो ये काम नहीं दे दिया है, या फिर अपनी बड़ी दीदी को कि हमारे नोटबुक में कवर चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, और हम तो खेलेंगे। आप ऐसे तो नहीं कर रहे ना भाई? चुनमुन सुनने वाले जो नन्हे मुन्ने श्रोता हैं, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना? दीदी का कहना तो मानेंगे। तो बच्चों, आपका काम आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि हर काम हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है ना? और आपने लिस्ट तो बना ही ली होगी, जैसे कि नया टिफिन बॉक्स, नया बैग, नया बॉक्स, और भी न जाने क्या क्या। और अगर आप घूमने गए हैं और वहाँ से अगर आप कुछ लेकर आए हैं, तो वो बैग के किसी कोने में आपने रखा तो ज़रूर होगा, है ना? और फिर भी बैग अभी तक भरा नहीं है, अभी भी एक्स्ट्रा नोटबुक्स, बहुत सारी किताबें, और बैग हो गया है भारी। बस बैग बोल रहा है, इससे ज़्यादा मैं नहीं सह पाऊँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अच्छा, पानी की वाटर बॉटल तो मैं दीदी भूल ही गई, वाटर बॉटल

भी तो नहीं चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स को जो दिखाना है। पर बच्चों, आपने कभी ये देखा है कि आपको जब भी कहीं जाते हैं या किसी शॉप पे अपनी यूनिफॉर्म लेने भी जाते हैं तो आपको लगता है मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, यानी कि जो भी अच्छा दिखता है आप लेने की कोशिश में रहते हैं। आप ये बिल्कुल नहीं सोचते कि वो है कितने का, है ना बच्चों? और फिर मम्मी पापा बोलते हैं बेटा अभी नहीं बाद में, क्योंकि बच्चों आपने बजट तो कभी सीखा ही नहीं, तो आपको भी तो बजट के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि स्पेंड वाइजली। हाँ बच्चों, जिन चीज़ों की ज़रूरत है क्यों ना आप उन्हीं चीज़ों को खरीदें। जैसे कि अगर आपके पास वाटर बॉटल नहीं है तो वाटर बॉटल लीजिए, अगर लंच बॉक्स नहीं है तो लंच बॉक्स लीजिए। बच्चों, अगर आप दो दो तीन तीन वाटर बॉटल्स, दो दो तीन तीन टिफिन बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, अगर आप लोग ऐसे ही लेते रहेंगे तो वो फिजूल खर्ची में आती है। और अगर आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है तो आपको बजट फ्रेंडली तो होना ही होगा। और आज अगर आप स्पेंड वाइजली करेंगे, यानी कि आपके पास जो छोटा सा भी अमाउंट है और अगर आपके पास बजट आपने डिसाइड कर रखा है, तो आप आने वाले कल में आप बहुत अच्छे इंसान बन पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हर चीज़ की वैल्यू होती है ना बच्चों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़रूरत होती है, तो क्यों ना अगर आपको चेंज भी करना है तो क्यों ना आप उनकी भी हेल्प कर दें, है ना बच्चों? करेंगे ना ऐसा? सबसे ज़रूरी है बच्चों पेरेंट्स की हेल्प करना। इसीलिए नए सेशन में कभी भी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची ना करें, तो इस बार समझदारी से खर्च करिएगा।

तो बच्चों, चुनमुन कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सुन रहे हैं चुनमुन नम्रता दीदी के साथ। तो बच्चों, स्कूल की बात चल रही है तो स्कूल में क्रिएटिव वर्क तो मिलता ही होगा। हाँ बिल्कुल, क्रिएटिव वर्क यानी कि आपको प्रोजेक्ट तो दिया ही होगा मैम ने कि भाई ये आपको खुद करना है, खाली हेल्प लेनी है, लेकिन आप ये काम अपना खुद करेंगे, ऐसा कुछ बोला था। दीदी को सब पता है। और एक बार अचानक क्या हुआ बच्चों, पता है हमारे पास में एक बच्चा रहता है जिसका नाम है आरव, और वो उसके मम्मी के फ़ोन पर मैसेज आता है कि कंप्लीट योर प्रोजेक्ट वर्क एज सून एज पॉसिबल। तो आरव को हो जाती है टेंशन, लेकिन मम्मी को टेंशन थोड़ी सी होती है, ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो बड़े आराम से होता है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, अब कल स्कूल खुलने हैं और आज तक प्रोजेक्ट का काम ही कंप्लीट नहीं हुआ, गर्मी की छुट्टियाँ पूरी कंप्लीट होने को थी।

बच्चों, फिर पता है क्या हुआ? और मम्मी ने उसको बहुत टेंशन लेकर सारी की सारी जो भी चीजें थी प्रोजेक्ट की वो सब ले ली। अब क्या था, मम्मी और पापा दोनों लग गए, पापा कटिंग में लग गए, मम्मी बाकी सारी चीजें प्रोजेक्ट के लिए तैयारी में लग गई। और आरव बड़े आराम से खेल रहा था क्योंकि उसको कोई टेंशन ही नहीं था। लेकिन बच्चों, ये क्रिएटिव वर्क किसका था? ये था आरव को कुछ सिखाने के लिए। लेकिन कर कौन रहा था? मम्मी पापा। तो अब भाई टेंशन का माहौल जो था वो मम्मी पापा ने ले लिया था और आरव बिल्कुल आराम से घूम रहा था। स्कूल खुलते हैं, प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार, बहुत सुंदर सा प्रोजेक्ट तैयार हुआ। और उसके बाद आरव, जब टीचर ने पूछा कि आप मुझे एक्सप्लेन करिए, तो आरव को कहाँ कुछ पता था कि किससे कैसे कैसे हुआ, उसको तो स्टेप्स भी नहीं पता थे। तो भी वो शांत खड़ा रहा। टीचर ने कहा, वेरी गुड, सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट आपका है। पर आरव के दिल में उसको पता था कि ये मैंने तो बनाया ही नहीं है। तो अच्छा भी, जब आपको कोई अप्रिशिएट भी करता है और आपने जो काम नहीं किया होता है तो खुशी थोड़ी सी कम होती है ना? और अगर आप काम करते हैं और कोई अप्रिशिएट करता है, आपकी प्रशंसा करता है, तो आपको खुशी बहुत सारी होती है। वैसे ही कुछ आरव के साथ हो रहा था। तो बच्चों, उसको बोला तो सबने बहुत असारा कि भाई आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत में वो खुश नहीं था। अगले दिन घर पर आया, फिर एक महीने बाद उसको साइंस का एक और प्रोजेक्ट मिला। तो अब की बार आरव ने ठान लिया था कि ये तो मैं ही करूँगा। और उसने साफ साफ मम्मी को कह दिया था, मेरी हेल्प कोई भी नहीं करेगा, ना पापा ना आप, ये काम मेरा है और ये मैं खुद करूँगा। बच्चों, आपको पता है, उसने बहुत मुश्किल से, मेहनत से, धीरे धीरे चीज़ें भी खुद लेकर आया, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। और जब टीचर ने उसकी तारीफ करी ना बच्चों, और उसमें थोड़ी सी एक दो जो कमियां भी थी, तो टीचर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आरव, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि तुमने जो पहले वाला किया था उससे ये बहुत अच्छा है। तुम जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे? इसीलिए तो बच्चों, आप जब भी सीखोगे तब जब आप करना चाहोगे उस काम को, है ना बच्चों? तो इसलिए आप अपना काम खुद करें, थोड़ी सी कमियां होंगी तभी तो आपको टीचर गाइड करेगी कि आपको ये काम अच्छे से कैसे करना है ना बच्चों? तो इसीलिए प्रोजेक्ट कभी भी मिले या क्रिएटिव काम जो भी टीचर आपको सिखाने की कोशिश करे, आप लोग खुद करेंगे, करेंगे ना बच्चों? तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पहेलियाँ? अच्छी लगी आपको ये पहेलियाँ? भाई, पहेलियाँ बच्चों के बहुत करीब होती हैं, और अक्सर जैसे ही बच्चे फ्री होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि कोई छोटा सा चुटकुला सुना दें या फिर कुछ पहेलियाँ सुना दें, है ना? तो बच्चों, आप लोगों को बात करना आना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अपने दिल की बात बतानी चाहिए, छुपानी कभी नहीं चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ है बच्चों कि आपके मन में बहुत सारी बातें हों, लेकिन समझ ना आए कि किसको बतानी है या नहीं? कभी स्कूल में कुछ अच्छा हुआ होगा, या कभी किसी दोस्त की बात का बुरा भी लगा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात जो मन में बार बार घूम रही है, तो आपको वो बात शेयर ज़रूर करनी चाहिए। हाँ बच्चों, क्यों नहीं, आप पूरे दिन में क्या हुआ आप अपनी दीदी से पूछ सकते हैं, आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं, अपने पापा से आप बात करिए कि आज आपने पूरे दिन में क्या क्या किया। क्यों ना एक छोटी सी आदत बना लें, क्योंकि बच्चों, अक्सर आपके लिए जो छोटी सी या आपके लिए जो बहुत बड़ी सी चीज़ होती है, वो कई बार बहुत छोटी सी होती है, जिसका आप लोग छोटे छोटे से दिमाग में टेंशन ले लेते हैं। तो वो टेंशन तो लेने से कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, जब आप अपनी बातें शेयर करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हर बात मम्मी पापा से करें, आपका मन जिनसे मिलता हो, जिनसे आपको अच्छा लगता हो बात करना, जैसे दादाजी हो गए, दादी जी हो गए, है ना, नाना हो गए, नानी जी हो गए, या फिर आप अपने घर में बड़ी बहन से, बड़े भाई से, किसी से भी, लेकिन बच्चों आप अपनी बातें शेयर ज़रूर किया करें। और वैसे भी आप सबको पता ही है बैड टच और गुड टच के बारे में, है ना? तो

क्यों ना बच्चों, अगर आपको कुछ भी अलग सा लगे तो शर्माएं नहीं और आप हमेशा अपनी बात कहने का जिगर रखें, क्योंकि चुनमुन सुनने वाले जो श्रोता है ना, वो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और वो कभी भी डरते नहीं हैं। एक और अच्छी सी आदत आप डेवलप कर सकते हैं बच्चों, वो है डायरी लिखने की। अगर आपको लगता है कि हम किसी से भी बात नहीं करना चाहते, एक डायरी लीजिए, रोज आप लिखिए कि आपने आज क्या क्या किया, आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, और आप कल के लिए अपने सपने भी लिख सकते हैं कि आपको बनना क्या है। बच्चों, डायरी बहुत अच्छी फ्रेंड होती है और आपकी जो राइटिंग स्किल्स होती है ना बच्चों, जैसे अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपको लिखना आएगा, तो आप किसी से भी कभी भी बातें शेयर कर सकते हैं। इसीलिए अपनी बातें मन में कैद मत रखिए, सबसे पहले आप दूसरों से शेयर करने की आदत डालिए। डालेंगे ना बच्चों?

तो बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बातें कह नहीं पाते, है ना? भाई दीदी इसी बारे में तो बात कर रही थी। तो बच्चों, अगर कोई नहीं भी सुनता है, तो बच्चों अगर कोई नहीं भी सुनता है ना, तो आप एक बात को बार बार कह सकते हैं और मुस्कुराते हुए कह सकते हैं, है ना? क्योंकि भाई जो छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने श्रोता हैं, वो अपनी बात जैसे जिद कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए चाहिए, वैसे ही बच्चों आप अपनी बात कहने के भी तरीके में ये जिद ला सकते हैं। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, कभी कभी जिनसे आप बात करना चाहते हैं वो बिजी भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चों अपनी बात कहने के लिए आपको पीछे पड़ना होगा, है ना? तो अच्छी अच्छी आदतों को आपको अपने जीवन में लाना होगा, है ना? तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

चुनमुन कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। अब दीजिए नम्रता दवे को अनुमति। चुनमुन कार्यक्रम का प्रोडक्शन है किया है मनीष सोलंकी ने। जय हिंद। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिए, और स्कूल जाते हुए मुस्कुराते हुए जाइएगा और मुस्कुराते हुए ही आइएगा।

अभी आपने सुना कार्यक्रम चुनमुन। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 10:30 हुए हैं। आइए सुने सुगम संगीत।

सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल के संग। और कार्यक्रम में हम आपको आज सुनवा रहे हैं अभिजीत सावंत को

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर सवेरे के 10:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना, 24 घंटे सुनिए।

0: कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: बुलबुल के तक गिर क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
0: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी

देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव

हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है।

उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है।

नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, स्त्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर

मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है, इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग

0: सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो, वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं, वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले, तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट

0: दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अभी आप सुन रहे हैं लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे सतपाल मिरासी को तोड़ी कैसे जाए प्रीत।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: तेरी वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: अभी आप सुन रहे हैं लोक संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अभी आप सुनेंगे रमेश्वर लाल पवार की आवाज में सांवरिया घर आजा।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वर्षाकाल के दौरान बारिश की एक एक बूंद को बचाने और कैच द रेन अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील करते हुए वोकल फॉर लोकल को अपनाने का आह्वान किया है। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने जून महीने के दौरान देश की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों और महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है और देश आज समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने ईंधन बचाने, कुछ समय के लिए सोना नहीं खरीदने और विदेशों में छुट्टियां मनाने से बचने के लिए बीते दिनों किए गए अपने आग्रह पर देशवासियों से मिले समर्थन पर आभार जताते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि देश का हर नागरिक वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहा है।
2: मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचे, कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे, कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूँ कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का उल्लेख करते हुए योजना की प्रगति और इनके लाभों की जानकारी एक दूसरे तक साझा करने की अपील की। उन्होंने अंधविश्वास पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विज्ञान

0: अनुभव और तर्क के आधार पर धारणाओं को बदलने को कहा। श्री मोदी ने एआई टूल्स को देश की संस्कृति तथा भारतीय ज्ञान भाषाओं के संरक्षण में काम लिए जाने पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के कई भागों में गांवों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए आगामी महीनों में गणेश उत्सव की तैयारियों में लगे मूर्तिकारों से मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाने और खरीदारों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां नहीं खरीदने की अपील भी की। आकाशवाणी के इस बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम को सुनने को लेकर प्रदेश भर में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। राजस्थान सहित देश भर में आज से 3 दिन के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जा रही है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 59,000 से अधिक बूथों पर यह दवा पिलाई जा रही है। सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों आंगनबाड़ी केन्द्रों के साथ मोबाइल और ट्रांजिट टीमें गठित की गई हैं जो बस स्टैंड रेलवे स्टेशन सार्वजनिक तथा अन्य आवागमन स्थलों पर भी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवा पिला रही है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्री नरसिम्हा राव को 90 के दशक में वैश्विक संकट और मंदी के दौर में भारत को सुरक्षित रूप से बाहर रखने पर कुशल प्रशासक के तौर पर याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि देश के महत्वपूर्ण दौर में श्री राव ने भारत की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 269 पदों पर चयन के लिए सुबह 11 से 1 बजे तक एक पारी में ये परीक्षा ली गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता डॉक्टर अर्चना वर्मा सीनियर साइंटिस्ट काजरी जोधपुर से। भेंट करता रहेंगे दिनेश राणेचा। विषय रहेगा खेत बचाओ अभियान में कृषि वानिकी की भूमिका। प्रस्तुति राजेश लामलोड़।

0: कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाई ने दिनेश राणे जरा घने मानसु राम राम और नमस्कार सा। किसान भाया आप खेती बाड़ी जी का काम काज है हरमेश आप करिया करो। खेत बचाओ अभियान रे तहत किसान भाया आज आपने जानकारी दिलावा के खेत बचाओ अभियान रे मैंने कृषि वानिकी री कई भूमिका होया करे। इस वास्ते कार्यक्रम में आज पधारिया है डॉक्टर अर्चना वर्मा, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है काजरी जोधपुर मैंने। अर्चना जी राम राम।
1: राम राम दिनेश जी और सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम।
0: अर्चना जी औजी को अभियान चाल रो है लाला कई दिन सु जी का भात भातरा जी का विषय है आपरे काजरी सु जी का विशेषज्ञ कार्यक्रम में आया करे और किसान भाई ने ज्यादा सु ज्यादा जी की जानकारी है खेती बाड़ी सु संबंधित है और जी की जैविक तकनीका है साथ प्राकृतिक खेती री है जल संरक्षण है मृदा रो संरक्षण है इन विषय माथे जानकारी दे रिया है। आप जी की जानकारी दे रिया हो कृषि जी की वानिकी है। प्रश्न आवे के भाई आ कृषि वानिकी जी को शब्द है थोड़ो सो यूं सुन में थोड़ो जटिल लागे तो ओ कहीं हुआ करे।
1: शायद हो सकता है आपको भी नया लग रहा होगा और हमारे किसान भाइयों को भी ये जो शब्द है वो बहुत नया लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है कि कृषि वानिकी ऐसा नहीं है कि कुछ नया शब्द है। ये जो हमारे किसान भाई यहाँ राजस्थान में हैं या शुष्क क्षेत्र में जो हैं वो बहुत पुराने टाइम से करते आ रहे हैं कृषि वानिकी। कृषि वानिकी कुछ नहीं है, इसमें आप देखिए दो शब्द हैं, एक कृषि है और दूसरा वानिकी। कृषि मतलब जो हम खेती कर रहे हैं, जो हम फसलें उगा रहे हैं, और वानिकी मतलब जो हम अपने खेतों पर तरह तरह के जो वृक्ष जो या पेड़ जो हम रखते हैं, तो वो किसान क्या है बहुत पहले से ही ये करते आ रहे हैं।
0: वन लगा वसा
1: वन है मतलब या उनके खेत पे जो भी पेड़ हैं, जो भी उससे वो चारा लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, अपने खाने के जो भी फल लेते हैं, तो ये सब वृक्षों से ही आता है। तो और जो यहाँ जो आप देखेंगे जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है या शुष्क क्षेत्र है उसमें कृषि वानिकी की बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि क्या है कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे यहाँ जो वातावरण है वो बहुत कठोर है कि बहुत

0: ज्यादा गर्मी होती है, तापमान बहुत ज्यादा आ जाता है, वर्षा बहुत कम होती है, तो कभी क्या होता है कि जैसे हमारे कभी अकाल भी पड़ता है या कम वर्षा होने के कारण जो है फसलों की जो उत्पादन है वो कम होता है, तो वहां पे जो है वृक्षों का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। किसान क्या करते हैं, वृक्षों पर निर्भर होते हैं अपने चारे के लिए, पशुओं के लिए और अपने फलों के लिए, या जो भी ईंधन उनको चाहिए वो सब इन वृक्षों से ही आता है। इसीलिए वो अपने जो भी आप देखेंगे शुष्क क्षेत्र में, किसान जो है हमेशा अपने खेत पे जो है वो तरह तरह के वृक्षों को रखता है।
1: सही कहे हो सा आप अर्चना जी के जी का पेड़ पौधा लगा रखे तो जी की खेत मैंने जी की फसल है वह सुरक्षित रह सके और जी की उनकी उपजे वह भी बढ़ सके। तो हमें बात आवे कि किसान भाई जो फसल लेवे भात भातरी तो साथ है आज की कृषि वानी की किसान भाई लगावे करे किसानारी जी की आमदनी है वह बढ़ाउन में किकर सहायक है।
0: देखिए बिल्कुल, जो किसान जो हैं जो वृक्ष लेते हैं साथ में फसल के, जैसे फसल है
1: हाँ
0: वो भी उनको आमदनी देती है, चाहे वो अपने घर पे उसका यूज लेते हैं, चाहे बाजार में जैसे बाजरा है मूंग है वो बेचते हैं। इसी तरह से क्या है, अलग अलग वृक्षों से भी हमें चीजें मिलती है, जैसे कि लकड़ी हो गई, ईंधन हो गया, फल है, या कई अन्य उत्पाद भी आते हैं, जैसे गोंद है या कोई जड़ी बूटियां भी हमें वृक्षों से मिलती है। तो किसान
1: हाँ
0: क्या करते हैं, उनको अपने उपयोग में भी ले सकते हैं और जो भी उनका अतिरिक्त जो भी या ईंधन हो रहा है या चारा है या लकड़ी जो भी है वो बाजार में बेच के उसको अतिरिक्त आय ले सकते हैं, क्योंकि ये सब भी क्या है कि हमारे लिए जो भी है, चाहे उनका पशुधन है चाहे अपने लिए यूज करें उसको, तो उसके लिए वो उसको बेच सकते हैं और उससे अपनी अतिरिक्त आय जो है वो अर्जित कर सकते हैं।
1: राजस्थान रे मायने जी का किसान भाई ये भात भात का रोकड़ा जी का है आप रे खेती बाड़ी रे साथे साथे लगाया करे काजिया करे तो वे उठे जी लागे के जठे मिट्टी री उर्वरा क्षमता अच्छी वे साथे जल री व्यवस्था वे जो बेरा है ट्यूबवेल है या दूसरा जी का तालाब वगैरह है साधन है। अब वे बात आवे उठे तो वे रोकड़ा किसान भाई लगा दे पर जी का अपना राजस्थान या पर बात करा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है उठे मिट्टी भी थोड़ी उपजाऊ कम है साथे पानी भी समुचित व्यवस्था है कोनी बरसात वे तो कदी कम वे और कदी नहीं भी वे तो उठे कृषि वानिकी जी का शुष्क क्षेत्र है वठे क्यों आवश्यक है।
0: देखिए जैसे आप बता रहे, तो शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र में क्या है कि कम वर्षा होती है, बार बार सूखा भी पड़ता है, तेज हवाएं चलती हैं, उच्च तापमान जैसी समस्या है यहाँ पर।
1: हाँ
0: परंतु जो हम जैसे कृषि अर्धशुष्क क्षेत्र में रह रहे हैं, तो कृषि वानिकी में हम इस तरह के वृक्ष लगाते हैं जैसे कि खेजड़ी है, बेर है, रोहिड़ा है, कुमट है, इन ये जो है यहाँ की जो प्रजातियां हैं इनको पानी की भी कम आवश्यकता रहती है और ये अच्छे से हो भी जाती है, चाहे मिट्टी में थोड़ी लवणता है तो उसको भी ये पेड़ सह लेते हैं और अपनी जड़ें जो है वो गहरी डालते हैं जमीन में, तो
1: हाँ
0: इसके कारण क्या है इनकी क्षमता जो है अच्छी है इस क्षेत्र में। और इनको क्या है, आपको अगर पानी की कमी है तो किसान क्या है खाली उसको बरसात में जो है वो लगाता है यहाँ पे पेड़ों को, तो बरसात में उसको पानी मिल जाता है अपनी जड़ को अच्छे से फैलाने के लिए, और उसके बाद जो है 1-2 साल तक जब वो अच्छे से हो जाएगा तो उसके बाद उसको इतनी पानी की आवश्यकता नहीं रहती और पेड़ जो है वो अच्छे से हो जाते हैं। इसलिए अर्धशुष्क क्षेत्र में, इसीलिए कृषि वानिकी में जो है जो हम यहाँ के जो पेड़ है उनको कम पानी की आवश्यकता रहती है, और मिट्टी में भी हम उसमें अगर ऐसा है जैसे अभी खेत बचाओ अभियान चल रहा है तो उसमें क्या है सरकार का यही है कि हम रासायनिक खाद पे कम जोर देकर अपनी जो है देसी खाद का ज्यादा उपयोग करें, वो हम इसमें डाल के अपने पेड़ों को खाद दे सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि अगर हमारी उर्वरता कम है मिट्टी की तो हम
1: हाँ
0: इस तरह से अपनी देसी खाद ही उपयोग करके पेड़ों के लिए उपयोग कर सकते हैं। और देखिये जब इसमें एक ये भी फायदा है कि जब पेड़ बड़े होंगे, इस तरह के अभी ये जोर दिया गया है कि रासायनिक खाद कम करें, तो पेड़ क्या है अपनी खाद खुद ही बना लेते हैं,
1: हाँ पत्तियां
0: जो
1: गिराओ
0: भी
1: सा
0: पेड़ की पत्तियां गिरती हैं उनकी छोटी छोटी टहनियां गिरती हैं, छोटी छोटी जड़ें जो निकलती हैं, तो पेड़ अपनी खाद खुद बना लेते हैं और आसपास की जो फसल है उसको भी वो खाद जो है वो देते हैं। इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और पेड़ों की भी अपनी उर्वरता बनी रहती है।
1: सही बात बताई सा आप परिस्थितियां अनुसार जी का स्थानीय स्तर जी का रूकड़ा है वे लगा हुए है और आजकल परिस्थितियां भी अनुकूल खेती बाड़ी में किसान भैर वास्ते होती जारी कर रही है। हमें किसान भाई मन बना ले मारे खेत है और मैं खेती बाड़ी करनी चाहूँ आज की खेत्र मैंने कृषि वानिकी जी की शुरुआत करनी चाहे तो किकर कर सके।
0: तो किसान तो क्या है, सबसे पहले अपनी भूमि और उपलब्ध जल संसाधनों के अनुसार अपने उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का चयन कर लें, ठीक है। उसके बाद खेत की मेड़ हो गई, खाली स्थान हो गए, या फसल के साथ उपयुक्त दूरी पर वृक्ष जो है वो अलग अलग तरीके के वो लगाए जा सकते हैं। स्थानीय कृषि एवं कृषि वानिकी विशेषज्ञों से वो मुलाकात कर सकते हैं और वो पूछ सकते हैं कि मेरा इस तरह की मिट्टी है या मेरा इस तरह का पानी है या पानी ज्यादा लवणता है या साधारण है तो मैं किस तरह के वृक्ष लगाऊं, उसके हिसाब से वे खेजड़ी, नीम, रोहिड़ा, बेर या अन्य उपयुक्त प्रजातियां जो है वो अपने यहाँ पे लगा सकते हैं। और सही योजना के साथ अगर कृषि वानिकी खेत उत्पादकता बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधन संसाधनों के लिए संरक्षण में ये क्या है महत्वपूर्ण योगदान देती है।
1: खेजड़ी है, स्थानीय इस तरह जी का रोवड़ा है, बैर है, छोटा पाद

0: है तो ए मिल जाया करे है।
1: हाँ बिल्कुल, इस जो हम जैसे मैं काजरी में वैज्ञानिक हूँ, तो हम काजरी में जो है आपको मानसून के महीने में अलग अलग खिजड़ी
0: हाँ
1: रोहेड़ा फलदार पौधे हैं, जैसे बेर है, गोंदा है, आंवला है, अनार है, ये सब जो है आपको काजरी में उपलब्ध हो जाता
0: तो
1: है।
0: किसान भाई ने कई करना पड़े लेवन वास्ते।
1: किसान भाइयों को कुछ नहीं करना है, हमारे यहाँ पे काजरी में नर्सरी है, जैसे ही वो आएंगे कृषि तकनीकी सूचना केंद्र है वहां पे आके वो नर्सरी का पता करके आप वहां पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपको जो भी पौधा चाहिए आप बता सकते हैं, और वहां पे अपना जो भी इसका हमने न्यूनतम मूल्य रखा है वो आप देके न्यूनतम दर पे ये पौधे अपने पास ले जा सकते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया जानकारी दे रही, किसान भाई आवे और जी का पौधा है छोटा पादप लेवे और आपरे फसला रे साथ है खेतर महीने लगावे और हमें मानसून को महीनो है। अबे बात आ आवे कि खास तौर से अपनो जी को राजस्थान है तो बरसात कदी तो समय पहला हो जा, कदी समय बाद में हो जा और कदी काफी लंब पड़ जाया करे। जलवायु परिवर्तन जी को वेरियो है खास तौर से अपने अठे भी हो रही है तो इनकी भात भांतरी जी की चुनौतियां है किसान भाई रे सामी आ रही है कर रही है। तो किसान भाई जलवायु परिवर्तनों जी की चुनौतियां है इन्हों किन तरह निपटता थका कृषि वानिकी ने बढ़ावो दे सके।
1: ये आपने सही बात कही कि जलवायु परिवर्तन, क्योंकि आज हम सब लोग इसी से ही जूझ रहे हैं और पूरे विश्व में जो है वो जलवायु परिवर्तन की जो बात अभी चल रही है, कृषि वानिकी का जो यहाँ पे जो महत्व है वो बहुत अच्छा है। कृषि वानिकी का महत्व इसमें ज्यादा है, और इसमें आजकल क्या क्या है कि बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा और सूखा की घटनाएं जो है वो किसानों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं।
0: हाँ
1: तो इसमें कृषि वानिकी के क्या है कि जिस तरह से हम अगर खेत पे जो है अपने फसलों के साथ वृक्ष लगाते हैं तो उसमें किसानों को जो है वो अतिरिक्त आय भी देता है, और इससे क्या है जो हमारे वहाँ का वातावरण है वो भी अच्छा बना रहता है, जो हम सूक्ष्म वातावरण कहते हैं। अगर हम पेड़ लगाएंगे फसलों के साथ तो वो फसलों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे नमी अच्छी बनी रहेगी और मिट्टी का कटाव भी कम होगा, हवा से होगा चाहे वो जल से होगा, या ज्यादा बारिश होती है तब भी मिट्टी का कटाव होता है। तो इन सब में जो वृक्षों का बहुत बहुत ज्यादा उपयोग है और
0: महत्वपूर्ण
1: सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, और मिट्टी में जो है मिट्टी में और पेड़ों में इसमें कार्बन का संरक्षण जो है ये पेड़ ये भी करते हैं, जिस तरह से हम आजकल कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं तो पेड़ों का उसमें भी एक बहुत बड़ा महत्व है किसानों को।
0: डॉक्टर अर्चना वर्मा जी आप कार्यक्रम में पधारिया और किसान भाई ने खेत बचाओ अभियान रमाई ने कृषि वानिकारी कई भूमिका वह सके इन विषय माते आप जानकारी दे रही, आपने बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम।
1: धन्यवाद सा, और राम राम।
0: कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूरा वेरियो है दिनेश राणेजा ने सीख दिराओ राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।
3: नारीवाटिका सुनने वाली सभी सखियों को उनकी रेडियो सखी लता परिहार
4: और बसंत कंवर का
3: स्वीकार कीजिए प्यार भरा
4: नमस्कार।

0: संडे है, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, अपनों के साथ दो पल बिता लीजिए। जिंदगी भागती रहेगी अपनी रफ्तार से, आज दिल को भी थोड़ा सुकून दे दीजिए। लता जी, जैसे ही रविवार आता है तो हमारा मन अपने आप गुनगुनाने लगता है, आखिर पूरे सप्ताह की मेहनत के बाद छुट्टी जो मिलती है।
1: बिल्कुल सही कहा बसंत जी, लेकिन कई लोग संडे को बस सोने, मोबाइल चलाने, टीवी देखने में अपना समय बिताते थे और शाम होते होते कहते, अरे भाई छुट्टी कहाँ गई पता ही नहीं चला, और पूरा संडे कब खत्म हो जाता है कुछ पता अंदाज ही नहीं होता, और समय जो है जो दौड़ता ही चला जाता है। तो क्यों ना कुछ इस तरह से संडे को इस बार मनाया जाए और कुछ अलग किया जाए कि संडे बन जाए हमारा फंडे।
0: बिल्कुल सही कहा लता जी, अगर संडे को सही तरीके से बिताया जाए तो ये पूरे सप्ताह के लिए नई ऊर्जा और नई प्रेरणा प्रदान कर सकता है। तो क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए, क्यों ना संडे को फंडे बनाया जाए, है ना?
1: बिल्कुल
0: और इसकी शुरुआत हम घर से ही करें।
1: संडे को एक्चुअली क्या होता है बसंत जी, एक माइंडसेट होता है शनिवार से, दिमाग में एक हमारा एक रूटीन माइंडसेट होता है कि अरे 6 दिन हम पूरे काम करते तो एक ही

0: दिन तो मिलता है सोने के लिए, पर क्यों ना ऐसा सोचा जाए कि वो एक ही दिन ऐसा होता है जहां हमें भाग दौड़ के ऑफिस में नहीं जाना होता है, ट्रैफिक के जाम में फंसना नहीं होता और बच्चों की स्कूल के लिए भाग दौड़ नहीं लगती होती है। तो उस संडे को हम थोड़ा सा समय से पहले टाइम से उठ जाएं, खुली हवा में बच्चों के साथ थोड़ा गार्डन में
1: टहलने जाए,
0: टहलने जाए,
1: घूमने जाए।
0: और नहीं तो जैसे कि अब तो कहते हैं कि शहर जो है वो बहुत गगनचुंबी इमारतों वाले हो गए, तो कोई बात नहीं, आप अपने नीचे के गार्डन में घूम लीजिए, छत पर घूम लीजिए, थोड़ा बहुत योगा कर लीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, और उसके बाद एक काम जो जरूर करिए कि पूरे परिवार के साथ बैठकर सुबह का नाश्ता जरूर करिए।
1: बिल्कुल। और उसके बाद
0: हाँ, और उसके बाद शाम का जो खाना है तो क्यों ना थोड़ी सी मदद भी करा दी जाए पत्नी जी को, है ना,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि 7 दिन वो भी तो, अगर वो कामकाजी महिला है तो उसे घर का काम भी करना होता है और ऑफिस भी संभालना होता है, तो एक संडे उसे भी सरप्राइज दे
1: बिल्कुल।
0: दीजिए।
1: जब रसोई में सबके हाथ लगेंगे तो वो जो खाना है उसका स्वाद जो है वो दुगना हो जाएगा, है ना। सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि खेल भी हो, जैसे कि लूडो, कैरम, अंताक्षरी या कुछ हंसी मजाक। यकीन मानो ये पल मोबाइल के स्क्रीन से कहीं ज्यादा खूबसूरत होंगे। और हाँ, थोड़ा समय अपने शौक के लिए भी निकालिए, गाना
0: गाना
1: गाइए,
0: गाइए, गुनगुनाइए,
1: किताबें
0: किताबें
1: पढ़िए।
0: पढ़िए, और हो सके तो थोड़ा सा बागवानी भी करिए, क्योंकि प्रकृति के नजदीक आप जाएंगे तो बहुत कुछ आप रिलैक्सेशन फील करते हैं। और सचमुच में बसंत जी, किसी ने बहुत सही कहा है कि पौधे भी गाने सुनते हैं, तो
1: बिल्कुल।
0: हमारी सखियों को क्यों ना सुनवा दे एक प्यारा सा गीत।

0: लव का अफसाना होगा
1: होगा होगा होगा होगा।

0: बसंत जी, पता है घर में जब हमारे बुजुर्ग होते हैं, खासकर जब एक प्यारा सा रिश्ता होता है दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, तो अगर वो हमारे घर में हैं तो हम देखिए आज की तारीख में हम सबसे ज़्यादा मतलब मानते कि हम बहुत ही खुशकिस्मत है। मतलब हमारे पास एक वो कीमती धरोहर है जो हमें मतलब अपने किस्से कहानियाँ, जो हमें उनकी जीवन के जो अनुभव है वो हमें उनसे सुनने को मिल जाते हैं। तो खास कर एक संडे का समय एक ऐसा निकालिए जब आप थोड़ा सा समय उनके साथ बिताएं, क्योंकि जो बातें उनकी कहानियों किस्सों में जो हमें मिलेगी, जो धैर्य संस्कार और रिश्तों की जो अहमियत वो हमें उनकी बातों से मिलेगी, वो सिर्फ कहानियाँ नहीं होंगी बल्कि वे जीवन के हमारे लिए अनमोल सबक होंगे। और
1: बिल्कुल
0: उनके साथ बिताएगा थोड़ा सा भी समय ना, उनको तो खुशी देगा ही देगा, मगर हमारी यादों में, हमारे जो कहते हैं ना एल्बम में, यादों के एल्बम में एक कुछ पन्ने और जुड़ जाएंगे, है ना?
1: बिल्कुल लता जी, बड़े बुजुर्ग तो हमारे परिवार की नींव होते हैं। उनके अनुभव, उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद ही हमारे घर को घर बनाते हैं। वे हमारे परिवार की सबसे अनमोल धरोहर होते हैं, और जब हम उनकी देखभाल करते हैं तो हमारे भीतर भी अपनापन बढ़ता है।
0: और खासकर जब परिवार का जब पूरे सदस्य, और एक सदस्य आजकल घरों में और जुड़ गए हैं, वो हमारे होते हैं पालतू जीव जंतु, हम उन्हें घर में रखते हैं, है ना। मगर कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो बाहर सड़क पर होते हैं, पेड़ पौधों पे हो चहचहाते हुए होते हैं, तो थोड़ा सा समय उनके लिए भी निकालिए, है ना। को थोड़ा सा
1: बिल्कुल
0: पानी के कुछ बर्तन भर के रख दीजिए, थोड़ा दाना दुनका उनके लिए भी निकाल दीजिए। सड़क पर चलने वाले जो गाय है, जो चार चौपाया वाले जो जीव हैं, उनके लिए पानी की जो खेड़ियाँ हैं, जो भी कुंडियाँ हैं, उनको थोड़ा साफ कर दीजिए, उनके लिए पानी भर दीजिए, उनके लिए दाने चारे की व्यवस्था कर दीजिए। बसंत जी, आपको नहीं पता ये कितना सुकून देता है। ये
1: बिल्कुल
0: मतलब कहते हैं ना कि जब आप उनके चहचहाट या आपके घर के बाहर निकलते ही कोई और आए ना आए, आपका चार पैरों वाला जो जीव है वो दौड़ता हुआ आपके पास आता है, और आपके पास आके जब प्यार से पूंछ हिलाता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो बिन बोले अपना सारा थैंक्स हमें दे रहा होता है। तो उनके लिए भी सखियों और परिवार के सब सदस्यों मिलकर बच्चों के साथ थोड़ा समय जरूर निकालें।
1: अच्छा जी लता जी, जब आप संडे की बात कर रहे हैं तो संडे को पार्टी तो बनती है।
0: बिल्कुल, पार्टी भी होगी, पर पार्टी को हम थोड़ा सा अलग तरीके से मनाएंगे, पर इस गीत के बाद हम अपने सखियों को बताएंगे।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सखिया सुन रही है अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका। लता जी, हम संडे की पार्टी की बात कर रहे थे।
7: जी जी।
6: तो आजकल जन्मदिन हो, सालगिरह हो, शादी या अन्य किसी भी खुशी के मौके पर हम खूब सजावट करते हैं, लजीज खाना बनाते हैं और मेहमान भी जमकर लुत्फ उठाते हैं और हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी छोटी छोटी लापरवाहियाँ हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुँचाती है?
7: बिल्कुल सही कहा बसंत, और खासकर जब खाना बनने के बाद या खाना जब सब लोग चले जाते हैं उसके बाद जो फैला जो कचरा होता है, यानी प्लास्टिक की प्लेटें, कप, चम्मच, थर्माकोल के सजावट के सामान, ये सब मिलकर बहुत सारी चीजों का मतलब कचरे का ढेर बना देते हैं। तो क्यों ना हम सखियों पार्टियों को इस बार थोड़ा सा अलग बनाया जाए, क्योंकि हमें देखिए जो भी होगा आज आने वाली पीढ़ी को ही इन सब का भुगतान करना पड़ेगा। हमारी धरती है जो प्रकृति माँ है, उस पर हम जाने अनजाने में इतना सारा कचरे का भार डाल दिया है कि उसको उसकी जो हवा में जो उसकी जो गंध है वो ऑक्सीजन की जगह दुर्गंध का जगह लेने शुरू हो गई है। तो क्यों ना हम थोड़ी सी इको फ्रेंडली हो जाए, हम कुछ ऐसी पार्टी मनाए जाए जिसमें हम ज्यादातर हमारा जो पार्टी

0: जो सजावट का जो सामान लगता है वो कोशिश करें कि प्राकृतिक जो फूल पेड़ पत्ते पौधे हों उनके हो जाए। कुछ घरों में जो हम क्रोशिए से कुछ चीज़ें बनाते हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें, डिज़ाइन वाली चीज़ें बनाते हैं, उनसे हम सजावट कर लें। घर पे जो हमारी साड़ियाँ पड़ी हैं, चुनियाँ पड़ी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिन्हें हम रीयूज़ भी कर सकते हैं और उनसे
1: बिल्कुल
0: हम कुछ अच्छे अच्छे झालर बना सकते हैं, बहुत कुछ सुंदर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बसंत, मैं बताना चाहूँगी कि हम टिश्यू का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लग गए हैं, या आप मान के चलिए एक टिश्यू का पैकेट अगर हम प्रयोग में लेते हैं तो न जाने कितने सारे पेड़ कटते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो जो हम पहले रुमाल रखने की जो हमारी एक प्रक्रिया होती थी कि घर से बाहर निकलते ही हमारे मम्मी वगैरह हमें टोक देती थी कि रुमाल साथ में लिया कि नहीं लिया, मगर आजकल हम जहाँ जाते हैं हमें टिश्यू पेपर मिल जाता है, हम बहुत सहज होकर जहाँ एक काम लेना होता है उसकी जगह हम चार पांच टिश्यू पेपर काम लेते हैं। और तो और वो तो हम उस वक्त लेते ही लेते हैं, साथ में चार पांच बैग में और डाल के लेके जाते हैं, है ना, क्योंकि एक स्वाभाविक सी, क्योंकि वो इजी टू हैंडल होने लग गया कि भाई कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है। मगर हमें
1: बिल्कुल
0: नहीं पता कि हमारी छोटी छोटी ये आदतें हमारे आने वाले समय पे, हमारे आने वाले भविष्य पे, हमारे आने वाले बच्चों पर कितना बड़ा हम एक कर्ज छोड़ के जा रहे हैं।
1: बिल्कुल लता जी, अब बात जब आती है खाने पीने की तो मोस्टली क्या करते हैं, डिस्पोजल बर्तनों का यूज करते हैं ना, तो उसकी जगह पर हम कोशिश करें कि मिट्टी के बने हुए बर्तनों को यूज करें,
0: पत्तल
1: है
0: दोनों
1: ना।
0: का यूज कर लें।
1: तो इससे क्या है ना, क्या पर्यावरण में कचरा भी नहीं होगा और हमारा भोजन भी जो है आसानी से हम ले सकेंगे,
0: बिल्कुल।
1: है ना।
0: और बसंत, आजकल तो वाकई में एक हर जगह एक मुहिम तो चली पड़ी है, लोग इस चीज़ को समझने भी लगे हैं, पर ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत हम अपने घर से करें कि हम कोशिश, पहले एक होता था कि कभी घर में त्योहार होता था कुछ तो बर्तन खरीदे जाते थे, है ना, कोई भी फंक्शन होता था तो घरों में बर्तन लिए जाते थे, शुभ संकेत भी माना जाता था, कोई भी त्योहार होता था तो धातु के रूप में बर्तनों को इकट्ठा किया जाता था, और वो बर्तन आने वाले समय में जब भी घर में कोई प्रोग्राम होता था, फंक्शन होते थे, तो वही बर्तन काम लिए जाते थे,
1: बिल्कुल
0: तो उससे बहुत सारा कचरा नहीं फैलता था, वही बर्तन वापस काम ले लिए जाते थे, और ये चीज़ें मतलब घर में एक हिसाब किताब के लिए भी बहुत सही रहती थी।
1: बिल्कुल
0: और साथ ही बसंत, आजकल जो मेहमानों की जो लिस्ट बनती है ना, मतलब सोचकर समझ में नहीं आता कि हम किसे खुश करने में लगे हैं,
1: बिल्कुल
0: हम
1: बिल्कुल
0: किसको इतना दिखावा कर रहे हैं, क्यों ना हम मेहमानों की लिस्ट को थोड़ा सा संकुचित
1: सीमित
0: कर,
1: करें
0: सीमित
1: बिल्कुल,
0: कर
1: और
0: दें।
1: भोजन जो है
0: हाँ
1: वो मेहमानों के हिसाब से ही बनवाएं ताकि
0: बिल्कुल।
1: वो बर्बाद नहीं हो, और अगर बच भी जाए तो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, इससे किसी का पेट भरेगा और वो बहुत सारी दुआएं भी देगा।
0: और बिल्कुल, और वो नियम जो आज तक मतलब मुझे लगता है कि हमें समझाया जाता था कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए और अन्न का दान महादान,
1: बिल्कुल
0: तो बहुत प्यारी पंक्ति एक याद आती है मुझे कि मैंने पढ़ी थी कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना
1: इतना
0: जाए
1: जाए
0: नाली
1: नाली
0: में,
1: में, बिल्कुल।
0: है ना।
1: लता जी, जब इन सब त्योहारों की या हम बात करते हैं पार्टियों की, तो सबसे बड़ी चीज आती है उपहारों की। लोग क्या करते हैं कि उपहारों के नाम पे न जाने क्या क्या, कैसी कैसी, वो
0: वो
1: कभी यूज आती है कभी नहीं भी आती, और घर में एक तरीके से भीड़ करती
0: खासकर जो
1: है
0: वो उसके ऊपर जो प्लास्टिक की
1: ना।
0: पन्नियां जो
1: हाँ
0: लपेटी हुई
1: बिल्कुल,
0: होती हैं,
1: जो
0: टेप होती
1: सजाने
0: हैं,
1: में
0: जी
1: जो
0: जी
1: वस्तुएं लगती हैं, तो उपहार का ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसे उपहार देने चाहिए जो हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक हो, जैसे कि किताबें हो, हाथ से बनी हुई वस्तुएं हो, या फिर हम पौधे भी दे सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है
0: बहुत सुंदर। इससे
1: ना।
0: पौधा देने से तो बेहतर कोई, मैं समझती हूँ, कोई उपहार ही नहीं हो सकता। और हम
1: बिल्कुल
0: उपहार का क्यों बसंत इंतजार करें, हम उपहार पौधों को आप हर ओकेजन पे दे सकते हैं, किसी का जन्मदिन हो, किसी का एनिवर्सरी हो, तो हम पौधे लगा सकते हैं, और पौधे जो होते हैं ना वो जैसे जैसे बढ़ते हैं ना, और उनकी जब हम देखभाल करते हैं तो हर दिए हुए व्यक्ति के प्रति भी मन में एक आभार भी प्रकट
1: बिल्कुल
0: होता
1: याद
0: है,
1: रहता है कि उसने
0: बिल्कुल,
1: दिया
0: रिश्तों में
1: था।
0: मिठास भी बनती है, अपनापन भी गहरा होता है, और मतलब वही वाली बात है ना कि पौधे जब हम लगाते हैं, और जब पौधों की बात आई रही है तो मानसून भी आ ही रहा है ना, तो
1: बिल्कुल
0: मानसून में भी हमें पौधे लगाने की तैयारी करनी है, पर अभी जब बात पार्टी की हो रही है तो पार्टी करनी है, मस्ती भी करनी है, पर पूरी जिम्मेदारी के साथ।
1: बिल्कुल, तो अगली बार आप भी जब कोई पार्टी आयोजित करें तो उसे इको फ्रेंडली बनाने का संकल्प करें।
0: बिल्कुल, पर मानसून की तैयारी भी अब हमको करनी है, तो
1: तो
0: सुनाते पहले सखियों को ये प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: लता जी, हम बात कर रहे थे मानसून की और पार्टी की, है ना। तो बारिश का जो मौसम है वो अब दस्तक देने वाला है।
1: जी जी
0: रिमझिम फुहारे, मिट्टी की सौंधी खुशबू, पेड़ों पर झूमती हरियाली और ठंडी हवाएं हमारे मन को सुकून देने वाली है। लेकिन इस खूबसूरत मौसम का आनंद तभी दुगना होगा जब हम मानसून के स्वागत की तैयारी भी पूरे मन से और पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी जागरूकता और समय पर की गई तैयारी हमें कई परेशानियों से बचा सकती है।
1: सही कहा बसंत। और सबसे पहले घर की बात करें तो हमें हमारी छतों को, हमारी खिड़कियों को और दीवारों को सही जांच कर लेनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दरारों में पानी का रिसाव होने लग जाए। छतों पर कई बार नालियां बंद होती है, उससे भी कई बार पानी छतों पे भर जाता है और वो रिसना शुरू हो जाता
0: बिल्कुल
1: है ना। और साथ ही बारिश के मौसम में सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो मच्छरों का होता है। तो आसपास का अपना वो भी व्यवस्था देख लें कि कहीं आपके घर के आसपास कोई नाली या कोई ऐसा जगह तो नहीं है कूलर में पानी भरा रहने की वजह से। कई बार टायर, पुराने टायर, पानी की टंकियों, उनकी भी नियमित सफाई कर लें ताकि उनमें मच्छर नहीं पनपे और मलेरिया, डेंगू।

0: चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से हम बच सके।
1: बिल्कुल, इसके साथ ही हमें खाने पीने की चीजों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए सदैव ताजा और स्वच्छ भोजन ही खाना चाहिए। पीने के पानी को उबालकर या फिल्टर करके ही इस्तेमाल करें और पानी को ढककर रखें। फल सब्जियों को भी अच्छी तरह से धोकर और इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल सही कहा बसंत। और बारिश का मौसम जितना सुहाना होता है ना,

0: मौसम जितना सुहाना होता है ना, इस मौसम में हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बारिश के दिनों में अक्सर बिजली के जो खंभे होते हैं वो झूल जाते हैं, पेड़ झूल जाते हैं, उनके तार झूल जाते हैं, और जो बिजली के टूटे हुए तार हैं वो कई बार ज़मीन पे भी गिरे हो जाते हैं या पेड़ की शाखाओं में उलझ जाते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ लगे आपको, तो उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें, और कभी भी किसी गिरे हुए बिजली के तार को, खंभों को ना छुएं, इवन किसी पेड़ को भी उसके नज़दीक ना जाएं, और जितना जल्दी हो सके तुरंत संबंधित बिजली विभाग को सूचित करें।
1: बिल्कुल लता जी, हम ऐसी जानकारी और भी देंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: इस कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका में। लता जी आपने बात की थी जैसे कि बारिश में अगर कहीं बिजली के तार हैं गिरे हुए तो उन्हें छूने की कोशिश ना करें और तुरंत बिजली विभाग को सूचित करें। इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है और कई बार सड़क पर भरा हुआ पानी उसकी वास्तविक गहराई और गड्ढों को छिपा देता है जिससे दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सड़क पार करते समय या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, तेज बहते पानी में जाने से बचें। याद रखिए सिर्फ कुछ मिनटों की सावधानी आपके आपको एक बड़े हादसे से बचा सकती है।
6: बिल्कुल सही कहा बसंत आपने, और खासकर बच्चों को ये बात समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों के लिए बरसता पानी आता हुआ बड़ा उनको अट्रैक्ट करता है, बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ बच्चे जो बड़े जो व्हीकल चलाते हैं वो गाड़ी को सर्राटे से दौड़ाने की कोशिश करते हैं, एक अजीब सा उनको एडवेंचर फील होता है। पर आपको नहीं पता कि आपकी तेज चलाई हुई गाड़ी न जाने पास में चलते हुए कौन से राहगीर के कपड़ों को खराब कर दे, उसकी उसकी क्या व्यवस्था है, उसकी सारी व्यवस्था वो खराब हो जाती है और आगे जाकर आपके स्लिप होने का खतरा बनता है। तो जो भी गाड़ी वाहन आप चलाते हैं तो इतनी हम मानवीयता जरूर रखें कि हम पास से निकलते वक्त हम हमारी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा थोड़ा धीरे कर ले ताकि आसपास चलने वाले राहगीरों को तकलीफ ना हो। और ये आपका छोटा सा किया हुआ जेस्चर ना पास से निकलने वाले व्यक्ति के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ले आता है, क्योंकि कहते हैं ना जितनी बड़ी गाड़ी में आप बैठे हैं मगर आप में थोड़ी सी मानवीयता भी आप रखते हैं तो पास में निकलने वाला व्यक्ति आपको मुस्कुराकर अभिवादन जरूर करता है, है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों का भी जरूर ध्यान रखें। और साथ में जब घर की बात चल रही है तो घर में कुछ ऐसी व्यवस्था है जैसे टॉर्च है, पावर बैंक है, और साथ ही साथ कुछ प्राथमिक जिसे फर्स्ट एड किट हम बोलते हैं वो जरूर रखें, क्योंकि ऐसे समय में कई बार क्या होता है छोटे छोटे मच्छर या कीट पतंगे ऐसे होते हैं जो हमें काट जाते हैं या गलती से हम कपड़ों में घुस जाते हैं तो वो काट सकते हैं, तो वहां से आपको फफोला हो सकता है। तो ऐसे में एकदम बारिश में आप कहाँ भागे, तो कुछ बेसिक दवाइयां और वो चीजें आप अपने साथ रखें, मोबाइल को अपना पूरी तरह चार्ज करके रखें, और किसी भी आपातकाल अगर स्थिति का अगर आपका सामना होता है तो आप इमरजेंसी नंबर अपने पास जरूर रखें और उस पर संपर्क करें।
5: बिल्कुल बरसात की बूंदे खुशियां भी लाती है और इम्तिहान भी लेती है, जो सावधानी का साथ निभाते हैं वही हर मौसम का आनंद लेते हैं। और अभी हम आनंद लेते हैं एक प्यारे से गीत का,

0: सखियों, स्वागत है सावन की सरगम में। और कहते हैं कि बारिश सिर्फ मौसम नहीं है बल्कि एक एहसास है। कभी बचपन की कागज की नाव है तो कभी किसी की यादों का कारवा है।
1: बिल्कुल, रिमझिम फुहारों ने धरती को फिर से संवारा है।
0: क्या
1: हर
0: बात
1: बूंद
0: है,
1: ने जीवन का नया संदेश उतारा है।
0: बहुत
1: सूखी
0: खूब।
1: डालियों पर फिर से हरियाली ने रंग बिखेरा है, मानो प्रकृति ने हरे रंग का सुंदर आंचल बिछाया है। और इस हरियाली को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है ना।
0: बिल्कुल। और मानसून सिर्फ पौधे लगाने का नहीं होता बसंत, बल्कि उनकी सही देखभाल करने का भी उचित समय है। इस मौसम में सबसे पहले आपको देखना होता है कि गमलों की मिट्टी को हम थोड़ा ढीला कर दें, हल्का कर दें, ताकि उसे पानी आसानी से निकल सके। सूखी और खराब पत्तियों की हम छटाई कर लें और पौधों को सहारा देने के लिए स्टिक या किसी रस्सी का इस्तेमाल जरूर करें। और गमलों में पानी बिल्कुल जमा न होने दें, वरना जड़ें सड़ सकती है और उसमें मच्छर भी पनप सकते हैं। और सबसे ज़रूरी और ख़ास बात जो पौधों को जिंदा रखता है, उनको हरा भरा रखता है, वो है हमारा प्यार और उसके साथ साथ है प्राकृतिक खाद, जैसे गोबर
1: बिल्कुल।
0: का खाद या कंपोस्ट। ऐसी ही कुछ चीज़ों आप अपने गमलों में डालें ताकि वो मुस्कुराते रहे, लहकते रहे, खिलखिलाते रहे।
1: बिल्कुल नेताजी, प्रकृति भी तभी मुस्कुराती है जब देखभाल सच्ची होती है। हर पौधे को जब अपनापन और समय पर देखभाल मिलती है तभी चारों ओर हरियाली खिलती है। तो आइए हम सब मिलकर प्रकृति की इस मुस्कान को बनाएं और हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक हरा भरा खूबसूरत संसार सौंप जाएं। क्योंकि जब पेड़ पौधे स्वस्थ होंगे तभी हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा।

0: बसंत जी, बात तो बिल्कुल सही कही है। जब भी बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, तो डर तो लगता है, पर
1: बिल्कुल
0: हमें नहीं लगता, ये बात
1: नहीं, लगता है लगता है, जब
0: अलग
1: ज्यादा काले बादल छाएंगे और बिजली अगर कड़कती है तो डर लगता है
0: जी, वो तो कुछ सावधानियां हम रखते हैं,
1: भाई।
0: मगर आज जो डर जो लगता है, जो मैं महसूस कर सकती हूँ, वो डर लगता है हमारे पालतू जानवरों को। और
1: बिल्कुल।
0: खाली पालतू नहीं, सभी जानवरों को, जब बिजली कड़कती है या बहुत जोर से आवाज होती है, बहुत तेज बारिश होती है, तो हमारे जानवर डरते हैं, चाहे वो सड़क के हो, चाहे हमारे घर के हो। तो हमें कुछ बहुत ज़रूरी है कि हम उनका भी ख्याल रखें, ये सब कह के ना छोड़ दें कि ये जानवर है, वो हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं, और साथ ही साथ जो बाहर सड़क पर घूम रहे हैं, चौपाया जीव है, हमें उनका भी ध्यान रखना है, कि उन कोशिश करें कि यदि वो हमारे घर के मुंडेर के पास आकर खड़े हुए हैं, पेड़ के सहारे के नीचे खड़े हुए हैं, तो उन्हें हम मार के भगाएं नहीं, उनके ऊपर पानी का छींटा नहीं डालें कि ये बाहर गंदगी कर देंगे, क्योंकि थोड़ा हम भी संवेदनशील हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उस बारिश से बचने के लिए हमारे आसपास आकर खड़े होते हैं। और घर के, खासकर घर के अगर हम जानवरों की बात करें, पालतू जानवरों की, तो उन्हें गीला होने से बचाने की हमें
1: बचाना
0: पूरी
1: चाहिए।
0: पूरी तरह कोशिश करें, और गीले हो भी जाए तो उन्हें अच्छे तरह से सुखाएं। वह जो भी जगह पे वो सोते हैं, उनके सोने की जगह बहुत साफ सुथरी और सूखी रखें, और समय समय पर उनको डीवॉर्मिंग भी करते रहें, ताकि जो भी टिक या फ्ली हैं वो उनको नहीं लगे, और उनके शरीर पर हाथ फेर के उनको देखभाल करें, उनको चेक करें कि कहीं कीड़े तो न लगे। और बसंत जी, साथ ही साथ उनको भोजन और पानी, इस पर भी उनका बहुत ध्यान देने की सख्त जरूरत है, कि भोजन और पानी भी उनका साफ सुथरा हो।
1: बिल्कुल। और यदि अगर आप बच्चों को, मतलब पालतू जानवरों को, बच्चे हुए एक
0: बच्चे ही हुए, वाकई बहुत सही
1: तरीके से
0: कहा आपने, बिल्कुल
1: पालतू
0: बिल्कुल, दिल
1: जानवरों
0: के
1: को अगर
0: करीब
1: बाहर
0: ही।
1: घुमाने के लिए ले जाते हैं तो उन्हें जल भराव वाली जगहों से दूर रखें, उन्हें साफ सुथरी जगहों पर घुमाएं। और कई बार कहते हैं ना कि जैसे पानी वाली जगह पर जब वो जानवरों को ले जाते हैं तो उनके साथ साथ वो पिस्सू हुए, जुओं का खतरा जो है बढ़ जाता है।
0: जी
1: तो
0: जी
1: समय समय पर पालतू जानवर को किसी अच्छे पशु चिकित्सक के पास लेके जाएं, उनकी सलाह लेकर अपने जानवर की देखभाल करें, क्योंकि वे भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है और उन्हें की जो देखभाल की जरूरत होती है, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का समझना, उन्हें पूरा करना, ये भी हमारा ही कर्तव्य है। तो जब हम उनका ध्यान रखते हैं तो वे भी हमें अपना प्यार, वफादारी और स्नेह को दुगना करके लौटाते हैं।
0: बिल्कुल। और किसी भी प्रकार की अगर उनमें सुस्ती दिख रही है, या अगर वो उल्टी कर रहे हैं, तो उनका उनको इमीडिएट उनका उपचार करें, और उनको चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं।
1: बिल्कुल।
0: यानी आपके जानवर में, चाहे वो आपके पालतू जानवर हो, चाहे आपके घर के आसपास के जानवर, उनमें किसी तरह की भी एक अजीब सी हरकत अगर आपको महसूस हो रही है। और एक और बात बताती हूँ वसंत जी, इसी बात पे बात याद आई, कि जानवर इतने संवेदनशील होते हैं कि वो आने वाली किसी भी विपदा को भी बहुत जल्दी समझ
1: बिल्कुल
0: जाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: है ना। और कहते हैं कि जो टिहरी जो पक्षी होता है, वो अपने अंडे भी उस ऊंचाई और नीच और समतल धरातल पर उस तरह से, मतलब पानी के नज़दीक या पानी की ऊंचाई पे देता है, क्योंकि जानवर या पक्षी जो होते हैं, वो मौसम को बहुत जल्दी से महसूस कर लेते हैं। तो वो अपने बच्चों को भी संभालते हैं, और उन्हें खतरा ना हो, तो अपने अंडों को भी इस प्रकार सुरक्षित स्थान पर देते हैं, ताकि उनके अंडे सुरक्षित रहें और पानी के बहाव में उनको नुकसान ना हो। तो इन
1: बिल्कुल।
0: जीव जंतुओं की अगर आप छोटी छोटी हरकतों को, इनकी आवाज़ों को, इनके महसूस करने की जो थोड़ा सा यदि अपन ऑब्जर्व करते हैं, तो कई बार हमें मौसम के संकेत भी हमको मिलते हैं, और आने वाली विपदा का भी हमें पता चल जाता है।
1: बिल्कुल।

0: सखियो किसी ने बहुत खूब कहा है कि पहला सुख निरोगी काया है ना
1: बिल्कुल
0: बसंत। और मौसम कोई भी हो, चाहे सर्दी गर्मी बरसात हो भी हो, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप हर मौसम का आनंद ले सकते
1: बिल्कुल,
0: हो।
1: स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। हर इंसान के लिए ये अनमोल वरदान है। इसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है, हर सपना वीराना सा लगता है। जो स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं वही सच्चा सुख पाता है। इसलिए इसे संभाल कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही खुशहाल जिंदगी की असली तैयारी है।
0: बिल्कुल। और मानसून का जो मौसम है ना, उसकी प्रकृति की सुंदरता और ताजगी का प्रतीक है। लेकिन जितना ही मौसम सुखद होता है ना, उतना ही इसे अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का भी हमें बहुत ध्यान रखना आवश्यक होता है। और इस मौसम में अक्सर नमी बढ़ जाने से कई रोग भी फैलने की संभावना होती है। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। उसे बाहर का खुला बासी तला भुना खाना उसे खाने से परहेज रखना चाहिए। और साथ ही इसमें पेट संबंधी अक्सर जो बीमारियां इन मौसम में देखने को मिलती है तो उस पर अपना जरूर ध्यान रखें। और साथ ही साथ बसंत, कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो हमारे दादी नानी ने जो हमें बताए हैं, जो कि कहते हैं कि खान पान में, हमारी रसोई में ही कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि इस समय जो होता है हमारे जो पेट की अग्नि होती है वो थोड़ी मंद हो जाती है, तो उस अग्नि को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, यानी हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए, कुछ हमारे रसोई के कुछ ऐसे पदार्थ है जिनका हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। यानी जो मेथी के जो बीज है या मेथी दाना, वो हमारे पाचन को सुधारता है। जीरा है, वो हमें गैस में राहत दिलाता है। और कलौंजी, उसको जरूर प्रयोग करना चाहिए, वो हमारी इम्यूनिटी को जरूर बढ़ाती है। और धनिये के बीज, अगर हमें इस मौसम में अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो हमें उसको ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, ताकि हमें यूरिनेशन अच्छा आ सके, बाथरूम है जो खुल कर आए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, सरसों के बीज हो गए, ये सब हमारे पेट के दर्द में भी आसानी, मतलब पेट दर्द में भी लाभ देते हैं, हमें ठंडक देती है। सौंफ हमें ठंडक देती है, और सरसों के बीज अगर हम नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है।
1: बिल्कुल लता जी, बात अगर आए कि बारिश में अगर हम भीग जाएं तो शरीर को अच्छे से सुखाकर गीले कपड़ों को तुरंत बदल लेना चाहिए, ताकि सर्दी जुकाम और त्वचा संबंधी बीमारियों से बच सकें। यदि बुखार, खांसी या कमजोरी महसूस हो तो आराम करें, जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लें। बारिश का मौसम में आनंद लेना अच्छा है, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी सावधानी हमें बड़े रोगों से बचा सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा बसंत। और वाकई में आज हमने यूनिवर्स में, हमें वो कहते हैं ना, हमने एक बहुत पॉजिटिव मैसेज भेजा है कि इस तपती दोपहरी में जो हमने आज बारिश के जो गीत सुनाए हैं, जो सावन को हमने आमंत्रित किया है।

0: तो बस यूनिवर्स हमारी बातें सुन ले और मुझे पूरा भरोसा है कि आज शाम को बारिश अच्छे से जम के हो जाएगी, और जिस तरह से हमने हमारे गीतों का आनंद लिया ना, हमारी सखियां भी बारिश का आनंद लेंगी।
1: बिल्कुल लता जी, और इसी के साथ ही घड़ी की सुइयां टिक टिक करके इशारा कर रही है कि अब कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है।
0: बिल्कुल, और आज हमारे साथ HPT पे हमारे साथ थे विक्रम सिंह जी भाटी, PK सैनी, FM पे थे CL सोनी, कंट्रोल रूम से थे दिलीप सिंह परमार, कंसोल से पद्मनी बोहरा जी जिन्होंने सुंदर गीत सुनाए, और इस प्रोग्राम का जो संपादन किया वो थे मनीष सोलंकी ने।
1: तो इसी के साथ ही अपनी रेडियो सखियों बसंत कंवर और
0: लता परियार को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं दोपहर समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व

0: योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ

0: हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से

0: होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का सूर्य नगरी चैनल है। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। जिसमें आप सुनेंगे चर्चित फिल्म आरजू का एक सदाबहार गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं प्रसिद्ध गीतकार हसरत जयपुरी ने। इसे अपने मधुर स्वर से सजाया है महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने। गीत का संगीत दिया है सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब आप सुनेंगे फिल्म वक्त से प्रस्तुत ये मधुर युगल गीत, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत दिया है रवि ने और इसे स्वर दिए हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कहाँ से आए बदरा, चश्मे बद्दूर फिल्म का ये गीत, जिसे गाया था यशुदास और हिमांती शुक्ला ने। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब आप सुनेंगे फिल्म जीवन मृत्यु से ये गीत, मधुर युगल गीत, जिसमें गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इसे स्वर दिए हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब आप सुनेंगे फिल्म भाई भाई का ये सदाबहार गीत। गीत के बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के, संगीत है मदन मोहन का, और इसे अपनी मधुर आवाज़ से सजाया है गीता दत्त ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय दिन के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। हमारी यह सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में आइए सबसे पहले सुनते हैं

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों दोस्तों सूरज ढल चुका है, आसमान ने शाम की चादर ओढ़ ली है और इसी हसीन लम्हे के साथ हम लेकर आए हैं एक और यादगार मुलाकात। स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम यो वाणी में, जहां हम दो रेडियो बडीज जुड़े हैं आपके साथ। मेरा नाम है आयुषी और आज मेरे साथ ही हैं
1: मैं हूँ विकास। तो जैसा कि श्रोताओं आयुषी ने बताया कि सूरज ढल चुका है और जो हमारा प्रोग्राम है आयुषी, वो भी सभी श्रोताओं के लिए जो है वो हम लेकर आ गए हैं। और हम सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा संडे स्पेशल प्रोग्राम होता है वो होता है फ़ोन इन, यानी कि जहाँ हम हमारे श्रोताओं को जो है हमारे लिसनर्स हैं उनको एक टॉपिक देते हैं और वो हमसे उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं तो आयुषी यही कहना चाहूँगा कि अगले 1 घंटे तक जो हमारे श्रोता है ना जितने भी, वो अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि उनसे होगी ढेर सारी बातें और काफ़ी अच्छा डिस्कशन भी होगा।
0: बिल्कुल दोस्तों, क्या है ना, रोज हम बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन अक्सर आप हमारी बातें सुनते हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन आज स्पेशल है। आज हमें मौका मिलेगा आपकी दिल की बातें जानने का, लेकिन इन बातों का हम सिलसिला शुरू करेंगे जल्द ही। फिलहाल सुनते हैं आज का हमारा ये आने वाला पहला म्यूजिकल सॉन्ग।

0: दोस्तों, हर शहर की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है। कहीं की गलियां मशहूर होती हैं, तो कहीं का खाना, तो कहीं के लोग। लेकिन विकास, आज मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर मैं तुमसे पूछूँ कि तुम्हारे शहर की सबसे खास बात क्या है, तो तुम क्या बताओगे?
1: एक्चुअली जो मेरे शहर की खास बात है यानी कि जोधपुर की, तो मैं ये कहना चाहूँगा सबसे स्पेशल चीज़ ही यही है कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो हमारे शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है।
0: जी
1: और यहाँ पे जो भी आपको पुरानी चीज़ें हैं, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं यहाँ पर, वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको पुराने टाइम के या पुराने समय की जो भी कलाकृतियाँ रहती थी, जो भी जो पत्थर यूज़ लिए जाते थे, इनफैक्ट जोधपुर के जो पत्थर है वो काफ़ी फेमस है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो
0: तो
1: हम
0: सबसे
1: सभी जानते
0: फेमस
1: हैं
0: है
1: कि
0: जोधपुर।
1: बिल्कुल, चाहे वो मिर्ची वड़े, समोसे या कचौड़ी क्यों ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जोधपुर शहर की बहुत ही ज़्यादा खास है।
0: अब इतनी बात, अब ये सवाल मैंने तुमसे पूछ ही लिया है, तो
1: बिल्कुल
0: मेरा
1: बिल्कुल
0: मन कर रहा है ना कि आज मैं मेरे दोस्तों से भी जानूं, जो मेरे लिसनर्स हैं ना, उनसे भी
1: बिल्कुल
0: पूछूं कि आप अपने शहर के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या खास लगता है।
1: बिल्कुल। तो अगर हमारे लिसनर्स जो है हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमारे फ़ोन नंबर है 02912553300, और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।
0: तो दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं इन नंबर पे कॉल करके, फिर हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं अपने शहर के बारे में।

0: आयुषी, हम सभी जानते हैं कि जो मई के बाद है, ठीक है, वो मानसून का जो टाइम है वो स्टार्ट होने लग जाता है। यानी कि भारत के कई सारे क्षेत्रों में जो है वो काफ़ी जगह एरिया में जो है वो बारिश भी शुरू होने लग जाती है, ठीक है। तो मेरा तुमसे ये सवाल है कि बारिश से जुड़ी हुई ऐसी कोई याद आपके
1: अच्छा,
0: पास है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
1: अब मुझे लगता है मेरे पास की सभी के पास बारिश से जुड़ी तो याद होगी। अब
0: बिल्कुल
1: बात करें बारिश की, अगर पहली बारिश हो तो उसकी मिट्टी की, अगर किसी को
0: बिल्कुल
1: किताब पढ़ना पसंद है तो बारिश आने पे वो लोग किताब लेके, और कुछ लोग जिन्हें गाने गाने पसंद है या फिर सुनना पसंद है, जो कि मेरी भी कैटेगरी है, तो मैं सीधा गाने चला करके बैठ जाती हूँ और गाने सुनती
0: गर्मागर्म
1: हूँ।
0: चाय की चुस्की भी जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जाती है।
1: बिल्कुल, लेकिन उसके बाद में क्या होता है ना, वो गाने सुनने के बाद में मैं जाती हूँ एकदम पुराने ज़माने, वो ज़माना
0: बिल्कुल
1: जब मुझे लगता है कि मेरी मेरे बचपन का ज़माना था।
0: बिल्कुल
1: मुझे याद
0: बिल्कुल
1: है, मेरी फेवरेट यादें तो वही हैं कि जब स्कूल बस आती थी, हम लोग स्कूल पहुँचते थे और पता चलता था कि तेज़ भारी वर्षा के होने के कारण स्कूल जो है कैंसिल कर दी गई है,
0: बिल्कुल
1: पढ़ाई कैंसिल, फिर घर जाके जो मज़े होते थे, मेरी फेवरेट अभी तक की मेमोरी तो वही है। बाकी कुछ यादें हैं, कुछ लोग हैं जो बारिश के चालू होते ही याद आ जाते हैं, वो अलग
0: बिल्कुल
1: बात है।
0: बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि काफ़ी लोगों को जो है वो बारिश में गाड़ी लेके निकलने का और घूमने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि हालांकि लोग, ऐसी बात नहीं है, कार भी प्रिफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाइक या स्कूटी पर अगर आप बारिश का मज़ा लेंगे तो मेरा मानना है पर्सनली कि वो मज़ा ही कुछ और है।
1: बिल्कुल, बारिश में अगर मौसम के आपने मज़े नहीं लिए तो फिर आप घर में बैठकर तो क्या ही है, ऑफिस तो हम अक्सर जाते ही है। और अगर सोचो
0: बिल्कुल
1: संडे हो और संडे को बारिश हो जाए
0: वाह, फिर
1: और
0: तो बात ही
1: सबकी
0: कुछ और
1: छुट्टी
0: हो।
1: है और बारिश हो जाए, क्या दिन बन जाता है। नहीं, मैं तो सोच रही हूँ काश आज भी बारिश हो जाए, लेकिन फिलहाल मैं अब विश करती हूँ कि मेरे किसी दोस्त का कॉल आ जाए, जिसमें हमारे नंबर
0: बिल्कुल
1: क्या थे विकास।
0: 02912553300, और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।
1: तो दोस्तों, हम लोग बेसब्री से आपके कॉल का जो है इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि यही सवाल जो है हम आपसे कर सके और आपका जो जवाब है वो सुन सके। तो
0: बिल्कुल
1: फटाफट से हमें कॉल लगाइए और अपना जवाब बता दीजिए। फिलहाल तब तक के लिए बढ़ते हैं आने वाले इस अगले म्यूजिकल सॉन्ग की तरफ।

0: तो लगता है हमारी शाम में जो है वो हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुषी, करते हैं उनसे बातचीत।
1: बिल्कुल।
0: हेलो
2: हेलो,
0: हेलो। जी सर,
1: नमस्ते
0: नमस्कार।
1: सर।
2: हेलो,
0: हेलो।
2: हाँ सर, नमस्कार सर।
0: जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए।
2: हाँ सर, मेरा नाम दारूराम मेघवाल, गांव चोकड़ी, जिला जोधपुर, तहसील पिपार से बोल रहा हूँ सर।
0: तो दारूराम जी, जैसा कि आपने हमारा सवाल तो सुना ही होगा कि बारिश से ऐसी जुड़ी हुई कोई याद जो अभी तक आपके साथ में बनी हुई है या जिसे आप लाइफ टाइम अपनी डिक्शनरी में जोड़े रखना चाहते हैं।
2: हाँ सर, बारिश बारिश तो ऐसी चीज है कि वो बचपन की यादें हैं मेरी। तो
0: जी,
2: सर, बारिश आती सर, स्कूल जाते थे और रिमझिम रिमझिम बारिश बरसती थी, और वो बारिश बहुत ज्यादा चालू हो जाती तो हमारे पिताजी ने स्कूल नहीं भेजते थे, और बारिश का आनंद लेते थे या स्नान करते थे और रिमझिम बारिश बरसती थी।
0: अच्छा, बारिश में जैसे घर पे आपके गर्मा गर्म पकवान खाने का जो मज़ा है वो
2: हाँ,
0: कुछ और ही रहता
2: पकोड़ा
0: था।
2: वकोड़ा बनाना खाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, पकोड़े या फिर कोई भी गर्मा गर्म कोई ऐसा पकवान हो जिसको खाते ही मज़ा आ जाए।
2: हाँ, बिल्कुल
0: बिल्कुल।
2: सर।
1: तो बारिश के लिए तो आपने ये बता ही दिया है, लेकिन आप आज के टाइम, अभी थोड़े टाइम बाद में जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका क्या, आप तब के लिए क्या सोचते हैं कि तब आप
2: तो
1: किस
2: मैडम,
1: तरीके से अपनी जो
2: अब
1: यादें
2: मैडम
1: ताज़ा
2: बारिश
1: करेंगे?
2: आ रही है तो अच्छा गाना सुनना, वो आता है ना, आजा बहारों की मलका, इसे उमड़ जाए दिल का। सर,
1: अच्छा, तो
2: ये
1: आपको
2: बारिश
1: भी
2: आ रहा है।
1: बारिश आते ही गाने चलाकर सुनने का शौक है ऐसा?
2: हाँ
1: फिर तो आपको हमारा जो है 5 बजते युवाणी लगा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे ना हमारी भी प्लेलिस्ट, अभी आपने जैसा गाना बताया ना, वैसी ही होने वाली है। तो ये
2: धन्यवाद।
1: सुनना तो मत भूलेगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: लगता है आयुषी हमारे जो आज की शाम के दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो
1: क्या
0: आइए
1: बात
0: करते
1: है।
0: हैं उनसे बातचीत। हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो हेलो।
1: हेलो हेलो
0: जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप हमारी?
1: जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं।
0: जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी में।
1: ओके, थैंक यू सो मच।
0: जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
1: शालिनी बोल रही हूँ, जोधपुर से।
0: जी, शालिनी जी, तो जैसा कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपने सुना ही होगा
1: बिल्कुल,
0: कि
1: आपके टॉपिक में है
0: बिल्कुल
1: कि फर्स्ट बारिश में जो
0: बिल्कुल
1: भी आप क्या फीलिंग्स होती हैं वो बताएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके साथ ऐसी कोई जुड़ी मेमोरीज है जो आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, जब फर्स्ट बारिश होती है वो भी जोधपुर जैसी जगह में जहाँ पे
0: बिल्कुल
1: इतनी
0: बिल्कुल
1: गर्मी होती है, और जब फर्स्ट बारिश होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब वाकई में जैसे हम किसी एक अच्छे से हिल स्टेशन पे पहुंच गए हों जहाँ पे
0: बिल्कुल
1: हमें बहुत सुकून मिलता है। ऐसे
0: बिल्कुल
1: में लगता है कि या तो आप कोई अच्छी सी पुरानी किताबें पढ़ें
0: जी
1: या
0: जी
1: आप पेंट ब्रश लेके अपनी कोई अच्छी सी पेंटिंग बनाएं,
0: जी
1: ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे एक और यूनिक चीज है कि
0: जी जी
1: जब पहली बारिश होती है तो ये तो फीलिंग्स होती ही है,
0: जी जी
1: और यहाँ पे जो मेरे काफी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जो मैं पढ़ाती हूँ तो
0: जी जी
1: फर्स्ट बारिश में वो एक जब फर्स्ट बारिश हो रही थी वो बहुत जिद कर रहे थे, नहीं मैम हमें तो बारिश में नहाना ही है, और वो लोगों ने इतना एंजॉय किया और इस चीज को उन्होंने ऐसे फील किया, बोले कि मैम ऐसा लगा जैसे कि हम वाकई में किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं। मैंने कहा ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि जैसा आपने बताया कि आप बाय प्रोफेशन जो है वो टीचर है, तो हम भी अपना बचपन जो है वहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से जब कभी भी बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, और जब स्कूलों में छुट्टी हो जाती है, तो वो खुशी ही एक अलग होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, इतना अच्छा फील होता है कि काश जैसे छुट्टी हो वैसी बारिश हो, अगर भीगे किताबें तो भीगे, कम से कम इंजॉय तो करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो मैम अब आप हमें ये बताइए कि जब आपने उन बच्चों को ऐसे मस्ती करते हुए देखा ना, तब आपको अपना बचपन याद आया कि नहीं?
0: बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मैंने मतलब उन्होंने इतना एंजॉय किया और उस चीज को मैंने ऐसे फील किया, ये कितना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने बचपन में फिर से पहुंच गए हैं।
1: बिल्कुल मैम, तो मैम आगे और भी ऐसी ही बारिश होने वाली है, मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे बच्चों से जुड़े ही रहना चाहिए कि आपका जो बचपन है उसकी जो याद है वो आपके लिए ताज़ा होती रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम।
0: थैंक यू सो मच।

0: तो दोस्तों इसी के चलते हमारे जो अगले लिसनर हैं वो भी हमारे से जुड़ चुके हैं, तो चलिए फिर बात करते हैं उनसे। नमस्ते सर।
1: नमस्कार मैडम, मेरा
0: तो सर आप अपना नाम बताएं।
1: नाम ताज मोहम्मद है, मैं चंचलवार से बोल रहा हूँ साहब।
0: अच्छा, तो अभी आप हमारा प्रोग्राम सुन ही रहे हैं, हमारी जो बातें सुनी ही होगी आपने, तो आप भी बता दीजिए बारिश को लेकर के आप क्या सोचते हैं।
1: बारिश तो याद बहुत आती है मैडम, छोटा था बचपन में, कहीं गायों और चार था और घर के साथ जाओ गायन ले जाओ निगे राखी जो दूजो और मैं मत बड़न दी जो मैं दोरो माथे जान कूदता कूदता कूदता हो जाता नींद आ जाती उनटे में गायों पड़ो सिर्फ जान फसल हैं खा जाते
0: अच्छा, तो सर आपको
1: पड़ो
0: तो बहुत याद आ गई है बारिश
1: पड़ोसी
0: को।
1: आओ तो जो अगर ठोक राय तो कर दे तो ठोकता ठोक हाल तक नहीं इच्छा भूलिया मैं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने ताज मोहम्मद जी के, पुराने जो हमारे रीति रिवाज थे, चाहे वो जानवरों से जुड़े हो, इंसानों से हो या पशु पक्षियों से हो, तो वो भी हमारे साथ कभी कभी एक मेमोरी बन जाते हैं हमेशा के लिए।
1: हाँ साहब,
0: बिल्कुल सर, ये जो यादें हैं ये भूलने जैसी है भी नहीं कि हम सब भूलें इन्हें, तो बस बार बार जिया जा सकता है। फिलहाल के लिए सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह आगे
1: धन्यवाद
0: भी
1: मैडम,
0: जुड़िएगा। धन्यवाद।
2: धन्यवाद। तो

0: हम जो है बारिश की बातें कर रहे हैं ना दोस्तों, है ना विकास?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसी के चलते मैंने भी क्या है ना एक शेर सुना था, वो मुझे याद आ गया, मैं वो सुनाना
1: जरूर जरूर।
0: तो वो कुछ ऐसा था, मुझे लगता है काफी लोगों ने सुना होगा, कि उसने बारिश में भी खिड़की खोल के नहीं देखा, उसने बारिश में भी खिड़की खोल के नहीं देखा, भीगने वालों को कल क्या क्या परेशानी हुई।
1: वाह क्या बात कही है आपने। और इसी के साथ जो है वो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि अगर आप भी बारिश से जुड़ी हुई जो चीजें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 02912553300 और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।

0: लगता है हमारे अगले कॉलर भी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो।
1: जी नमस्कार विकास जी एंड हर्ष जी
0: जी, नमस्कार आपको भी।
1: जी मैं गांव धुंधड़ा तहसील लोनी जिला जोधपुर से निवेदन कर रहा हूँ। अल्लाह दीन धुंधाड़वी
0: जी, तो अलादीन जी, जैसा कि आपने आज का हमारा विषय सुना ही होगा कि बारिश से जुड़ी हुई कोई ऐसी मेमोरी है जो आपके साथ अभी तक है, या फिर जो लंबे समय तक आप
1: विकास
0: जिसे
1: जी
0: अपने साथ रखना चाहते
1: जी
0: हो, आप
1: विकास जी
0: हमारे
1: ऐसी
0: साथ शेयर।
1: मेमोरी तो है मेरे पास
0: जी
1: दो
0: जी
1: चार, थोड़ी वो थोड़ी लंबी लंबी है।
0: जी
1: मैं
0: जी
1: तो आज के हालात में बता रहा हूँ आप।
0: जी
1: गांव
0: जी
1: में हर मौसम में क्या है कि लोग अलग अलग अंदाज से, मतलब अब क्या बारिश का इंतजार कर रहे हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: अब खेतों में क्या है, वो सूट वगैरह कर दिया तैयार खेती,
0: जी,
1: और अबे तो हुकम बादलों में देखने वो कह रही है किसान के, मैं थोने पूछूं काला बादलों से कद आसो मारे पौवना, के
0: जी
1: मैं
0: बिल
1: थोने पूछूं काला बादलों
0: जी
1: से
0: जी
1: कद आसो मारे पौवना, सगड़ा करे उड़ीक थारी थे कद बसोला जोदाना रे आंगणे,
0: वाह, क्या बात कही
1: पोवरिया
0: है आपने।
1: करड़ा वे डिडरिया भूले कोयल पपाया करे फुकार, खेजड़ियों में मिल के निरणिया कहवे थे कदा तुम्हारे द्वार।
0: वाह,
1: तो
0: क्या
1: साहब
0: बात
1: में
0: कही है
1: तो
0: आपने
1: ये रो
0: अलादीन।
1: इंतजार है, बारिश रो इंतजार है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ एक तरफ जो है शहर में लोग बारिश को एन्जॉय करते हैं, वहीं दूसरी ओर जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान वर्ग के जो भी लोग हैं वो इंतज़ार करते हैं अपनी फसलों के लिए कि कब उनकी जो फसलें हैं
1: नहीं
0: उनको अच्छा पानी मिले।
1: जी, बिल्कुल
0: बिल्कुल सही।
1: आपका कार्यक्रम मैं लगातार सुनता हूँ, और
0: जी जी
1: वैसे
0: बिल्कुल
1: रेडियो जोड़ता मैं करीब 40 साल से लगातार रेडियो सुनता हूँ।
0: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इतना लंबे समय तक जो है वो हमारे साथ बने रहे। तो अलादीन जी, आशा करते हैं कि आपके गांव में जो है वो जल्दी से जल्दी बारिश हो और आप सभी को
1: आमीन
0: जो है वो इसका
1: आमीन
0: भरपूर फायदा मिले। हमारे साथ
1: जी
0: जुड़ने के
1: आमीन,
0: लिए बहुत बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया साहब।
0: जी।
1: ओके।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: तो दोस्तों, इसी के चलते हमारे साथ हमारे श्रोता जो है वो लगातार जुड़ रहे हैं। देखते हैं अब हमारे साथ में हमारे कौन से श्रोता जुड़े हैं। नमस्ते सर।
5: हेलो, नमस्कार सर।
2: जी नमस्कार,
4: आपका नाम बताएं।
5: मैं पचपदरा से धनाराम बोल रहा हूँ।
4: अच्छा, तो आप क्या बताना चाहते हैं हमें बारिश से रिलेटेड, अपनी कोई याद के बारे में?
5: बारिश की याद तो बहुत आती है। जब छोटे थे तब हम कहीं खड्डों में पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता तो हम कागज की नाव बनाकर चलाते थे और कंपटीशन भी करते थे कि सबसे आगे किसकी जा रही है, हवा के सहारे उसको चलाने की कोशिश।

0: करते थे।
1: बिल्कुल सर, और
0: अब
1: साथ में
0: खैर
1: ये भी तो है ना, आजकल मैंने देखा है बच्चे कहाँ फोन में ऐसे लगे रहते हैं, लेकिन वो कागज की जो नाव बनाने का सिलसिला है वो जो छोड़ ही दिया है, वो तो अब आपसे ही सुनने को मिल रहा है हमें शायद।
0: बचपन हमारे उस समय की बात है, कुछ अलग ही थी। जब चलाते थे ना तो एक फीलिंग अच्छी थी, फीलिंग आती थी क्या अपनी नाव जा रही है पानी में।
1: बिल्कुल सर। इसके अलावा और भी कोई याद जो बारिश से आपकी जुड़ी हो?
0: हाँ बारिश से जुड़ी मैम, एक बार क्या हुआ बचपन में, हम हमारे जहाँ खेत था, खेत के पास में एक बड़ा खड्डा था, वो भर गया था। तो हम क्या गलती से उसके अंदर नहाने के लिए चले गए, तो 2-3 घंटे आए नहीं, तो हमारे पिताजी पीछे आए
1: अच्छा
0: और हमें क्या धुलाई हुई उस दिन, वो धुलाई आज दिन तक याद। उसके बाद मैं खड्डे में नहाने के लिए नहीं गया।
2: बिल्कुल सही कहा आपने कि ये मेमोरी तो जो छोटी छोटी सी मेमोरीज होती है वो काफी टाइम तक हमारे साथ
1: और
2: रहती है।
1: मुझे ऐसा लगता है ऐसी तो सबकी एक ना एक याद होगी जिसमें
2: बिल्कुल
1: बारिश की वजह से उनकी एक बार धुलाई हो चुकी है मम्मी या पापा से, है ना। तो
2: बिल्कुल
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और साथ में हमें भी याद दिलाई कि किस तरह तरीके से हमारी भी बचपन में एक बार हमारी मम्मी और पापा से धुलाई हो रखी है।
2: बिल्कुल। तो आयुषी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं बारिश के बारे में, कि जैसे आप बारिश में क्या करना पसंद करते हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके पास, आपने बताया 8-10 है, लेकिन उसमें से भी आप प्रायोरिटी पर किस चीज़ को रखते हो?
1: प्रायोरिटी पर मैं जो है, मुझे कविता है, मुझे शेर शायरी ये सब पढ़ना
2: जी
1: बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा भी मैं सबसे जो मेरे दिल के बहुत करीब लोग हैं उन्हें मैं फटाफट से कॉल लगा के उनसे लंबी लंबी घंटों तक बातचीत करती हूँ जब तक
2: बिल्कुल
1: बारिश ख़त्म नहीं हो जाए। तो मेरी ये फेवरेट एक्टिविटी है बारिश की। मैं तुमसे पूछूँ तो विकास इसका क्या जवाब दोगे?
2: जैसा कि बताया आपने कि याद के अगर मैं बात करूं, तो अभी इन्होंने एक श्रोता ने जो बताया था ना, अभी हमारे लिसनर कॉलर थे, कि नाव बना के जो है वो हम चलाते थे, तो वैसे ही नाव के साथ साथ हमारा बचपना तो वैसे निकला ही है, और उसके साथ साथ जैसे साइकिल लेके, जैसे बचपन में साइकिल लेके जो है
1: हाँ
2: बारिश में निकलना, या फिर कहीं जो कहते हैं ना भरा हुआ पानी होता था ना कहीं पे बारिश में, तो वहां से फास्ट साइकिल निकाल के जो पानी को उछालना, मतलब ये
1: भौतिक
2: बचपन
1: मिलती
2: में
1: थी।
2: बहुत चीज़ें होती थी हमारे साथ में, है ना। और फिर दूर दराज जाके, मतलब दूर दराज ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा अपने घर से दूर जाके जो है वो नमकीन मिर्ची बड़े समोसे का जो आनंद लेना, तो वो सारी मेमोरीज होती है। अब तो देखो आयुषी, ये कहना है कि जब आप धीरे धीरे जब मैच्योरिटी के लेवल पे आते हैं या फिर आप बड़े होते हैं, आप अपने प्रोफेशन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो छूट जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है आयुषी के इंसान को हमेशा जो ये बेहतरीन पल हैं, मोमेंट्स हैं, वो हमेशा अपनी डिक्शनरी में जो है वो जोड़ने चाहिए।
1: बिल्कुल, और इसका बेस्ट तरीका ये है ना कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं या हमारे आस पड़ोस में कोई छोटे बच्चे हैं जो भी है, हम उनसे जाके चला करके बात करें। आजकल क्या है ना, फोन में हम इतने बिजी हो गए कि आसपास
2: बिल्कुल,
1: बच्चे अगर कोई दिखता है हम भी उन्हें इग्नोर करते हैं, वो भी खुद में मस्त रहते हैं।
2: अक्सर हम ये भी देखते हैं कि हम जैसे हमारे साथ वाले मित्र हो गए या दूसरे जो भी फैमिली मेम्बर्स हो गए, तो हम कभी ऐसे डिस्कशन करते हैं कि यार आप बारिश में कहाँ घूमने का प्लान बना रहे हो, तो वो बताते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है, हम जो अपनी बिजी इतनी हमारा शेड्यूल रहता है कि हमें 1% भी टाइम नहीं मिल पाता है बाहर जाने का। तो मैं ये कहना चाहूँगा उन सभी को जो इन मोमेंट्स को एन्जॉय नहीं कर पा रहे, कि आपको हर चीज़ के लिए समय तो निकालना पड़ता है थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं है, आजकल सभी लोग अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन जो चीज़ जब समय के लिए ज़रूरी है वहाँ पे वो होना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है।
1: बिल्कुल विकास, मुझे भी यही लगता है कि आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। और पता है, मैं ये पक्का कहती हूँ कि बहुत सारा काम करने के बाद में भी हमें कई बार सुकून नहीं मिलता है,
2: बिल्कुल
1: लेकिन बारिश में थोड़ा सा 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं आप। निकाल करके बैठिए, अपनी पुरानी यादों को याद कीजिए, किसी से बात कीजिए, कुछ नहीं मिले तो गाने सुन लीजिए, फिर भी कुछ नहीं मिले तो सीधा सीधा 102.1 लगा करके हमारे जो प्लेलिस्ट है, हमारे जो
2: बिल्कुल
1: गाने हैं वो आप सुन लीजिए, वरना इसी तरीके से हमें कॉल करके बातें कर लीजिए। फिलहाल विकास जरा बता दो, अगर कोई हमें कॉल करना चाहे इस टाइम तो किस नंबर पे करेगा?
2: हमारा नंबर है 02912553300, और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।
1: तो दोस्तों फटाफट से हमें कॉल करिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके अगले कॉल का।

0: इसी के साथ चलते हैं आयुषी हमारे अगले कॉलर की ओर।
1: लेकिन उससे पहले ना विकास, मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतने लोगों की अलग अलग यादें होती हैं बारिश में, लेकिन उसी
0: बिल्कुल
1: में पता है एक कैटेगरी अलग ऐसी भी होती है, जो कि अगर मेरे कई दोस्त होंगे उन्हें भी पता ही होगा कि कुछ लोग जो है बारिश को किसी की याद में भी देखते हैं, कुछ
0: बिल्कुल
1: लोगों को बारिश से उनकी किसी के साथ में हुई पहली मुलाकात याद आ जाती है
0: बिल्कुल
1: ना। तो इसी में मुझे एक दो शेर, एक लाइन थी जो मैंने कहीं पढ़ी थी वो याद
0: बिल्कुल
1: आई है, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ
0: जरूर
1: कि वो कुछ ऐसी थी कि याद आई है वो पहली बारिश, याद आई है वो पहली बारिश जब तुझे एक नज़र देखा था, है ना। तो
0: वाह
1: ये
0: क्या
1: ऐसी
0: बात
1: जो
0: है
1: कुछ लाइंस होती है ना, उससे ये पता चलता है कि किसी ने किसी को अगर पहली बार देखा है, पहली
0: बिल्कुल
1: बार छुआ है, या फिर साथ में बैठ के चाय भी पी है या कुछ
0: बिल्कुल
1: बातें भी की है, तो
0: बिल्कुल
1: अगली बारिश में मुझे लगता है वो सारी चीज़ें अगर सच में प्रीशियस थी या दिल की कुछ बातें थी तो वो पक्का याद आती है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बारिश को इन सारी चीज़ों के अलावा किसी की याद में, किसी की मुलाकात में भी देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि ये अक्सर चीज़ें जो है वो होती रहती है इंसान के साथ में। तो जितने भी हमारे श्रोता है वो हमें सुन रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आयुषी ने जो भी चीज़ बोली है, अगर आप भी हमारे साथ, आपके पास कोई ऐसा मोमेंट हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। लेकिन आयुषी, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे अगले कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए पहले करते हैं उनसे बातचीत। हेलो,
2: हेलो हेलो,
1: नमस्ते सर।
2: नमस्ते मैम।
1: सर आप अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम भूपेंद्र है मैम।
1: अच्छा, तो आप बारिश से जुड़ी जो आपकी जो लाइन है वो, जो भी याद है ऐसा जो भी है वो बताएं।
2: बारिश की धरन भी ऐसा है, बचपन में तो एंजॉय करते ही हर बच्चा एंजॉय करता है।
0: जी
2: जैसे अभी सबने बताया कि जैसे साइकिल लेके निकल जाना बारिश आए।
1: तो
2: जी
1: सर आपकी क्या
2: जी
1: याद है ऐसी, आपसे जुड़ा कोई, आपका कोई किस्सा हो जो आप हमें सुनाएं।
2: हमारे किसी यही है मैडम जी, जैसे पहले बारिश होती थी बचपन में, हम तो गांव के हैं तो फिर कहीं पे भी खड्डा वगैरह में पानी इकट्ठा हो जाता, हम झूलने के लिए निकल जाते थे।
1: अच्छा, तो सर आप ये बताएं कि बारिश से जुड़ी तो आपने ये बात बताई दी, ऐसा कोई और किस्सा जो आपने कभी किसी और के साथ होते हुए देखा हो, तो अगर आपको वो भी याद हो तो आप वो भी बता सकते हैं हमें।
2: हमारे दोस्त झूलते थे, उनको घर वाले मारते थे, मम्मी पापा वगैरह ताने देते थे, वही किस्सा था मेरा।
0: भूपेंद्र जी, अगर आपके पीछे रेडियो चल रहा है तो आप थोड़ा सा उसका वॉल्यूम धीरे कर दीजिए। जी
1: हाँ, तो आप हमें बताइए आप किसका किस्सा सुना रहे थे।
2: हमारे दोस्त क्या मैडम,
1: अच्छा ठीक है, आपने ये जो किस्सा सुनाया है ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन अगली बार के लिए आप फिर से हमसे जुड़िएगा, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हमारे इस ट्रैक की ओर।

0: इसी के साथ आयुषी चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर और करते हैं उनसे बातचीत। हेलो
1: हेलो
0: जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सर अब्दुल अमित छिपा है जी।
0: जी, अब्दुल जी, तो आपने आज का हमारा जो चर्चा का विषय तो सुना ही होगा।
1: जी सर, चर्चा के वैसे आपका बहुत ही अच्छा है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: बारिश बारिश का मौसम, मजे आते हैं, मजे लेने चाहिए बारिश के, खाना पीना सब कुछ।
0: बिल्कुल
1: मगर
0: सही
1: इसके
0: बात है।
1: सर इसके साथ सर सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी जी
1: बिल्कुल सेफ ड्राइव करें, गीली सड़कें होती है,
0: बिल्कुल
1: उसको भी
0: सही कहा,
1: नुकसान पहुंच सकता है, दूसरों को पहुंचा सकते हैं, और पानी से दूर रहें। जी
0: बिल्कुल।
1: पानी के साथ
0: बारिश
1: साथ
0: का,
1: जो बिजली के कुछ खंभे होते हैं उनसे भी हमें बिजली के
0: दूरी
1: खंभे
0: बनानी
1: वगैरह
0: चाहिए।
1: अक्सर सुनने में आता है, ये बच्चा डूब गया, ये फलाना हो गया, ये हो गया।
0: जी
1: इन
0: जी
1: चीजों से थोड़ी सावधानी बरते सर, हमारा परिवार हमारा वेट कर रहा है, हम घूमे फिरे, कोई
0: जी
1: दिक्कत वाली बात नहीं, मगर सावधानी जरूर बरते।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के मार्गदर्शन में जो है वो बारिश को भी एंजॉय करे ताकि उनको जो है वो कोई नुकसान भी ना पहुंचे।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: सर आपने तो बहुत अच्छी बात बताई है। हम सभी बातें कर रहे थे लेकिन उसमें जो सबसे ज़रूरी बात थी वो हमें आपने आके बता दी। तो सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और हमें ये बात बताने के लिए बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी भी ध्यान दें कि किस तरह बिल्कुल
1: बारिश में बारिश को इंजॉय करने के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें सावधानी बरतनी चाहिए।

0: तो विकास इसी के बीच लगता है हमारे जो अगले श्रोता है वो हमसे जुड़ चुके हैं।
1: बिल्कुल।
0: हाँ तो देखते हैं कौन है इस बार। नमस्ते।
2: हेलो,
0: हाँ नमस्ते सर, आपका युवाणी कार्यक्रम
2: सर
0: में बहुत बहुत
2: नमस्कार।
0: स्वागत है।
1: जी, नमस्कार
2: गांव त्यूरी से मोहम्मद साकिर बेलिम बोल रहा हूँ जी।
1: जी। मोहम्मद जी, तो जैसा कि आपने हमारा आज का सवाल सुना ही है, तो आपके साथ कोई है ऐसी मेमोरी बारिश से जुड़ी हुई जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हो?
2: बिल्कुल सर, बहुत पुरानी याद आ गई सर, 1992
1: बिल्कुल
2: की।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बताइए फिर वो
2: मैं
1: कौन
2: उस
1: सी
2: टाइम
1: याद है
2: छोटा था और
1: जी।
2: जीत का कुमार था,
1: जी
2: और उस टाइम क्या बारिश बहुत ज्यादा हुई थी
1: जी
2: हमारे
1: जी
2: त्यूरी में।
1: जी जी
2: तो हम बच्चे थे, खेलने खेलने के चक्कर में सर एक घर के आगे 100 फीट खोदा हुआ था गटर, मेरे को पता नहीं
1: जी
2: था।
1: जी जी
2: तो मेरे एक खाला का लड़का था छोटा,
1: जी जी
2: सर नहाने के लिए सब चले गए थे, लेकिन कोई इधर भाग गया कोई इधर भाग गया, वो मेरा छोटा भाई उस गड्ढे में डूब गया और उसका इंतकाल भी हो गया सर। मैं
1: ये
2: इसी
1: तो
2: लिए कहता हूँ सर बच्चों को, अभी तो बहुत समझ आ गई बच्चों को भी, लेकिन थोड़ा
1: बिल्कुल
2: बहुत पानी से दूर रहना चाहिए अच्छा रहता है, और लाइट के खंभे से दूर रहना चाहिए, बारिश में आनंद लेना चाहिए, दूर रहकर जो
1: जी,
2: आसे आसे बच सकते अपन।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तो बहुत ही दुखद खबर है कि एक इस चीज़ से जुड़ी हुई जो भी आपकी याद है वो हमेशा आपके साथ में रहेगी कहीं ना कहीं।
2: बिल्कुल सर, याद आती है सर, क्या क्या और छोटा दो एक एक खुशी भी थी जब घर घर घूमकर हम गांव इकट्ठा कर और गुगरी पकाते थे सर स्कूल
1: जी जी
2: के अंदर,
1: जी जी
2: सब
1: बिल्कुल,
2: बच्चे इकट्ठे होकर, बच्चे बच्चे छोटे छोटे बिल्कुल
1: वाह क्या बात
2: सात
1: है ये।
2: साल 8 साल बच्चे थे उस टाइम, मेरे को याद है जी, गुगरी पकाते थे हम एक बाड़े के अंदर और सब खाते थे एक साथ मिलकर, तो बहुत अच्छी खुशी होती थी उस टाइम।
1: बिल्कुल सही कहा
2: अब तो
1: आपने
2: वो
1: कि
2: माहौल भी नहीं रहा सर कोई खाने का, वो गुगरी वगैरह बनाने का। तो
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे, अगर मैं बात करूँ मेरे बचपन की, तो हमारे स्कूल टाइम में भी जो है वो आपने जो बताया कि गुगरी वगैरह ये बनती थी बारिश के मौसम में स्पेशली, और इसको खाने का जो
2: हाँ जी
1: मज़ा था वो
2: बारिश
1: अपना
2: के
1: अलग ही
2: लिए जी
1: था।
2: बिल्कुल, उस टाइम अंदाज अलग ही था, लेकिन अब तो बारिश होने भी है, अल्लाह से दुआ करें। आज भी आज सुबह जाकर इकट्ठा हुआ ईदगाह में जाकर,
1: बिल्कुल
2: हम दुआ
1: बिल्कुल
2: की अल्लाह से बारिश जल्द से जल्द करे। हमारे किसान भाई बहुत चिंता में अभी की बारिश नहीं हो रही है, मूंगफली की वो ही चल रही है, तो सब खुशहाली से रहेंगे तो अमन शांति से रहेंगे, खाना पीना भी अच्छा होगा, अपन भी रहन सहन अच्छी होगी सर।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी ये आशा करते हैं कि जो ये बारिश का इंतज़ार जो आप लोग कर रहे हैं वो आपका जल्द ही ख़त्म हो। और मोहम्मद जी,
2: क्यों
1: इसी
2: जी,
1: के साथ
2: हमारे यहाँ
1: हमारे साथ
2: किसान
1: जुड़ने
2: भी
1: के
2: है
1: लिए
2: सब।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो विकास

0: तो जैसा कि आज का जो हमारा विषय था आयुषी, काफ़ी
1: हम्म,
0: लोगों से जो हमारी बात हुई इस पे, और ऐसा सुनने को हमें मिला है कि लोग जो है वो बारिश का मौसम बेसब्री से जो है इसका इंतज़ार भी करते हैं, खूब सारे मोमेंट्स भी बनाते हैं, काफ़ी सारी ऐसी मेमोरीज होती है, किसी के साथ अच्छी होती है तो किसी के साथ बुरी मेमोरी भी होती है जो लाइफ टाइम जो है उनके साथ में चलती।
1: हाँ, लेकिन इन सब में एक चीज़ पता है, हमेशा परमानेंट होती है कि ये सब जो है ये यही चाहते हैं कि जब भी बारिश हो, गाने तो हम सुने ही सुने, है ना। अब
0: बिल्कुल
1: अगर आप
0: बिल्कुल
1: सैड हो बारिश में तो भी गाने अच्छे ही लगेंगे, आप हैप्पी हो तो भी गाने अच्छे ही लगेंगे, है ना। तो गाने जो
0: बिल्कुल
1: है वो
0: बिल्कुल
1: हमारे दोस्त की तरह हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन आज हमने इतनी सारी बातें सुनी, इतने सारे लोगों ने,
0: बिल्कुल
1: किसी ने हमें ये बताया कि बारिश में इंजॉय करना ज़रूरी है, तो किसी ने बताया कि बारिश में इंजॉय के साथ साथ सावधानी रखना भी बहुत
0: बिल्कुल
1: ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल लगता है कि अब समय हो चुका है
0: बिल्कुल
1: कि
0: आयुष
1: अब
0: जी
1: हम यहाँ से इजाज़त लें हमारे दोस्तों से,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: हम दो जो रेडियो बडीज़ हैं, दो रेडियो बडीज़ आपके साथ जुड़े थे। मेरा नाम है आयुषी और आज मेरे साथ थे
0: मैं था विकास। तो दोस्तों आप भी जो है वो बारिश का मौसम एंजॉय करें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें। नमस्कार।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है हिंदी और अंग्रेजी समाचार का, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में रिले किया जाएगा। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: I came here because I believe that Seychelles occupies a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here,

0: after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशेल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है. श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशेल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है.
0: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया. सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया. प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया. गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है. श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है. आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है. श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी. अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं. ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई. भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है. अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया. ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है. भारत ने आयरलैंड के साथ दो T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा. ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today stated that climate action must be guided by fairness, responsibility and equity. In his special address to the National Assembly of Seychelles, Prime Minister said, "This is the essence of climate justice." He emphasized that Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive and where international institutions reflect contemporary realities.
0: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively and fairly.
2: Mr. Modi said Seychelles hockey

कल सुबह की शुरुआत होगी सकारात्मकता से भरे कार्यक्रम नमस्कार के साथ, जो 8:30 पर प्रसारित होगा। इसमें रहेंगी दिन भर की उपयोगी जानकारियां, मौसम का हाल और समाचारों की झलक।

दोपहर के समय 1:05 पर प्रसारित होगा कृषि जगत, जिसमें कल चर्चा की जाएगी खेत बचाओ अभियान में आईसीटी की भूमिका। इसके बाद 1:15 पर सुनिएगा राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा सुंदर लोक कार्यक्रम गणगौर। दोपहर 2:30 वक्त रहेगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम का, जो कि विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए बेहद उपयोगी है।

फिल्म संगीत कल सुबह सुने जा सकेंगे 6:45, 11:00, 8:00 और 9:30 पर, जबकि सुगम संगीत का साथ मिलेगा सुबह 10:30, दोपहर 12:30 और रात्रि 9:15 पर। तो ये थे आकाशवाणी जोधपुर सन सिटी चैनल के कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है देश की मिट्टी से जुड़े कार्यक्रम देशगान का।

0: देशगान आपने सुना, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। वक्त है संस्कृत समाचार का, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: वार्ता है संप्रति वार्ता है श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यत् स्वदेशी प्रतिरक्षोत्पादने सविशेषं बलं विधाय भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य नागरिकाणां प्रति कार्तज्ञभावं ज्ञापितम्, यतोहि जनैः स्वर्णक्रयणं विदेशयात्रा च किञ्चित् कालं यावत् स्थगिता। सेशल्स देशस्य विक्टोरिया नगरे आयोजितायाः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयवार्तायाः अनन्तरं भारत सेशल्स देशयोर्मध्ये

0: स्वास्थ्यं वित्तं समेत्य अन्तरिक्षादि विविध विषयेषु महत्वपूर्ण सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षराणि अभवन्। प्रशासनेन भारतीय नागरिकाः संचेतिताः यत् ते सर्वेषाम् आवश्यकानां यात्रापत्राणां पूर्तिकया विना कैलाश मानसरोवर यात्रां न आरभेरन्। पश्चिम एशिया देशे सुरक्षा स्थितिः तीव्र गत्या अपक्षीयते, यत्र संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानः उभावपि परस्परं नूतनानि सैन्य आक्रमणानि अकुरुताम्। अपि च आईसीसी महिला टी ट्वेंटी विश्व कप स्पर्धा मालिकायां भारतीय महिला दलम् अद्य लंडन नगरे ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्ट। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सविशेषं प्रत्यपादयत् यत् भारतेन जून मासे वैमानिकी क्षेत्रे एका महती सफलता अर्जिता, यत्र स्वदेश निर्मितस्य मेक इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमानस्य प्रथमं परीक्षण उड्डयनं सफलतापूर्वकं सुसम्पन्नम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा इयं सूचना प्रख्यापिता यत् सम्प्रति एतादृशानि चत्वारिंशत् विमानानि भारतदेशे एव विनिर्मीयन्ते।
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु बीटेक पाठ्यक्रमस्य शुभारम्भं विदधाति।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षं न्यगादीत् यत् अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्मिन् हि विश्वे प्रसरति। श्री मोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः आत्मनिर्भरतायाः च क्षेत्रे महती सफलता समर्जिता। सः कोलकाता नगरे आयोजितम् एकं नौसेना संबंधी कार्यक्रमं संबोधितवान्, यत्र INS दुनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायाः क्षेत्रे समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: मोदिना अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः। तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन 2,100 स्वर्ण पदकैः सह आहत्य 14,100 पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार

0: पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: अनेन सहैव श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् आगामी गणेशोत्सवाय गणपति बप्पा भगवतः प्रतिमा अनिवार्यरूपेण अस्यैव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत्। सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पीभिः विनिर्मिता स्यात्। तेन मूर्तिनिर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मयमूर्तीणां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः। स्वीय सम्बोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जलसंरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते। श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितं यत् जलसंरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिः पैट्रिक हर्मनी च अद्य अपराह्णे विक्टोरिया नगरे द्विपक्षीय वार्ताम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगस्य सम्पूर्णक्षेत्राणां समीक्षां कृतवन्तौ। सहैव पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च स्वस्वमनोगतं विनिमयी कृतवन्तौ। तस्मात् पूर्वं सेशेल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मान गार्ड्स ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्त। संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् अयं गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मान मम कृते अथ भारतस्य नागरिकाणां कृते परम गौरवस्य विषयो वर्तते। प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् द्वयोर देशयोर दूरत्वं न्यूनीकर्तुं डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रभावपूर्णं माध्यमं वर्तते। तेन एतदर्थं प्रसन्नता प्रदर्शिता यत् अद्य सेशेल्स देशे भारतस्य यूपीआई तन्त्रस्य प्रवर्तनाय एकस्मिन् सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं क्रियमाणमस्ति। विदेशमन्त्रालयेन भारतीय नागरिकाः परामृष्टाः यत् सम्पूर्णयात्रायाः कृते आवश्यकानि सर्वाणि यात्रापत्राणि विना कैलाश मान सरोवर यात्रा न क्रियन्ताम्। केचन भारतीय तीर्थयात्रिणः नेपाले अवरुद्धाः अभवन्, सहैव साहाय्यार्थं प्रार्थितवन्तः। एतां घटनामुद्दिश्य विदेशमन्त्रालयेन एषः परामर्शः प्रख्यापितः। पश्चिमेशिया क्षेत्रे सुरक्षा स्थितिः पुनरपि गभीरा जाता। अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये विद्यमानः युद्धविरामः खण्डितः। गतकतिपय होरासु च उभय पक्षाभ्यां परस्परं नूतनानि सैन्याक्रमणानि कृतानि। तेहरानेन वाणिज्यिक तैलवाहकपोतस्य उपरि ड्रोणाक्रमणं विहितमिति आरोपं विधाय अमेरिकया होर्मुज जलसन्धेः समीपे स्थितेषु दशसु ईरानी सैन्यस्थानकेषु वायुप्रहाराः कृताः। अद्य महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वकप क्रिकेट स्पर्धायाः समूह ए इत्यस्य चरम स्पर्धायां भारतम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट। एषा स्पर्धा लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट क्रीडांगणे भविष्यति। स्पर्धा भारतीय समयानुगुणं सायं 7:30 आरभ्यते। इति वार्ताः।
2: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार का, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
3: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना के 18 साल पूरे हुए। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। और प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स

0: पोलियो अभियान के पहले दिन आज 59,000 से अधिक बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि आज देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि योग दिवस को दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने पिछले दिनों पश्चिम एशिया में बने युद्ध के हालात के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति बीमा का उल्लेख करते हुए योजनाओं की प्रगति और इनके लाभों की जानकारी दूसरे लोगों तक साझा करने की अपील की। श्री मोदी ने AI टूल्स को देश की संस्कृति और भारतीय ज्ञान तथा भाषाओं के संरक्षण के काम में लिए जाने पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के कई भागों में गांवों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने आगामी महीनों में गणेश उत्सव की तैयारियों में लगे मूर्तिकारों से मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाने और खरीददारों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां नहीं खरीदने की अपील भी की। मन की बात कार्यक्रम सुनने को लेकर प्रदेश भर में लोगों में खासा उत्साह रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अपने निवास पर सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साथ ये कार्यक्रम सुना। वहीं पाली, बाड़मेर और जैसलमेर सहित विभिन्न स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को और मजबूत करने और गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से सुझाव और नए विचार आमंत्रित किए। इस अवसर पर श्री चौहान ने ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल जोखिम आधारित और अनुपालन लेखा परीक्षाओं सहित आंतरिक लेखा परीक्षाओं के संपूर्ण प्रबंधन के लिए एकीकृत डिजिटल मंच है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा के पचपदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज रिफाइनरी

0: का अवलोकन किया। श्री शर्मा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जोधपुर में एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल का मुआयना भी किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी आगामी 4 जुलाई को इस नए टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के तहत बालोतरा जिले में 7 दिन का विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन आज प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और विधायक अरुण चौधरी सहित जनप्रतिनिधियों तथा विभागीय अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरिस्का बाघ परियोजना आज दुनिया की सफल बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रमों में गिनी जाती है। वर्तमान में यहां बाघों की संख्या बढ़कर 56 हो चुकी है। आज अलवर के सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापन अवसर और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि ये कार्यशाला ऐसे समय आयोजित हुई है जब सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना ने 18 साल पूरे कर लिए हैं। श्री यादव ने कहा कि बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। कार्यशाला में वन मंत्री संजय शर्मा, देशभर के बाघ संरक्षण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, वन अधिकारी और विभिन्न राज्यों के प्रधान वन्य जीव प्रतिपालक उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लक्ष्य सरकारी प्रयासों के साथ जन भागीदारी से संभव है। श्री बिरला आज कोटा के दादाबाड़ी क्षेत्र में रेंडल पार्क में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक अपने घर, गली, पार्क और मोहल्ले को स्वच्छ रखने के साथ पौधरोपण और उनके संरक्षण का संकल्प ले तो कोटा सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में अपनी अलग पहचान बना सकता है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण के अनुकूल जीवनचर्या अपनाने और पौधरोपण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।
1: पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली लोगों की हो और इसको हम जन आंदोलन बनाए। मुझे आशा है कि कोटा बूंदी की जनता अपनी दिनचर्या के अंदर भी पर्यावरण के अनुकूल दिनचर्या करेगी और सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाकर उस पेड़ को संरक्षण भी करेंगे, उसको बड़ा भी करेंगे और अपने शहर, गली, गांव को स्वच्छ रखने के लिए संकल्प भी करेंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष ने रेंडल पार्क में उपलब्ध खेल सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोटा में आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए युवाओं में जागरूकता बढ़ रही है। इसी कड़ी में पाली जिले के सुमेरपुर में मॉनसून के आगमन से पहले युवाओं ने बड़ी संख्या में सीड बॉल्स तैयार की है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: इन सीड बॉल्स को मानसून के दौरान अरावली की पहाड़ियों और जंगलों में डाला जाएगा। बारिश के बाद सीड पौधों का रूप लेंगे। सीड बॉल्स में अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली देशी प्रजातियों जामुन, अमलातस, कुमटा, खेर, देसी बबुल, गुंदा और जाल के बीजों का उपयोग किया गया है। साथ ही उपजाऊ मिट्टी और देसी खाद के मिश्रण का उपयोग किया गया है जिससे बीजों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा। युवाओं की यह पहल जंगलों के विस्तार के साथ साथ पक्षियों, वन्य जीवियों और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: प्रदेश सहित देशभर में आज से 3 दिन के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई जा रही है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरूआत की। प्रदेश भर में 59,000 से अधिक बूथों पर पहले दिन ये दवा पिलाई गई। अगले 2 दिन अब स्वास्थ्यकर्मी, आज पोलियो की दवा से वंचित रहे बच्चों को घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। गौरतलब है कि भारत में साल 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी।

0: बीते 15 वर्षों में देशभर में कोई भी पोलियो का नया केस सामने नहीं आया है। 27 मार्च 2014 को भारत को पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियों में फिर से कुछ कमी आई है। इस बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। उधर चूरू में दिनभर की तेज गर्मी के बाद आज शाम को बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं सिरोही और आबूराज में दिनभर बादल छाए रहे। मौसम केन्द्र जयपुर ने जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश के कुछ स्थानों पर प्री मॉनसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना के 18 साल पूरे हुए। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। और प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन आज 59,000 से अधिक बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले भर में आज पल्स पोलियो राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। 3 दिन के इस अभियान में सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर भी ट्रांजिट बूथ स्थापित किए गए। आज दवा पीने से छूटे बच्चों को अगले 2 दिन घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले भर में उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य आयोजन मान क्लब फुटबॉल मैदान में रखा गया, जहां प्रभारी सचिव पीसी किशन और जिला कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन ने योगाभ्यास किया। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित योगाभ्यास तथा ध्यान शिविर में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं के साथ स्टेट बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों ने योगासन किए। इसी तरह केंद्रीय कारागार श्यालावास में भी योगाभ्यास तथा ध्यान सत्र रखा गया, जिसमें बंदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलों की स्वास्थ्य सेवाओं का 3 दिन तक मुख्यालय के प्रभारियों के दलों द्वारा सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान दवाइयों, उपकरणों की उपलब्धता और प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया गया। नशा मुक्ति दिवस पर जिले में जागरूकता कार्यक्रम रखे गए। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुनर्वास के जरिए नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। जिले भर में इन दिनों शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए लोगों को विभिन्न योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। शिविरों को लेकर आमजन में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इन शिविरों में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी निगरानी और निरीक्षण कर रहे हैं। रामगढ़ पचवारा नगरपालिका में आयोजित शिविर में बरसों से मुख्य बाजार की समस्या का हाथों हाथ समाधान होने से लोगों ने राहत की सांस ली। इसी तरह बांदीकुई, बसवा, सिकराय, महवा, मंडावर और लालसोट ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में भी शिविर आयोजित किए गए। कृषि विज्ञान केंद्र दौसा में पिछले दिनों जैविक खाद से समृद्ध मृदा, आय वृद्धि और पर्यावरण संतुलन विषय पर किसान गोष्ठी रखी गई। संगोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को संरक्षित और उर्वरक खेती की जानकारी प्रदान की। किसानों को मृदा स्वास्थ्य सुधार, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। जिले में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की पिछले दिनों लॉटरी निकाली गई। योजना के तहत दौसा जिले के 1300 वरिष्ठ नागरिक विभिन्न तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा करेंगे। इनमें से 1150 से अधिक को रेल और 142 को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण कर सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्मिकों से किसी भी आपात स्थिति में हर समय तैयार रहने

करने को कहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति के चेक वितरित किए गए। रीनीट यूजी परीक्षा 21 जून को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 4000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को सुचारू और सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए। जिला कलेक्टर ने नीट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण

0: नीट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में मुहर्रम पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पारंपरिक आयोजन हुए। कई जगह जुलूस की शक्ल में ताजिए निकाले गए। शाम को मातमी माहौल के बीच ताजियों को करबला में सुपुर्द खाक किया गया। निर्जला एकादशी पर जिला मुख्यालय सहित जगह जगह धार्मिक गतिविधियां देखी गईं। दान पुण्य के आयोजन हुए। लोगों ने पानी, शरबत और पेय पदार्थों के साथ भंडारे लगाकर पुण्य कमाया। ज्येष्ठ महीने में जिले में मौसम ने कई रंग दिखाए। कभी बरसात तो कभी तेज गर्मी ने जिलेवासियों को प्रभावित किया। इस दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों से कई जगह नुकसान भी देखा गया। इसी के साथ दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश है सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। केंद्रीय गांवाई विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 रा नजरिया ने साकार करण माए गांवारी भूमिका ने महत्व बताया है। सरिस्का माए भाग पुनर्स्थापना रा 18 साल पूरा विया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव कयो बाघ संरक्षण माए राज्य रे अनुभव ने साझा करणु भविष्य री संरक्षण रणनीतिया ने मजबूत करेला। और प्रदेश माए 3 दिन रा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रे पहले दिन आज 59,032 बूथा माथे 5 साल तयरा टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जी। समाचार रे साथे मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो है कि स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत समुद्रों लेर आकाश ताई बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। आज आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी कयो के जून महीना में स्वदेशी C-295 विमान री पहली उड़ान रे साथ ही भारत विमानन हल्का में एक मोटी कामयाबी हासिल करी है। वर्णा कयो के आज देश में रोजगार रा मौका बढ़ रिया है और आत्मनिर्भर भारत रो संकल्प मजबूत वे रियो है।
2: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस री चर्चा करता कहो कि योग दिवस दुनिया भर में मनाई जो ई बार ओ आयोजन 2,532 ठोड़ा माथे वियो। भारत में करोड़ों लोग योग दिवस में भागीदारी करी। श्री मोदी लाडला दिना आथूणी एशिया में बनिया युद्ध रा हालात रे दौरान वारी अर्ज माथे देशवासियों रा समर्थन और सहयोग सारू आभारी जतायो।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: श्री मोदी हमारी सरकार का न्यू शुरू करी जी नवी सामाजिक हिफाजती योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और PM जीवन ज्योति बीमा योजना रो जिक्र करता योजना री प्रगति और इनरा फायदा री जानकारी दूजा लोगों तक साझा करने री अर्ज करी। श्री मोदी AI टूल्स ने देश री संस्कृति और भारतीय ज्ञान और भाषावां रा संरक्षण रा काम में लिया जावण माथे न्यारी नारी शैक्षणिक संस्थावां ने शुभकामनावां दी। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान रे तहत देश रा कई हल्का माए गांवां ने साफ सुथरा बनाया राखण सारू करी जा रही कोशिशां रो जिक्र करियो। वणा आवता महीना माए गणेश उत्सव री तैयारियां माए लाग्या मूर्तिकारों माटी बनी मूर्तियां बनावण और खरीददारों प्लास्टरों पेरिसों बनी मूर्तियां नी खरीदण री अरज करी। मन की बात कार्यक्रम सुनण ने लेर प्रदेश माए

0: वापी लाई जी। आफ्ता दो दिन अबे स्वास्थ्य कर्मी पोलियो री दवा पीवणु बछोड़ा टावरा ने घर घर जा आ दवा पिलावेला। ध्यान जोग है के भारत माए साल 1995 माए पल्स पोलियो अभियान री शुरुआत करी जी ही। लाडला 15 साल माए देश भर माए कोई पोलियो रो नुओ केस सामने नहीं आयो है। 27 मार्च 2014 ने भारत ने पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पानो मिल चुक्यो है। प्रदेश माए पर्यावरण संरक्षण और हरियाली ने बधावो देवन सारू नौजवाना माए जाग बदरी है। ई कड़ी माए पाली जिला सुमेरपुर माए मानसून आवणु पहला नौजवान घनी तादाद माए सीड बॉल्स तैयार कर रिया है। और ब्यूरो मारा खबर नवीसू।
1: इन सीड बॉल्स को मानसून के दौरान अरावली की पहाड़ियों और जंगलों में डाला जाएगा। बारिश के बाद सीड पौधों का रूप लेंगे। सीड बॉल्स में अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली देशी प्रजातियों जामुन, अमलातस, उमटा, खेर, देसी बबुल, गुंदा और जाल के बीजों का उपयोग किया गया है। साथ ही उपजाऊ मिट्टी और देसी खाद के मिश्रण का उपयोग किया गया है, जिससे बीजों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा। युवाओं की यह पहल जंगलों के विस्तार के साथ साथ पक्षियों, वन्य जीवियों और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: प्रदेश माए प्री मानसून गतिविधियां माए फिर कुछ कमी आई है। इस बीच तापमान माए उतार चढ़ाव रो सिलसिलो चाले। राजधानी जयपुर समेत कई जिला माए करड़ी गर्मी और उमसू जिंदगी माथे असर पड़ियो है। उठीने चूरू माए आखे दिन करड़ी गर्मी रे पछे आ सिंजा बिरखावी जिणु लोगों ने थोड़ो आराम मिलियो। वठे सिरोई और आबूराज माए आखे दिन बादल छाई जा रिया। मौसम केंद्र जयपुर जुलाई रा पहला हफ्ता माए प्रदेश रा कुछ थोड़ा प्री मानसूनरी गतिविधियां माए बढ़ोतरी री घनी आस जताई है। पहली रा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव री जयंती माथे राष्ट्र आज वाने श्रद्धांजलि अर्पण करे। नरसिम्हा राव 90 रा दशक माए दुनिया माई संकट और मंदिरा दौर माए भारत ने हिफाजती बारे राखण सारू कुशल प्रशासक रा तौर माथे याद करिया जावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया रा संदेश माए कहो है कि देश रा एक महताऊ दौर माए श्री राव भारत री प्रगति माए अमूल योगदान दियो। अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। केंद्रीय गांवाई विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 रा निजरिया ने साकार करण माए गांवारी भूमिका ने महताऊ बताया है। सरिस्का माए बाघ पुनर्स्थापना रा 18 साल पूरा विया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव कहो बाघ संरक्षण माए राज्यों रा अनुभव ने साझा करणु भविष्य री संरक्षण रणनीतियां ने मजबूत करेला। और प्रदेश माए 3 दिन रा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रे पहले दिन आज 59,032 बूथा माथे 5 साल तय रा टावरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जी। इनके साथ ही प्रादेशिक समाचार और बुलेटिन पूरो यो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करो जायला। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। अब आप सुनिए आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे मैच का सीधा प्रसारण। ये प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जा रहा है।
3: गेंद अच्छे से आएगा और रन ज्यादा यहां पर बनने की संभावना। और मेरे साथ हैं अश्विन। नमस्कार अश्विन।
4: थैंक यू भूपेंद्र जी। इट वाज एज यू मेंशन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव। दिस इज स्लेटेड टू बी अ काइंड ऑफ अ क्वार्टर फाइनल मैच वेयर इंडिया इट्स अ डू अ डाई गेम फॉर इंडिया। दे नीड टू विन दिस मैच इफ दे हैव टू प्रोग्रेस फ्रॉम हियर टू प्ले इन द further in the journey of the World Cup. So this is being a very critical match for India, and as you mentioned, there's only one change for India, where Kranti Gaur comes in place of Nandini Sharma, and that's a good move because this match is going to happen at Lords, which will prefer the pace and the variable bounce, which is very important. So I feel that's a great change for Indian team that has happened in this match, and so we are all looking in very exciting times for Indian cricket, and they are all set to prove and play the kind of cricket that Indian fans are looking for, Birendra Ji.
3: और आरंभक बल्लेबाज के रूप में

0: शेफाली वर्मा और स्मृति इस समय क्रीज पर हैं और मुकाबला शुरू होने को है। शेफाली वर्मा जो कि इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी फॉर्म में है, नेदरलैंड्स के विरुद्ध शानदार 55 रन की पारी उन्होंने खेली थी, विकेटों के चारों तरफ स्ट्रोक लगाए थे, 38 गेंदों में ये 55 रन उन्होंने बनाए थे और साउथ अफ्रीका के विरुद्ध भी 31 रन की शानदार पारी थी और बांग्लादेश के विरुद्ध भी अर्धशतक बनाया था। स्मृति मंधाना इस समय स्ट्राइक पर और लूसी हैमिल्टन की ये पहली गेंद, बाएं हाथ की तेज गति की गेंदबाज लूसी हैमिल्टन जिन्होंने स्टंप्स के बीचों बीच गुड लेंथ पर यह गेंद डाली थी जिसे सीधे बल्ले से वापस गेंदबाज की तरफ खेला था स्मृति मंधाना ने। लूसी हैमिल्टन एक बार फिर से ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव किया मगर सीधा मिड ऑफ पर खड़ी फील्डर के पास, रन बनने की कोई संभावना नहीं। आरंभक जो बल्लेबाज हैं भारत के वो काफी महत्वपूर्ण हैं और पारी में अगर मजबूती बनानी है तो आरंभक जोड़ी से साझेदारी दरकार होगी भारतीय टीम को और इस बात को बखूबी जानती हैं ये दोनों बल्लेबाज शेफाली वर्मा और स्मृति। स्मृति सामना करने के लिए तैयार। इस बार ये गेंद लेग स्टंप के बाहर फ्लिक कर दिया गया डीप फाइन लेग क्षेत्र पर, रन भागने का मौका स्मृति के पास, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो किया जाए एक रन भागने का मौका, भारत का खाता खोला, स्मृति एक भारत एक बिना किसी विकेट पर। लूसी हैमिल्टन जिनकी गेंदों में थोड़ा उछाल थोड़ी मूवमेंट देखने को मिली है, इन तीनों गेंदों में उन्होंने इन स्विंग डाली है स्मृति मंधाना को और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इन गेंदों को खेला है स्मृति ने, जो ये बताता है कि पूरी तरह से आत्मविश्वास में फॉर्म में अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत रहेगी भारत को यहां पर। तीन गेंदों में एक रन, लूसी हैमिल्टन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी करती है, शेफाली वर्मा अब सामना करेंगी। ओवर द विकेट लूसी हैमिल्टन की ये गेंद, ओवर पिच कवर ड्राइव किया मगर स्ट्रोक में ज्यादा जान नहीं, सीधी फील्डर के हाथ में गेंद जिसकी वजह से रन बनने की कोई संभावना नहीं। शेफाली वर्मा ने ये पहली गेंद बल्ले के बीचों बीच लेते हुए खेली। शेफाली वर्मा का बल्ला बुलंद है इस वर्ल्ड कप में, अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने, स्पिन गेंदबाजी के विरुद्ध काफी आत्मविश्वास से खेली है वो, विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक खेले हैं और इस वर्ल्ड कप में उनकी बल्लेबाजी में ये देखा गया कि ज्यादा क्रॉस बैट से नहीं खेल रही हैं, विशेष तौर पर स्पिन गेंदबाजी के सामने वी शेप में स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया है। लूसी की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे कट किया बैकफुट पॉइंट क्षेत्र पर, जब तक अपनी बाई तरफ भाग कर गेंद को फील्ड करेंगी डीप बैकवर्ड पॉइंट से फील्डर, एक रन भागने का मौका शेफाली वर्मा के पास, पांच गेंदों में दो रन भारत के इस पहले ओवर में। लॉर्ड्स के इस खूबसूरत मैदान में भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह मुकाबला, विकेट अब तक बिल्कुल सटीक सपाट, बल्ले पर अच्छी तरह से गेंद आती हुई। लूसी की अगली गेंद इस ओवर की आखिरी, सीधी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ड्राइव करना चाहती थी, बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई गेंद स्क्वायर लेग क्षेत्र पर गई, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए भागकर एक रन पूरा किया, एक रन के साथ भारत का स्कोर 3 इस पहले ओवर की समाप्ति के बाद।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: गरीब जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: A cautious start by India here at the crucial match. India after first over, they are 3 without loss. So Smriti Mandhana and Shefali Verma doing what they're supposed to. They are not taking anything lightly. They are positioning, waiting for the ball, and that's what they're going to do because this match is going to be a crucial and very crucial for India's point of view, because these two players need to put in a partnership, put runs on board. They have won the toss. They need to put runs on board and to put pressure in Australia's mighty powerful Australians. They need to do something different. This time Kim Garth is now bowling from further end from us, and Smriti is going to take the strike. A good line delivery, no movement there of footwork, plays with a soft hand back to the bowler and no damage done. So 1.1 over, 3 runs without loss. Shefali Verma and Smriti Mandhana at crease.

0: And as I mentioned, this is going to be a very, very important match for India if they are to progress further in the World Cup. And they need to do something which builds a platform. And then later on, when Jemima Rodrigues, Harmanpreet and Richa Ghosh comes in, that they give a platform to go. Lex De La Rey on the middle stump, slashes it down to boundary line, going in the area of deep mid-wicket for four runs. What a great shot this has been.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: She actually got the ball quite early. There was a great movement, places herself in the middle and middles that ball towards the square leg boundary for four. A lovely shot coming on from Smriti. That shows the confidence that she has. She's middling the ball really well and very calm-headed. Gets the first boundary for India. India now seven without loss. 1.2 overs. Here's Kim Garth for the third delivery. Goes farther from the umpire. Again, a short length delivery. Drives in the same direction. And the same result again, a very, very similar shot, this one, and gets boundary for her.
2: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इपको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौद वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इपको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
0: Batsman are still intact in her crease. It is Smriti Mandhana of 10 runs in 8 balls. Shefali at the other end haven't faced much balls today. She is just faced 2 balls and scored a single in that. 1.4 overs gone. 11 without loss India. It needs to be seen that what intent they need to show. Again, went on the back foot, drives it nicely, but there's a good fielding there at the point region. And with that, nicely collected throw back to the wicketkeeper. And there's a kind of clapping between the Australians. They are boosting each other's confidence here. 11 for no loss. Second over in progress. So India starting cautious. There's nothing they are going to give away in there. Both the shots that they have played today, it's all a long the ground that we could see, and that's what the coach Amol Mazumdar wanted from these two, to spend some time in the middle, see the ball nicely, and then they change shift the gears. This time on the leg side, there was a bad delivery, I would say. Glance it down, she missed an opportunity to drive it, and that ends the over number two. India 11 without loss.
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: लॉर्ड्स के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। आईसीसी टी20 मुकाबलों की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 53 मैचेस खेले हैं, 43 जीते हैं, 9 हारे हैं और एक मैच टाई रहा है। इस बीच लूसी हैमिल्टन अपने नए ओवर की शुरुआत करते हुए पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे ड्राइव स्केयर ड्राइव किया शेफाली वर्मा ने, डीप कवर से जब तक गेंद को फील्ड किया जाए भागकर एक रन पूरा किया। भारत का स्कोर 2.1 ओवर के बाद 12 बिना किसी विकेट पर। और आईसीसी महिला विश्व कप टी20 मुकाबलों में अगर भारत की भागीदारी की अगर बात की जाए तो भारत ने अब तक 44 मैचेस खेले हैं, 25 जीते हैं, 19 हारे हैं। धन्यवाद जतिन सूद इस जानकारी के लिए। इस बीच लूसी हैमिल्टन की ये गेंद गुड लेंथ स्टंप के बीचों बीच, और स्मृति ने ये देखा कि हैमिल्टन की गेंदों में ज्यादा गति नहीं है, तो इस बार वो कदमों का इस्तेमाल करके इस गेंद को ड्राइव करना चाहती थी, मगर गेंद से दूर रही, जिसकी वजह से हल्का सा धकेला उसे मिडॉन की तरफ, जहां पर फील्डर मौजूद, रन बनने की कोई संभावना नहीं। पिछले ओवर में स्मृति ने अश्विन जो दो स्ट्रोक्स खेले बैकफुट पर जाकर, जिस तरह से ऑन ड्राइव लगाए उन्होंने, क्या टाइमिंग थी उनकी, बड़ी खूबसूरत टाइमिंग के साथ वो स्ट्रोक्स खेले थे। इस बीच इन स्विंग गेंद अंदर की तरफ आती हुई मिडल और लेग स्टंप पर, जिसे सीधे बल्ले से मिडॉन क्षेत्र पर खेला गया बगैर किसी रन के, और कमाल की टाइमिंग से खेल रही हैं। और दोनों बल्लेबाजों की जो अप्रोच है उससे लग रहा है कि उनको मालूम है कि उन्हें लंबा खेलना है, साझेदारी बनानी है और एक अच्छा लक्ष्य देना है ऑस्ट्रेलिया को। 12 भारत बिना किसी विकेट पर 2.1

0: तीन ओवर के बाद। लूसी हैमिल्टन प्रभावशाली गेंदबाजी करती हुई, इस बीच शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया मिड विकेट क्षेत्र पर, फील्डर भाग रही है गेंद के पीछे, डाइव किया मगर रोक नहीं पाई, चार रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: स्मृति को मौका मिला और इस मौके को पूरी तरह से भुनाया उन्होंने, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर जाकर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस गेंद को पुल किया उस क्षेत्र में जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था। स्क्वेयर लेग पर खड़ी फील्डर ने हालांकि कोशिश की गेंद को रोकने के लिए मगर सफल नहीं हो पाई। एक चौका स्मृति और भारत के खाते में, 16 भारत बिना किसी विकेट पर 2.4 ओवर के बाद। इस ओवर में 5 रन आ चुके हैं, 2 गेंदे बाकी। स्मृति सामने है लूसी हैमिल्टन के, गुड लेंथ गेंद जिसमें ज्यादा गति नहीं थी, थोड़ा सा लहराव अंदर की तरफ आती हुई, सीधे बल्ले से इसे सुरक्षात्मक तरीके से खेला गया। किसी तरह का जोखिम नहीं ले रहे हैं अश्विन दोनों बल्लेबाज, वो जानते हैं कि विकेट को सुरक्षित रखना काफी जरूरी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी की जा रही है। अभी तक कोई भी हवाई स्ट्रोक दोनों बल्लेबाजों की तरफ से देखने को नहीं मिला है। इस ओवर की आखिरी गेंद, भारत को यह मुकाबला जीतना ही होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका अपना मुकाबला जीत चुका है। लूसी की यह गेंद गुड लेंथ गेंद, ड्राइव करना चाहती थी, बीच हुई, भाग्यशाली रही कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 16 बिना किसी विकेट पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: जानिए आभा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: So that was a great start from India. Another boundary coming in from Smriti's bat in this over. So 3 boundaries for her in her brief score of 14 runs of 15 deliveries. Shefali Verma hasn't gotten much opportunity as of now. She's just faced 3 deliveries, scored a single. But now this over, she's going to be on strike after Smriti Mandhana was beaten on the last ball of Lucy Hamilton. Matchups we need to see. I was waiting for Ashley Gardner to come, and this time Shefali Verma goes over the bowler's head on the long off region for a beautiful, beautiful boundary. What a boundary this was from Shefali's bat.
1: Ye laga abha ka choka.
5: We were waiting for this. Shefali was itching one to join Smriti Mandhana. She has scored 3 boundaries, and you can see that there's a kind of competition, Birenderji, in between them. This time again, Ashley Gardner, again the tossed up delivery, but played very carefully along the ground. The ball by the time rolls down to long on region, batsmen, both the batters have enough time to cross for a single, and that moves the team score to 21 without loss with 4 boundaries in this. So that's a cautious start, and all boundaries are coming along the ground. So that was a great sign for Indian team that they are not going to go anything in the air unless that ball's demands or invites them to come and launch it over the boundary. So 3.2 overs, 21 without loss. Smriti on 14 or 15 delivery. Shefali on 7. This time Smriti Mandhana again cautious, went on the back foot. There was a good length ball, went back and drives it down to the mid off region. So no damage done. 3.3 overs gone, 21 without loss, 4 boundaries of Indian. And Ashley Gardner's, if you look at matchup, she has actually taken Smriti Mandhana for cleaners. She has actually taken 10 dismissals against her. So there was a good matchup for Ashley Gardner and Smriti, and that makes Smriti more conscious. This time she drives, dances down the wicket, plays on foot, full toss, and enough time to cross for a single. So Shefali on strike, 22 without loss, 3.4 overs gone. This time Shefali again on the rise, picks it up and over the boundary for a sixer.
1: Ye laga abha ka chakka.
5: This was outside the off stump, loose delivery, and Shefali is not going to give away anything on that. And she actually targets the loose delivery, and she was on to the target, launches it over the long off boundary for 6. 1-6 and 1-4 off Ashley Gardner. She is one of the most successful bowler of Australia, and they were actually trying, but Shefali Verma comes on top of the ball and launches it over for a 6. That moves Indian score to 28 with 1-6 and 4 boundaries, and 3.5 over was 28 without loss, again in the air but lands safely on the left hand side of Ashley Gardner, and that brings to end of

0: Ashley Gardner's over. She's given 13 runs in that over. And India score 29 without loss at the end of 4.
1: कमाल की बल्लेबाजी रही है इस ओवर में शफाली वर्मा की. अश्विन, जिस तरह से फ्लाइटेड गेंदों पर उठाकर ऊंचे स्ट्रोक्स खेले हैं शफाली वर्मा ने, पहला मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए और दूसरा तो कमाल का स्ट्रोक था कवर्स के ऊपर से 6 रन के लिए. और इस वर्ल्ड कप में शफाली वर्मा ने स्पिन गेंदबाजी पर जिस तरह से आक्रमण किया है वो दर्शनीय है. बांग्लादेश के विरुद्ध भी जो 53 रन की पारी उन्होंने खेली थी 24 गेंदों में, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था, उसमें भी हमने देखा कि स्पिन गेंदबाजी को वी में उन्होंने स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास किया है. पावर प्ले में जबकि घेरे में ज्यादातर फील्डर्स हैं, घेरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर्स हैं और मिड ऑफ के ऊपर से जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं वो दर्शनीय है, काबिले तारीफ है और बिल्कुल सही है इस मुकाबले में भारत के लिए जिस तरह से एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है भारत को. तो भारत का स्कोर 29 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद. शफाली वर्मा इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं 14 रन पर 7 गेंदों का सामना करने के बाद और स्मृति है 15 पर 17 गेंदों का सामना करने के बाद. नए ओवर की शुरुआत पैरी करती हुई गेंदबाजी में परिवर्तन, लूसी हैमिल्टन की जगह पर पैरी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. रनों की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती हुई, आत्मविश्वास में आते हुए ये दोनों बल्लेबाज और प्रहार करते हुए आक्रमण करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के ऊपर, और ये जरूरी है और एक साझेदारी की जरूरत है भारत को. 4.1 ओवर के बाद भारत 29 बिना किसी विकेट पर. शफाली वर्मा है सामने पैरी के. ओवर द विकेट, लंबी ऊंची कद की पैरी, मिडल और लेग स्टंप के बाहर ये गेंद फ्लिक करना चाहती थी, बीट हुई मगर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से. भारत का स्कोर हुआ 30 बिना किसी विकेट पर. अच्छी क्रिकेट यहां पर लॉर्ड्स के इस मैदान में. भारत के लिए ये महत्वपूर्ण मुकाबला, इस मुकाबले को जीतना ही होगा और जीत के लिए चाहिए एक अच्छा लक्ष्य जो कि ऑस्ट्रेलिया को देना होगा ताकि ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाया जा सके. और इसके लिए जरूरी है साझेदारी का होना और गेंदबाजों के ऊपर आक्रमण का करना. वुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्टीयर करना चाहती थी, बीट हुई. डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी करती हुई पैरी, 114.9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये फेंकी हुई गेंद, हालांकि हवा में ज्यादा स्विंग नहीं और टिप्पा खाने के बाद भी गेंद सीधी रही मगर स्टीयर करने के प्रयास में बीट हुई थी शफाली वर्मा, जो कि इस समय 9 गेंदों का सामना करने के बाद 14 पर बल्लेबाजी कर रही है. 30 भारत का स्कोर 4.2 ओवर के बाद. पैरी की यह गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ लेग स्टंप पर बैकफुट पर जाकर इसे फ्लिक किया, डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर फील्डर मौजूद है वहां पर. जब तक गार्डनर थ्रो करेंगी, बेथ मूनी के दस्तानों में एक रन भागने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास. 15-15 दोनों का स्कोर. स्मृति और शफाली का अच्छी बल्लेबाजी करती हुई 4.3 ओवर के बाद भारत 31 बिना किसी विकेट पर. स्मृति सामना करेंगी पैरी का. इस ओवर में अब तक 2 रन आए हैं, एक बल्ले से और एक वाइड बॉल की मदद से. बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति अच्छी टाइमिंग से आज बल्लेबाजी कर रही हैं. 2 खूबसूरत बैकफुट पर ऑन ड्राइव खेले हैं उन्होंने. अराउंड द विकेट स्मृति के लिए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, पुल करना चाहती थी, पैड से टकराई, हालांकि हल्की से LBW की अपील भी की गई मगर खुद गेंदबाज ये जानती थी कि ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी इसीलिए अपील में ज्यादा प्रभाव नहीं. और स्मृति अपने आप से नाखुश होती हुई, वो जानती हैं कि ये कमजोर गेंद थी और पुल शॉट खेलकर रन बटोरे जा सकते थे इस गेंद पर मगर सफल नहीं हो पाए. 31 भारत का स्कोर बिना किसी विकेट पर 4.4 ओवर के बाद. पैरी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अराउंड द विकेट, इस बार ये लेग स्टंप पर बैकफुट पर जाकर इसे पुल कर दिया स्क्वायर लेग क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के पार जा रही है, 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: कमजोर गेंद और इससे पहले भी कमजोर गेंद थी जिसको भुना नहीं पाई थी स्मृति मगर इस बार चूकी नहीं वो और सफाई से पुल शॉट को खेला गया गैप में जहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था. 35 हुआ भारत का स्कोर. 19 पर पहुंची स्मृति 19 गेंदों का सामना करने के बाद जिसमें 4 शानदार चौके शामिल हैं. पैरी अराउंड द विकेट, एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर पुल किया गया मगर इस बार डीप मिड विकेट क्षेत्र पर जहां पर फील्डर मौजूद थी और एक रन भागने का मौका. 5 ओवर्स के बाद भारत 36 बिना किसी विकेट पर.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
5: जानिए आभा के बारे में.
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स

0: चौके और एक शानदार छक्का शामिल है। अब तक के खेल में किसी तरह का अश्विन जोखिम नहीं उठाया गया है, और अगर जोखिम उठाया गया है तो वो काफी कैलकुलेटेड रहा है, विशेष तौर पर शफाली वर्मा की तरफ से, जो फ्लाइटेड गेंदों पर उन्होंने हवाई स्ट्रोक्स खेले, मिड ऑफ और कवर्स के ऊपर पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, और जिस तरह से सूझबूझ से बल्लेबाजी की है लग रहा है कि ये दोनों लंबी पारी की तरफ जा रहे हैं।
1: Precisely, Virender Jeet, as you mentioned, they have been a very cautious in their approach. They haven't taken any risk. But as we know, Shefali Verma, she is known to hit the balls which are available to hit. And she's doing that. If you look at those two deliveries from Ashley Gardner, she went behind them. She knows it was the outside Austin Fuller line delivery. She went it over and lofts it over the boundary for a six. So it was a mixed approach, I would say, where aggression, when they need to show when the deliveries are there to hit, they are hitting that. But otherwise, they have been very watchful, and that's what brings India after 6 overs. 43, I think, is a decent total, and you would take it any day, Virender ji.
0: और देखा जाए तो अश्विन इस वर्ल्ड कप में अब तक ये दूसरी आरंभिक बल्लेबाजों में सबसे बड़ी साझेदारी है। नीदरलैंड के विरुद्ध दोनों बल्लेबाजों ने 115 रन की साझेदारी की थी, और अब ये 43 रन की साझेदारी है। पाकिस्तान के विरुद्ध 6 रन की साझेदारी बनी थी, साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 30 की, और बांग्लादेश के विरुद्ध 31 रन की। तो ये कहा जा सकता है कि इस मुकाबले में भी ये इस वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी साझेदारी होनी चाहिए, तो भारत एक अच्छा लक्ष्य दे सकता है ऑस्ट्रेलिया को।
1: Precisely, and I believe that what against when you are under a pressure situation and doing that, that's what is required from a caliber of these two players. They need to put up, come up a front, lead by example and set something for the batsman coming up. And that's what they're doing. And what great opportunity it could be then a quarterfinal, virtual quarterfinal for India in this. And they need to stay in the game if they have to stay in this World Cup. And they are doing the best. And I'm quite impressed with their playoff approach.
0: और अगर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात की जाए तो लूसी हैमिल्टन ने काफी सटीक गेंदबाजी की है। 2 ओवर में उन्होंने 8 रन दिए हैं, स्टंप्स के बीचों बीच अपनी गेंदबाजी को रखा है, स्ट्रोक बनाने का मौका नहीं दिया। किम गार्थ ने कुछ कमजोर गेंदबाजी बीच में जरूर की है, 2 ओवर में 15 रन खर्च किए हैं उन्होंने, और गार्डनर को आड़े हाथों लिया शफाली वर्मा ने, एक ही ओवर में 13 रन लगाए थे शफाली वर्मा ने उनके विरुद्ध, और एलिस पेरी जो कि अब तक 1 ओवर उन्होंने फेंका है, इसमें भी उनकी तरफ से कुछ शॉर्ट पिच गेंदबाजी देखने को मिली, जिस पर पुल शॉट खेलने का मौका मिला स्मृति को, और वेयरहम की तरफ से अभी गेंदबाजी की जानी है, और देखना है कि किस तरह का आक्रमण वो इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों के आगे, स्मृति और शफाली के आगे करेंगे। पावर प्ले के बाद टाइम आउट था, और उसके बाद ये दोबारा से खेल शुरू होता हुआ। 22 पर हैं स्मृति, शफाली वर्मा है 20 पर, 14 गेंदों का सामना करने के बाद। 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 43, 7.17 की औसत। लेग स्पिन गेंदबाज वेयरहम, जिन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की स्मृति के लिए, बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: जॉर्जिया वेयरहम की ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, ऑफ स्टंप के बाहर, बैकफुट पर गई और प्रहार किया पॉइंट क्षेत्र पर, जहां गैप मिला स्मृति को और 4 रन भी। 47 हुआ भारत का स्कोर बिना किसी विकेट पर।
3: द क्रिकेट कॉमेंट्री विल कंटिन्यू आफ्टर अ शॉर्ट फीफा अपडेट।
4: World Football Update from the BBC.
5: Hello, I'm Nick Hatton at the BBC Sports Centre with the latest World Cup news. DR Congo set up a World Cup last 32 meeting with England as they reached the knockout stages for the first time. They came from behind to beat Uzbekistan 3-1 in their final group stage game. The win sees them finish third in Group K and will face England on Wednesday in Atlanta. His manager, Sébastien Desabre.
6: I think today we knew what we had to do. We conceded a goal a bit early in the game, but like against Portugal or even Nigeria, we were able to bounce back. We had dedication and motivation. For the game itself, the win was straightforward. That's an achievement in itself. And for us, the most important thing is that we showed Congo in a good light.
5: Well, England finished top of their group with a 2-0 win over Panama. Harry Kane with the second goal of the match to become England's record World Cup goal scorer. Here's his manager, Thomas Tuchel.
7: He is hungry to go all the way this World Cup, and he's not satisfied, which shows us the character and the determination of him, and that's why we're happy to have him as a captain.
5: Ghana's 2-1 loss to Croatia sees them finish third. They will face Colombia.

0: was this no boundary, and Smriti must be looking for that. But no, a good length delivery drives it down. There's Ashley Gardner in the deep and throws it back to the keeper. That's the end of over number 8, India 54 without loss.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
5: 7.37 की औसत से भारत ने 54 रन बना लिए हैं अब तक, और मंधाना है 29 पर और शफाली वर्मा 23 पर इस समय बल्लेबाजी कर रही है. गार्डनर को दोबारा गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. गार्डनर जो कि अपने पहले ओवर में काफी महंगी साबित हुई थी, स्मृति सामना करेंगी. फ्लाइटेड गेंद, इसे उठाकर खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लॉन्ग ऑफ से भागी फील्डर और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें एक रन भागने का मौका. गार्डनर ने स्मृति को 10 बार आउट किया है 31 T20 पारियों में. जतिन सूद हमारे स्टेटिस्टिशियन हमें बता रहे हैं, और स्मृति को ये बात ध्यान होगी जिसकी वजह से काफी सुरक्षात्मक तरीके से और अपने आप को बचाते हुए खेलती हुई 30 पर बल्लेबाजी कर रही है. शफाली वर्मा सामना करेंगी. फ्लाइटेड गेंद, ऑन ड्राइव करना चाहती थी, बीट हुई, गेंद पैड से टकराई, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं. ये खतरनाक हो सकता था जिस तरह से बीट हुई थी शफाली. दो गेंदों में एक रन, 55 भारत का स्कोर 8.2 ओवर के बाद. गार्डनर ओवर द विकेट. एक बार फिर से शफाली के लिए फ्लाइटेड गेंद, कदमों का इस्तेमाल, कवर क्षेत्र पर ड्राइव किया मगर फील्डर मौजूद है वहां पर, रन बनने की संभावना दिखाई नहीं दे रही. 55 भारत का स्कोर 8.3 ओवर के बाद. फ्लाइट कर रही हैं गार्डनर, न्योता दे रही हैं और जिसे स्वीकार कर रही हैं शफाली वर्मा. बार बार कदमों का इस्तेमाल करके ड्राइव करने का प्रयास करती हैं वो, और अपने पहले स्पेल में अच्छा आक्रमण किया था. इस बार उठा दिया मिड विकेट की तरफ, गेंद सीमा रेखा पार चली गई, हवाई रूट लेती हुई 6 रन.
6: ये लगा आभा का छक्का.
5: मिडल स्टंप पर यह फ्लाइटेड गेंद थी जिसका पूरा इस्तेमाल किया शफाली वर्मा ने, और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए स्लॉग स्वीप किया इसे मिड विकेट क्षेत्र पर, और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रन के लिए. 61 भारत का स्कोर. रनों की रफ्तार इस ओवर में तेज होती हुई, 7 रन आए हैं. 2 डॉट गेंदें, 1 छक्का और 1 सिंगल. एक बार फिर से फ्लाइटेड फुल टॉस गेंद, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद इस बार सीमा रेखा पार जा रही है 4 रन.
6: ये लगा आभा का चौका.
5: आक्रमण करती हुई शफाली वर्मा. गार्डनर हालांकि फ्लाइट कर रही हैं गेंदों में, और उस फ्लाइट के न्योते को पूरी तरह से स्वीकार किया जा रहा है. शफाली वर्मा ने इस फुल टॉस गेंद को 4 रन में भुनाया. 65 हुआ भारत का स्कोर बिना किसी विकेट पर 8.5 ओवर के बाद. 11 रन इस ओवर में आ चुके हैं. आक्रमण करती हुई दोनों भारतीय बल्लेबाज. 30 पर हैं स्मृति और शफाली इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं 33 पर. गार्डनर एक बार फिर से ओवर द विकेट. एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, फिर से कदमों का इस्तेमाल किया गया, ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर और 1 रन मिलेगा. 9 ओवर्स के बाद भारत 66 बिना किसी विकेट पर.
1: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: So Indian Women Act playing according to the playbook was been was been prescribed to them by the coach.

0: मत, जानिए आभा के बारे में।
1: आभा
0: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 74 एक विकेट पर और सदरलैंड अपना नया ओवर शुरू कर रही हैं। पहली ही गेंद पैड से टकराई।

0: सदरलैंड अपना नया ओवर शुरू कर रही हैं। पहली ही गेंद पैड से टकराई LBW की अपील और ऑस्ट्रेलियाई जो फील्डर्स हैं वो विचार कर रही हैं कि रिव्यू लेना चाहिए कि नहीं। टाइमर चल रहा है। स्टंप के बीचों बीच ये गेंद थी जिसे बैकफुट पर जाकर ऑन ड्राइव करना चाहती थी स्मृति और रिव्यू ले लिया गया है। 74 भारत का स्कोर एक विकेट पर और सदरलैंड जो कि तेज गति की लंबी ऊंची कद की गेंदबाज हैं स्टंप्स के बीचों बीच मिडल स्टंप पर यह गेंद थी जिसे स्मृति मंधाना ड्राइव करना चाहती थी बैकफुट पर जाकर मगर गेंद पैड से टकराई थी और LBW की अपील की गई। अंपायर पर उसका कोई प्रभाव नहीं था जिसकी वजह से रिव्यू लिया गया। बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया था स्मृति ने और गेंद उनकी जांग से टकराई है। जिस तरह से गेंद में गति और उछाल है शायद ये हो सकता है कि उछाल ज्यादा हो और ये रिव्यू में देखा गया कि जो गेंद का टिप्पा है वो लेग स्टंप के बाहर पड़ा है जिसकी वजह से रिव्यू पर गौर करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। स्मृति सुरक्षित अपनी क्रीज पर इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं 31 पर। शॉर्ट ऑफ लेंथ ये गेंद थी लेग स्टंप के थोड़ी बाहर जिसे पुल करने का प्रयास किया था पैड से टकराई थी जिसकी वजह से LBW की अपील की गई। प्रभाव नहीं था अंपायर पर इस अपील का जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया था जिसे नकार दिया गया। सदरलैंड एक बार फिर से इस बार कदमों का इस्तेमाल किया ड्राइव किया पॉइंट क्षेत्र पर और डाइव करके इस गेंद को फील्ड किया गया मगर फिर भी एक रन भागने का मौका स्मृति के पास। 75 भारत का स्कोर एक विकेट पर 10.2 ओवर के बाद 7.26 का औसत। इस समय रनों की रफ्तार को अब तेज करना होगा अगर ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा लक्ष्य देना है और जेमाइमा इसी मानसिकता से आई हुई लगती हैं। आते ही उन्होंने स्ट्रोक्स खेलने शुरू कर दिए हैं आक्रमण करना शुरू कर दिया है और देखना है कि इस ओवर में सदरलैंड की तेज गति की गेंदबाजी के आगे किस तरह से आक्रमण करेंगी ये देखने वाली दिलचस्प बात रहेगी। सदरलैंड की ये गेंद ऑफ स्टंप के लेग स्टंप के बाहर फ्लिक करने का प्रयास मगर गेंद से काफी दूर जिसकी वजह से वाइड बॉल का इशारा एक रन भारत के खाते में। 76 भारत का स्कोर 10.2 ओवर के बाद। जेमाइमा काफी समझदार बल्लेबाज हैं गेंद खेल के नब्ज को वो समझती हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर अपनी इनिंग्स को बनाती हैं। हालांकि इस वर्ल्ड कप में ज्यादा सफल अब तक नहीं रही हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फ्लिक किया स्क्वायर लेग क्षेत्र पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए भागने का मौका एक रन जेमाइमा और भारत के खाते में 77 हुआ भारत का स्कोर। जेमाइमा ब्रिग्स T20 मुकाबलों में 130 मैचेस अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेल चुकी हैं 117 पारियां 2790 रन 118.92 के स्ट्राइक रेट से और अपने करियर में 16 अर्धशतक लगा चुकी हैं। ये बताता है कि कितना अनुभव है उनके पास। स्लो फेंकी हुई गेंद और चकमा खा गई स्मृति मंधाना बीट हो गई ड्राइव करना चाहती थी और ये एक और डॉट बॉल किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। सदरलैंड चतुराई से गेंदबाजी करती हैं अपनी गेंदों में धीमी गति की गेंद भी फेंकती हैं जो परेशान करती है बल्लेबाज को और इस बार परेशानी में दिखाई दी स्मृति मंधाना। अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रही हैं बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति को। इस ओवर की पांचवी गेंद सदरलैंड की। इस बार ओवर पिच गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव किया मिड ऑफ क्षेत्र पर गैप मिला स्मृति को सीमा रेखा पार कर गई गेंद 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 7 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर से एक वाइड बॉल से 2 सिंगल्स और एक शानदार स्मृति के चौके से सीधे बल्ले से खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया था सदरलैंड की इस गेंद को। हालांकि इस गेंद को भी धीमी गति से फेंका गया था सदरलैंड की तरफ से मगर इसे समझा अच्छी तरह से पढ़ा और सीधे बल्ले से गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए ड्राइव किया। शानदार बल्लेबाजी। 36 पर स्मृति 34 गेंदों का सामना करने के बाद 81 भारत का स्कोर। रनों की रफ्तार को तेज करना होगा आक्रमण करना होगा ऑस्ट्रेलिया की सटीक अनुशासित और प्रभावशाली गेंदबाजी पर जो कि काफी मुश्किल काम है। सदरलैंड की यह गेंद एक बार फिर से धीमी गति से फेंकी हुई मिडल स्टंप पर जिसे स्क्वायर लेग क्षेत्र पर खेला स्मृति ने और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए एक रन भागने का मौका। 11 ओवर्स के बाद भारत 82 एक विकेट के नुकसान पर।
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: मरियम जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जहां आप अपने मेडिकल

0: It's really interesting to see what Jemima does this time. She actually reaches the ball, pushes it down along the ground to mid-wicket region and has a time to switch the guard. So 12 overs gone, 85 for 2 India.
1: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लिए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा?
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लिए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: 8 ओवर्स का खेल बाकी, भारतीय पारी का 85 भारत ने बनाए हैं 12 ओवर्स के बाद, और 8 ओवर्स में 10 की औसत से अगर 80 रन बनते हैं तो 165 रन का लक्ष्य दे पाएगा। देखना यह है कि आक्रमण भारत का किस तरह से रहेगा। हैमिल्टन को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। स्क्वायर ड्राइव, कप्तान हरमनप्रीत का डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए एक रन भागने का मौका। 86 हुआ भारत का स्कोर। अभी अभी स्मृति मंधाना आउट हुई जब भारत का स्कोर 83 था, और हमारे स्टेटिस्टिशियन जतिन सूद हमें बता रहे हैं कि स्मृति ये चौथी बार है कि अपने 172 T20 मुकाबलों में रन आउट हुई है। 172 पारियों में वो ये चौथी बार रन आउट हुई है। ज्यादा रन आउट नहीं होती हैं अगर आज गलती कर बैठी। हैमिल्टन ओवर द विकेट, बाएं हाथ की धीमी गति से फेंकी हुई गेंद हवा में, मगर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। मिडॉन पर इस गेंद को खेला गया था जमाइमा की तरफ से, और एक रन भागने का मौका। इस ओवर में 2 गेंदों में 2 रन, 87 भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। रनों की रफ्तार को तेज करना होगा इस मैदान पर। विकेट पूरी तरह से बल्लेबाजों को मदद देने वाला, ज्यादा गति या उछाल या टिप्पा खाने के बाद मुड़ती हुई गेंदें दिखाई नहीं दी हैं। हैमिल्टन की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहती थी, बीट हुई डॉट गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। 87 2 विकेट पर भारत। हरमनप्रीत जो कि इस वर्ल्ड कप में इतना अच्छा।
5: दिस इज दिल्ली, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। दिस इज आकाशवाणी। We now bring you the English version of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's Mann Ki Baat, broadcast earlier this morning at 11 on the national network of Akashvani.
6: My dear countrymen, Namaskar. It gives me immense joy to connect with all of you once again through Mann Ki Baat. Half of the year 2026 is drawing to a close. Over these 6 months, we've discussed numerous achievements of our countrymen in Mann Ki Baat. In June as well, the nation has attained certain achievements that fill every citizen with pride. These successes are linked to the country's security and self-reliance. Recently, I had the opportunity to attend a Navy-related event in Kolkata. There, INS Doonagiri, INS Sanshodhan.
4: भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 12.4 ओवर के बाद। अराउंड द विकेट गेंदबाजी करती हुई हैमिल्टन की यह धीमी गति से फेंकी हुई मिडल स्टंप पर गेंद, इसे टर्न कर दिया शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र पर हरमनप्रीत ने, और एक रन भागने का मौका। इस ओवर में यह 7वां रन। रनों की रफ्तार को तेज करना होगा भारत को, और उसी का प्रयास कर रही हैं दोनों बल्लेबाज जमाइमा और हरमनप्रीत। दोनों के पास अनुभव, दोनों ये जानती हैं कि इस मुकाबले को जीतना जरूरी और एक अच्छी साझेदारी जरूरी। इसके बाद 7 ओवर की पारी रह जाएगी भारत की। 92 भारत का स्कोर 2 विकेट पर। जमाइमा सामना करेंगी हैमिल्टन का, जो कि इस समय 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप कवर्स, ये 4 फील्डर्स जो हैं वो बाउंड्री पर हैं। इस बीच जमाइमा हैमिल्टन का सामना करने के लिए तैयार, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही है। जमाइमा को शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर जाकर इसे कट किया है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ, मगर बिल्कुल बाउंड्री के अंदर इसे रोका गया। लिचफील्ड द्वारा

0: हार करना मुश्किल हो जाता है. तो चुनौती रहेगी अश्विन दोनों हरमनप्रीत और जेमाइमा के लिए कि किस तरह से आक्रमण करना है, क्योंकि देखा जाए तो अब तक की जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी है ये काफी अनुशासित रही है. हमने देखा कि कमजोर गेंदें काफी कम फेंकी हैं उन्होंने और रनों को बनाया है, कमाया है भारतीय बल्लेबाजों ने. और अब जबकि समय है आक्रमण करने का, बाउंड्रीज का, और पिछले कुछ ओवर्स में हमने देखा कि एक बाउंड्री के साथ दोनों बल्लेबाजों का ये प्रयास रहा है कि सिंगल्स और डबल्स के साथ रन बटोरे जाएं और रनों की रफ्तार को तेज किया जाए.
1: Exactly, and that's what I believe in this drinks break. The message is going to come from the management that there are 36 more legal deliveries to come in and score as much as you can. And that gives the liberty to Harmanpreet at least to go and unleash that the power that she, the skill that she has, the prowess that she has in her armory to unleash that. Because then we already have Yashtika Bhatia, then we have Richa Ghosh to come in, then there would be Deepthi Sharma who can go for long handles. So India has that power, and what it has done so far, that they haven't lost so many wickets, so they can actually maneuver around that and must be targeting around anything about 160, 165 would be a great total. Because we have seen so far, Birinderji, this is not a very fast outfield. Overcast condition, ball hasn't been traveling so fast as we have known Lords to be. But this time, the weather per se or the overcast condition has given that opportunity India that ball hasn't been traveling at that great speed. And that brings in the spin into the play.
0: जी, ड्रिंक्स के बाद फिर से खेल शुरू होता हुआ. सदरलैंड अपने ओवर को डालती हुई पहली ड्राइव किया था इसे जेमाइमा रोड्रिग्स ने लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दो रन भागने का मौका. 104 भारत का स्कोर दो विकेट के नुकसान पर. हालांकि पहले 9 ओवर्स तक भारत का कोई विकेट नहीं गिरा था अश्विन, मगर अनुशासित और प्रभावशाली गेंदबाजी की वजह से ज्यादा रन नहीं दिए हैं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने, ज्यादा स्ट्रोक लगाने का मौका नहीं दिया है, रन बटोरने का मौका नहीं दिया है. सदरलैंड एक बार फिर से जेमाइमा के लिए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई, मिड विकेट क्षेत्र पर इसे खेला गया, एक रन मिलेगा जेमाइमा को. 105 रन भारत के दो विकेट के नुकसान पर. इस ओवर में अब तक 3 रन आए हैं, 7.33 का औसत. अच्छा लक्ष्य देने के लिए और रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा, आक्रमण करना होगा, प्रहार करने होंगे, और देखना है कि हरमनप्रीत, जिनके पास क्षमता है स्लॉग करने की, बड़े स्ट्रोक्स खेलने की, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. सदरलैंड ओवर द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बैकफुट पर जाकर इसे कट किया, गेंद गैप में जा रही है, सीमा रेखा पार कर गई, 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: हरमनप्रीत को मौका मिला, ये छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर जाकर इसे बल्ले के बीचों बीच लेते हुए दिशा दी बैकफुट पॉइंट क्षेत्र की तरफ जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं. 4 रन हरमनप्रीत और भारत के खाते में. अच्छी बल्लेबाजी, दर्शनीय बल्लेबाजी, इसी तरह के स्ट्रोक्स दरकार हैं भारत को रनों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए. सदरलैंड एक बार फिर से धीमी गति से फेंकी हुई ओवर पिच गेंद, सीधे बल्ले से ऑन ड्राइव किया इसे, और जब तक लॉन्ग ऑन से गेंद को फील्ड किया जाए, एक रन फिर से हरमनप्रीत के पास भागने का मौका. 110 भारत का स्कोर दो विकेट के नुकसान पर. 66 पर पहला विकेट गिरा था, 83 पर दूसरा, और उसके बाद से ये दोनों स्मृति जेमाइमा और हरमनप्रीत प्रयास करती हुई भारत को एक अच्छे लक्ष्य की तरफ लेकर जाने के लिए. सदरलैंड की ये गुड लेंथ गेंद स्टंप्स के बीचों बीच, जिसे एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर खेला गया, डॉट बॉल, कोई रन नहीं. इस ओवर में अब तक 8 रन आ चुके हैं और एक गेंद फेंकनी बाकी. इसके बाद 30 गेंदें भारतीय पारी की रह जाएंगी, 7.42 का औसत. हरमनप्रीत कप्तान विकेट के बीच सोच रही होंगी कि रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा, प्रहार करने होंगे. धीमी गति से फेंकी हुई गेंद, इसे कवर्स के ऊपर से खेला जेमाइमा ने, डीप कवर्स पर फील्डर मौजूद हैं, एक रन भागने का मौका. 15 ओवर के बाद भारत 111 दो विकेट के नुकसान पर. 7.40 का औसत. सदरलैंड का ये ओवर समाप्त जिसमें 9 रन दिए उन्होंने, और हालात के मुताबिक अच्छी गेंदबाजी, स्टंप्स के बीचों बीच गेंदबाजी करने की कोशिश कर रही हैं सदरलैंड अश्विन, और उसमें काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं.
1: Exactly. So 15 overs go on 111 for 2. That's the Nelson figure. 111 for 2. India after end of 15. 9 runs they have picked up in this over. And that's a mandate. You know, you pick up around 10, 12 runs in over and you reach somewhere on 160, 160.

0: करेगा कि हरमनप्रीत किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। जब ये विश्राम के दिन थे अश्विन, तो हरमनप्रीत ने लंबे स्ट्रोक्स खेलने का अभ्यास किया है नेट में, ये देखा गया है। शायद उन्हें मालूम था कि इसी इन हालात में उनकी बल्लेबाजी आएगी और इस तरह का आक्रमण उन्हें करना होगा जिसके लिए वो पहले से ही अभ्यस्त होकर आए हैं। 16 ओवर्स में 118 रन भारत के, 2 विकेट के नुकसान पर। गार्थ अपने ओवर की शुरुआत करती हुई, ये पहला गेंद ऑफ स्टंप पर धीमी गति से फेंका हुआ जमाइमा के लिए, ड्राइव करना चाहती थी, ठीक से टाइम नहीं कर पाई, मगर फिर भी एक रन मिलेगा जब तक कवर से गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो किया जाए। गार्थ की ये पहली ही गेंद चतुराई भरी, गति परिवर्तन, धीमी गति से फेंकी हुई जिस पर प्रहार करना मुश्किल, मगर फिर भी एक रन मिला। 119 भारत 2 विकेट पर 16.1 ओवर के बाद 7.36 का औसत इस समय। 119 पर 2, हरमनप्रीत सामना करेंगी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज किम गार्थ का, जो कि अब तक 2.1 ओवर में 16 रन दे चुकी है। इस ओवर की दूसरी गेंद ओवर द विकेट हरमनप्रीत के लिए, गुड लेंथ, धीमी गति से फेंकी हुई, सीधे बल्ले से ड्राइव किया मिड ऑफ पर और एक रन भागने का मौका। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ये समझ चुकी हैं कि बल्लेबाज प्रहार करेंगे, आक्रमण करेंगे, इसलिए ज्यादा गेंदों में गति नहीं दी जा रही है। बल्लेबाज को खुद जोर लगाना पड़ रहा है जिसकी वजह से आक्रमण करना, चौके ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम यहां पर दिखाई देता हुआ। 16.2 ओवर के बाद 120 भारत का स्कोर 2 विकेट। गार्थ ने अपने ओवर की दोनों गेंदें धीमी गति से फेंकी, इस ओवर की तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार जमाइमा के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद उठा दिया मिड विकेट की तरफ, मगर फील्डर वहां पर मौजूद हैं। गार्डनर जब तक थ्रो करें, एक रन भागने का मौका। 3 गेंदें 3 रन इस ओवर में अब तक। 121 2 विकेट पर भारत, औसत 7.33 का होता हुआ। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज काफी प्रभावशाली रही हैं, अच्छी तरह से अनुशासन से गेंदबाजी की है उन्होंने, जिसकी वजह से भारत को बाउंड्रीज ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ रही है इस समय। गार्थ अपने ओवर में चौथी बार, इस बार फिर से धीमी गति से फेंकी हुई गेंद, ड्राइव करना चाहती थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन बाउंड्री से गेंद सीमा रेखा पार कर गई, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: 125 पर 2 भारत इस ओवर में, जो कि 4 रन मिलने मुश्किल लग रहे थे इस धीमी गति से ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी हुई गेंद पर, जबकि खेलना चाहती थी मिड विकेट पर, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री से होती हुई सीमा रेखा पार कर गई। 125 पर 2 भारत, 7 रन अब तक इस ओवर में आते हुए, 2 गेंदें बाकी। गार्थ अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, ओवर द विकेट कप्तान हरमनप्रीत के लिए, ओवर पिच गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, एक रन फिर से भागने का मौका। 126 भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 1 गेंद इस ओवर में अभी बाकी, जमाइमा इसका सामना करेगी। आक्रमण करने में, बड़े शॉट लगाने में जमाइमा रोड्रिग्स को थोड़ी परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से ज्यादा सिंगल्स के साथ खेल रही हैं वो। 20 गेंदों में 22 रन बनाए हैं। इस बार ये धीमी गति से फेंकी हुई ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, जिसे ड्राइव किया था जमाइमा ने, कवर क्षेत्र पर डीप कवर से इसको फील्ड किया गया, एक रन भागने का मौका। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 127 भारत का स्कोर 2 विकेट।
2: So end of over number 17, 127 for 2 India, with Jemima Rodrigues on 23 of 21 with one boundary she picked up, but she is playing so well that both of these together have put in a partnership of around 44 runs in just the 33 deliveries that they have faced. So 18 more legal deliveries to be bowled in this match. And what I've seen so far, that though Australians has been very tidy on their lines, they haven't given anything. The player has to work out to create the opportunities and play the stroke, place the ball and find the gaps. That's the India so far has managed to do that. But also that the pitch has been little gripping the ball. It's not coming on as nicely as one expects from this Lord's ground, which is the Mecca of cricketing world. People can be overwhelmed playing here, but Indians so far has been very, very impressive. And Australians, as you always say, they have a never say never attitude. Never say no attitude this time. Sophie Minello for the third time in this match. Bowling to Jemima Rodrigues. Over the head of the player. One bounce. There's one. Someone.

0: the deep mid-wicket region finds it. The backward square leg region finds it the hand off after one bounce, throws it back to the keeper, Beth Mooney. And with that, she manages to cross her ends. 128 for 2, 17.1 overs gone. 7.46 is the score rate for India. Harmanpreet again plays the aerial shot. Is there anyone in the deep? No. Lands in the vacant area. She takes one. And is she looking for two? That needs to be seen. But no, Jemima wanted one more. She was actually saying that I am going for the danger end. But Harmanpreet wasn't interested. And you can see the grip of Harmanpreet. She's actually, since the time she's come in, she's promoted Yastika Bhatia, that she's playing with the long handle. And that long handle gives an opportunity for her to score more freely. So 35 balls these both have faced, 46 runs they have scored. Jemima again taking the aerial route. One bounce, two bounce, three bounce to player in the deep at a deep extra cover region. And by the time they takes one more. So three balls for Sophie Minilo, and she has conceded just three runs. 130 for two. 17.3 overs gone. 7.43 runs per over. Indians are scoring, and they need anything. 30 more runs in those 15, 17 balls that they need to face. Looking at the stroke play, Harmanpreet keeping the long handle. It's given that she's going for the long hand. Anything flighted delivery will invite her. Sophie Minilo, but this time actually pulls the ball along the ground for one more. So another single coming in this over. Just four balls, four runs so far. 131 for two. 17.4 overs been bowled. Another 14 deliveries to go in this over. Jemima on 25 of 23 deliveries. Harmanpreet on 31 of 20. And this match been witnessed by some of the greats of the cricket world. Virat Kohli with his wife present in the ground. 131 for 2. This time Jemima plays it again. Takes the aerial route but lands before the player at mid-on region. And that gives opportunity for them to cross for one more single. Five balls, five singles. India moves on to 132. 17.5 overs gone. Harmanpreet on 31 of 20 deliveries she has faced. What she can do in the last ball. This time she actually went for the fuller length. Drives it down. There's someone cutting it. And by the time they manage to throw, she has ample time to take two. So between them, they have a 51 run partnership so far. Core scoring major of it. 33 runs coming up from Harmanpreet's core bat. And at the end of over number 18, India 134 for two. And another two overs to go.
1: 134 भारत ने स्कोर बनाए हैं 18 ओवर्स की समाप्ति के बाद और जिस तरह से बाउंड्रीज चाहिए चौके छक्के लगने चाहिए उसमें थोड़ी समस्या आ रही है गैप ढूंढने में थोड़ी परेशानी आ रही है और जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है स्टंप्स के बीचों बीच बिल्कुल सटीक और जिस तरह से तेज गति की गेंदबाजी में गति परिवर्तन हो रहा है उस पर प्रहार करना स्लॉग करना बड़े शॉट्स लगाना भारतीय बल्लेबाजों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है जिसकी वजह से रनों की रफ्तार जितनी तेज होनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही 8.25 की औसत से अब तक भारत ने रन बनाए 134 दो विकेट पर 12 गेंदे बाकी भारतीय पारी की सदरलैंड अपने नए ओवर की शुरुआत करती है ओवर द विकेट ये गेंद इसको शफल करके फाइन लेग क्षेत्र पर खेला फील्डर वहां पर मौजूद है जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा एक रन मिलेगा जेमाइमा रोड्रिग्स को 135 हुआ भारत का स्कोर दो विकेट के नुकसान 27 पर हैं जेमाइमा और 33 पर बल्लेबाजी कर रही हैं हरमनप्रीत सदरलैंड जिन्होंने इस मुकाबले में 3.1 ओवर्स में 23 रन दिए हैं और सफलता हालांकि उन्हें नहीं मिली है इस ओवर की दूसरी गेंद हरमनप्रीत के लिए शॉर्ट ऑफ लेंथ पुल कर दिया इसे स्क्वेयर लेग क्षेत्र पर फील्डर मौजूद नहीं है चार रन मिलेंगे
2: लगा
1: कमजोर गेंद जिसका पूरा फायदा उठाया हरमनप्रीत ने लेग स्टंप पर यह शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जिसे पुल कर दिया और डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था और गेंद सीमा रेखा पार कर गई चार रन के लिए 139 भारत का स्कोर दो विकेट पर 18.2 ओवर के बाद क्या ये ओवर बड़ा होगा भारत के लिए रन आएंगे बाउंड्रीज लगा पाएंगी हरमनप्रीत जो कि 37 पर है 22 गेंदों का सामना करने के बाद दो गेंदों में पांच रन अब तक आ चुके हैं सदरलैंड एक बार फिर से धीमी गति से फेंकी हुई गेंद इसे स्लॉग स्वीप किया मिड विकेट क्षेत्र पर फील्डर मौजूद है मगर गेंद उनके आगे गिर गई काफी देर हवा

0: एक रन मिलेगा हरमनप्रीत को। 6 रन 3 गेंदों में 18.3 ओवर के बाद 140 भारत का स्कोर। चतुराई से गेंदबाजी करती हुई सदरलैंड ये देखते हुए कि हरमनप्रीत आक्रमण करेंगी, चौका लगा चुकी हैं वो, धीमी गति से गेंद को फेंका गया जिसकी वजह से मिस टाइम हुआ और बड़ा स्कोर नहीं लगा पाए हरमनप्रीत। 3 गेंदों में 6 रन 140 पर 2 भारत 18.3 ओवर के बाद। सदरलैंड की ओवर द विकेट गेंद एक बार फिर से धीमी गति से फेंकी हुई, ड्राइव किया वापस गेंदबाज की तरफ, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया सदरलैंड द्वारा। हालांकि प्रहार काफी तेज था मगर फील्ड करने में सफल रही और डॉट गेंद। 4 गेंदों में मात्र 6 रन आते हुए 140 2 विकेट पर भारत का स्कोर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे जो सफल गेंदबाज हैं वो मोलिनू ही रही हैं, एक रन आउट स्मृति हुई है और एक सफलता मोलिनू को मिली है। इस बीच धीमी गति से फेंकी हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया, डीप स्क्वायर लेग पर कैच छिटक गया और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का छक्का,
0: डीप स्क्वायर लेग पर इसे पुल किया था इस धीमी गति की गेंद को जेमाइमा रोड्रिग्स ने, डीप स्क्वायर लेग पर बिल्कुल हाथों में ये कैच था उनके और छिटक कर गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रन के लिए। 6 रन भारत के खाते में 146 2 विकेट पर भारत 18.5 ओवर के बाद। इस ओवर में अब तक 12 रन आ चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद सदरलैंड की, गुडलिन गेंद कवर्स के ऊपर से ड्राइव किया सीधा डीप कवर्स पर खड़े फील्डर के हाथ में, एक बार फिर से कैच छिटक गया और एक रन भागने का मौका जेमाइमा के लिए। किस्मत अच्छी है इस बार जमाइमा की, 19 ओवर्स के बाद 147 ऑस्ट्रेलिया भारत 2 विकेट के नुकसान पर, 7.74 का औसत है इस समय पारी का भारत के।
2: Brindaji, as it's been said in English, luck favors the bravo, and that's what is happening with Jemima. She has been brave today. She has been very skillful today, and she's been managed to score 34 of those 26 deliveries that she has faced with one, with 28 deliveries that she has faced with just one boundary and one six, and that takes India's total to 147 for 2 in 19 overs. 13 came off of that last over with a six and a four, and two catch dropped in that over. So that finishes Annabelle's four overs 36 runs without wicket, and Sophie would bowl the last over of the match. 3 overs 23 runs so far she has given, she has taken a wicket, the only bowler who has taken, and this time she will bowl to Jemaima Rodrigues who has taken single, but there's a fall of a wicket in between, and then or I think she has retired her. We need to see what has happened in between. Maybe she has changed, she has retired her. So 19 overs gone, 147 for 3. Jemaima goes out and in comes Richa Ghosh. She knows that Indian management knows that they need to maximize the 6 balls as much as they can score. So Harmanpreet is a non-striker end of 38 runs of 23 deliveries, and Jemaima walks herself out of the to the pavilion, and in comes Richa Ghosh this time, and she goes it from ball number 1 and over. She took the aerial route. By the time ball runs to Ashley Gardner, she has the time to take for 1. So 148 for 3. Last 5 balls of this over, 7.72 runs. Last 13 runs came in the last over. That actually has prompted Indian scoring rate to 7.72 runs per over. And there's a lot happening in the middle with Jemaima telling what's happening with the ball. Ball is not coming nicely onto the bat. So they think they have enough on the board. But with Australians, you push the envelope as much as you can. This time, Harmanpreet dances down the wicket and lofts it over for 6.
1: ये लगा आभा का छक्का,
2: एंड दैट सिक्स ब्रिंग्स इंडिया 150. इंडिया आर नाउ 154 फॉर 3. हरमनप्रीत एक्चुअली सेंस द बॉल, अ शॉर्टर डिलीवरी रीचेस द बॉल एंड लॉफ्ट्स इट ओवर द बॉलर्स हेड फॉर अ माइटी वन ऑफ द ह्यूज सिक्सेस ऑफ दिस मैच, एंड दैट took India total to 153. Harmanpreet on 44. 24 deliveries she has paid. Minilo from nursery, and this time to Harmanpreet. Again, lofts it down. We need to see, has it got enough elevation? And it does. One more six.
1: Ye laga abha ka chakka.
2: That brings 50 for Harmanpreet. This is the 50 number 6 for her. Two sixes back to back. And Harmanpreet actually playing the skipper innings. That brings a 50 in just 25 deliveries.

0: that she has faced. And as we were guessing that anything around 160, Virenderji would be a good total. And last two overs, Indians were able to switch the gear with Harmanpreet leading that with 160 for three and still four more deliveries to go in this over.
1: Kamal ki ballebazi, Kamal ka balle ka follow through Harmanpreet ka. Ek baar phir se kadmon ka istemal kiya, covers ke upar se khela aur catch chhitak gaya. 6 run Bharat ke khate mein.
2: Ye laga aadha ka chhakka.
0: Three sixes and three deliveries, and the Indians won't mind that catch would have been taken. That's okay, but they need to maximize 166 now. Three balls, 18 runs has cost to do a bowler who's been so economical throughout this match. But Harmanpreet is now changing the whole scheme of things and match tilting. You can see from the face of the Australian skipper, India, 19.4 overs, 166 for three, and Harmanpreet is now 56. In 26 deliveries with 6 fours and 3 sixes. What she can do. Two more deliveries to go. She dances out again. Plays it. But this time she actually lofts the ball straight into Ellis Perry. And she makes no mistake in taking the catch. And that brings to downfall of Harmanpreet. But she knows. India knows. The dressing room knows. And the fans knows that she has done her job, Birendraji.
1: कमाल की पारी, कमाल की बल्लेबाजी. उस समय में जबकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह से हावी थे भारत के ऊपर, उस समय में प्रहार करना, बड़े शॉट्स खेलना जो कि मुश्किल लग रहा था, हरमनप्रीत ने इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की है और शानदार पारी खेलकर वापस आती हुई 166 भारत 4 विकेट पर 19.5 ओवर के बाद. 56 रन की ये पारी 27 गेंदों में 6 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से.
0: Quick change in gears by Harmanpreet actually will this partnership for 19 runs and 6 deliveries that they have faced, and Yashtika will face the last ball of this match. 19.45 overs gone, 166 for 4, and Harmanpreet actually, that was expected. She hasn't had a great tournament so far in this World Cup. A 50 was expected, and law of averages caught up, as you would say, and then she scored a 50 in a very, very important game for India. Yashtika Bhatia comes in. She will face the last ball of Sophie Minilu, who's been very, very critical. 4 overs, 46 runs she has given. What she does, we need to see. Deepthi Sharma comes in and actually guns this ball down to the left side, and this ball goes for the boundary. So a boundary here, 170 for 4. India ended the inning in 20 overs. Virendraji, what a score it is.
1: अच्छा लक्ष्य है भारत के लिए. और
2: ये लगा आभा का चौका.
1: ये ओवर भारत के लिए शानदार रहा और 3 छक्के 1 चौका, 170 रन 20 ओवर के बाद. और ये देखना होगा कि चौका हुआ है कि नहीं, अंपायर इस बात का निर्णय करेंगे. 19.5 ओवर में 166 रन भारत के बने हैं और शायद इसका निर्णय अभी होना है कि आखिरी गेंद पर जो कि दीप्ति शर्मा ने खेला था उस पर 4 रन लगे हैं कि नहीं. शानदार पारी हरमनप्रीत द्वारा, आरंभक बल्लेबाजी अच्छी रही भारत की तरफ से. पावर प्ले में जिस तरह से स्मृति और शेफाली वर्मा ने बल्लेबाजी की, 66 रन की पहली विकेट की साझेदारी थी जिसकी वजह से भारत की पारी मजबूत हुई. मगर उसके बाद से जिस तरह की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया ने की, जिस अनुशासन से गेंदबाजी की गई, विकेट के बीचों बीच सटीक गेंदबाजी और तेज गति की गेंदबाजी में जो गति परिवर्तन किया गया उसको देखते हुए बांध कर रखने में काफी हद तक कामयाब रहे थे. तो आखिरी गेंद का ये निर्णय कि वो 4 रन ही थे. 170 भारत का स्कोर, 171 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने. दूसरी पारी जब शुरू होगी उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे. तब तक सुनिए हमारा कार्यक्रम फ्री हिट 20.
3: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात.
4: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार, मन की बात में आप सबका स्वागत है.
3: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव. साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात. अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात. भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात. विदेश में भारतीय संस्कृति की बात. अन्य

0: की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला, बात देश की, सबके मन की।
1: मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
0: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार, और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।

0: another do or die game against Australia, another Harmanpreet half century as India snatched momentum in the final over, slamming 23 to take their total to 170, having retired out Jemima ahead of the over. Hello and welcome to Free Hit 20. I am Megha and joining me in studio is Anand Srivastav.
1: हमारे साथ तीन विशेष मेहमान हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्र बोस हैं, बीसीसीआई के कोच रविंदर जी हैं और पूर्व भारतीय क्रिकेटर रही ख्याति गुलानी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: हरमनप्रीत कौर की शानदार अर्धशतकीय पारी, स्मृति मांदना, शेफाली वर्मा और जमीमा का स्ट्रांग कॉन्ट्रीब्यूशन, 170 पर 4 भारत का स्कोर है। ख्याति, आपसे शुरू करेंगे, टोटल को कैसे देखती हैं जब 10 ओवर के बाद हम 74 रन बना चुके थे?
3: डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड स्कोर। आई थिंक नाउ बॉलर्स विल गेट कुशन एंड नाउ इट्स नाउ देयर पार्ट टू शोकेस देयर स्किल्स नाउ। आई गेस दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग इनिशियली दैट 170 विल बी अ गुड स्कोर एंड इट्स स्पॉट ऑन।
0: Soumitro, it was an innings of 3 halves where India got off to a flyer in the power play overs, slow down in the middle overs, and then came the final over.
2: Very unusual, because normally you will see the middle overs, you will score better. But nevertheless, 170 is a very good score. We were talking about 180, which was par, which we thought was par for the course. But 170 in this particular Lord's wicket, jahan pe ball was coming a little bit slower. And the Australians, you would have noticed, ki jis tarah se line and length, and they were using the pace of the ball, they were forcing the batsmen to generate the pace to score the runs. Aapko aur ek cheez shrota ko batana chahiye ki ye Lord's ground mein slope hai. Once you beat the infield, then another thing which the Australians will not be happy is the way they drop the catches.
1: 56 रन हरमन ने बनाए, 34 जेमीमा के नाम, शेफाली के नाम 34 और स्मृति ने भी 38 रन बनाए। रविंदर, आखिर के दो ओवर में 36 रन भारत की पारी को मोमेंटम प्रदान कर गया, लेकिन उससे पहले की अगर थोड़ी चर्चा करें, रन अ बॉल खेलती नजर आई स्मृति, रन आउट महंगा पड़ा?
4: डेफिनेटली रन और वो जेमी, खासकर जेमीमा को, जेमीमा से उम्मीद थी थोड़ा सा फास्ट खेलती वो, ये तो लास्ट में हरमनप्रीत ने कवर कर ली दो ओवर में 36 रन बना के। अगर ये नहीं होता तो आप 150 के आसपास स्ट्रगल कर रहे होते। वहां पे आपको देखना, जब विकेट्स आपके हाथ में है, आप रन ए बॉल करी, वहां पे आपको चांस लेना चाहिए था। रन ए बॉल तो एक नॉर्मल एवरेज गेम है, इस गेम में अगर आपको जो आपका एक डू ऑर डाई मैच है उसमें आपको पता है कि 180 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए और रन ए बॉल आप खेल रही है उस समय और विकेट नॉन ऑफ विकेट हाथ में है, वहां पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लैग कर गए। लेकिन हरमनप्रीत ने जो लास्ट ओवर में 23 रन लिए वो एक काफी लास्ट में मोमेंटम शिफ्ट हो गया।
0: ख्याति, इंडिया वुड हैव बीन मलिंग द रिटायर्ड आउट डिसीजन अर्लियर एज वेल।
3: Yeah, they have been taking this decision. I don't know what is the thought behind this. Maybe they must be thinking that when Richa will come, she can, you know, dominate the bowlers. But I seriously think that that was not required at that moment.
1: सौमित्र, अगर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की थोड़ी चर्चा करें, लूसी हैमिल्टन के 3 ओवर में 17 रन, एलिस पेरी के 1 ओवर में 7 रन, जॉर्जिया वेरम के 3 ओवर में 16 रन, काफी किफायती गेंदबाजी, लेकिन किसी का कोटा पूरा नहीं कर पाया कप्तान ने।
2: यस, इनफैक्ट आप देखोगे पहला 10-11 ओवर में दे हैड यूज्ड 6 बॉलर्स, तो नेचुरली सोफी वाज ट्राइंग टू रोटेट द बॉलर्स, क्योंकि एक एक ओवर एलिस पेरी जैसे सीनियर बॉलर को एक एक बॉल देना। बट द पॉइंट इज यू ऑल्सो हैव टू अप्रिशिएट कि जिस तरह से इंडियन बैट्समैन We're using the conditions and playing the

0: ट्रोप्स, खास करके इट वॉज वेरी क्लियर कि यू नो स्मृति मंधाना जिस तरह का क्लासिकल बैट्समैन है वो अपना हिप्स ओवर द हिप्स खेलेंगे, ऑन द स्लाइड्स खेलेंगे, पुश करेंगे, फ्लिक्स मारेंगे और एग्जैक्टली शिफाली वुड यूज आवर पावर एंड शी वॉज क्वाइट सक्सेसफुल. इन एंड आउट शॉर्ट्स खेल रहा था और रन्स भी आ रहा था, वैसे इन एंड आउट इनसाइड आउट शॉर्ट खेल से आउट भी हुआ है, मगर दे हैड गॉट द रन्स इनिशियल जो वी वर सेइंग कि विकेट पकड़ के रखो और उसकी वजह से कोच साहब ने बोल रहा था कि विकेट पकड़ के रखो और फिर आप एक्सेलरेट करो और शिफ्ट करोगे, और उसी ने वैसे ही किया. आपने जैसे बोला कि मिडिल ओवर्स में हाँ थोड़ा सा हमारा एक्सेलरेशन कम हो गया था, बट लेट हरमनप्रीत 207 स्ट्राइक रेट, वी वर टॉकिंग अबाउट हरमनप्रीत स्ट्राइक रेट एंड टूडे शी हैज प्रूव्ड अगेन. बस सिर्फ एक ही चीज है जहां पे उसने 50 बनाया इंडिया हार में, हार ऑलवेज इन द लूजिंग साइड. होपफुली द इक्वेशन विल चेंज टुडे.
1: You highlighted that in the pre-show as well. Now, from one captain to the other, Sophie Molino, in fact, introduced herself in the 10th over. This is the 18th time when she's gotten a wicket in her first over itself. Lekin aakhri ka jo over raha, Ravinder, kaafi mehengi rahi, wo 23 run diye.
2: Dekhiye, ye spinners ke liye normally medium pacers ko recommend kiya jata hai aur prefer kiya jata hai. mujhe samajh nahi aaya ki unhone aakhri over kyon kiya, kyunki last mein wo attack karenge aapke paas, unko wickets hain. Dekhiye, strategy pehle yehi thi ki aapke विकेट हाथ में होनी चाहिए, आप उसको बढ़ा सकते हैं. बिल्कुल जो प्लान था ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर दिया था, वो दो चार रन के बीच में जो दो ओवर जमीमा के साथ रहे उन अगर ओवर को छोड़ दिया जाए, अगर वो ढंग से करते तो 180 प्लस होता. लेकिन लास्ट में आपने सही बोला, स्पिनर्स को मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए था.
3: ख्याति, अब बात थोड़ी भारतीय गेंदबाजी पर कर लेते हैं. श्री चरणी इस विश्व कप में भारत की सबसे सफल गेंदबाज हैं, 4 मुकाबलों में 12 विकेट 5.31 की इकोनॉमी से लिए हैं और 19 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है. दीप्ति शर्मा ने पहले मैच में 5 विकेट लिए थे, इन दोनों पर बड़ा दारोमदार होगा.
4: डेफिनेटली अगर आप देखेंगे श्री चरणी जो है वो फर्स्ट ओवर भी डालती है, मिडिल ओवर्स में भी आके वो विकेट्स लेती है और डेथ ओवर भी डालती है, तो आई थिंक उनको उनसे स्टार्ट कर सकते हैं. और इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट बॉलर वही दिख रही है, बिकॉज अभी हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं, 12 विकेट्स ऑलरेडी ले चुकी है इस टूर्नामेंट में, तो आई थिंक उनसे स्टार्ट करेंगे तो बहुत इनको बेनिफिट मिलेगा. देन इन द मिडिल ओवर्स दे कैन यूज दीप्ति शर्मा, बिकॉज शी इज नोन फॉर टेकिंग विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स एंड ब्रेकिंग द पार्टनरशिप्स.
1: सौमित्रो, कमिंग बैक टू श्री चरणी, द वे शी वेरीज हर पेस, द वे शी अटैक्स दी स्टंप्स.
5: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है. वक्त है समाचार संध्या का, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में रिले किया जाएगा.

0: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। अवर

0: vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल

0: श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हरमिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया

0: बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
3: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी आराम

0: को से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें डिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 7 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां पे आप सुनेंगे ICC वीमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण।
3: God so far has been shorter length, back of the length deliveries, which give ample of time for the batsmen to play their drives. Anything with a good length would be a nice to put them on a back foot, which can leading edge can come, or there's an edge which can go to a keeper. They need the runs to be earned rather than giving some freebies. Unless he's looking for someone to play in the air in the deep backward or mid wicket region for someone to catch it. Otherwise, a fuller length delivery. This was a fuller length delivery. The checks in a stroke. She was looking for a stroke play, but then checks at the very last moment and there's no damage in. So dot ball in this over. 4 balls, 4 runs so far, and it is 1.4 overs already gone. 15 for 1, Australia chasing 171 in this so-called quarterfinal, which is a very important match from the perspective. She does the sound, lifts it, and should get a boundary for this. Again, a shorter delivery. Fabel Litchfield was quick on her feet, dances down the wicket and guides it down to a deep mid-wicket region for a boundary.
4: ये लगा आभा का चौका।
3: So 19 for 1 with that boundary. They've already scored 8 runs in this over so far. 19 for 1, 1.5 overs gone. Kranti Gaur need to check her length. This is not working for her. She's giving a little bit of freebies and time for Australians to play their shots willingly.

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में प्यासा सावन फिल्म का गाना, गीत संतोष आनंद का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं काश फिल्म का गाना। किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में, गीत फारूक कैसर का है, संगीत राजेश रोशन का।

अब सुनते हैं कुदरत का कानून फिल्म का गाना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में. गीत लिखा है समीर ने, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने.

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

सुनने वालों को शिफाली कपूर का नमस्कार। साथियों, फिल्मों में निर्देशक ही वो सूत्रधार होता है जो कैमरे के पीछे रहकर पूरी टीम का मार्गदर्शन करता है, कलाकारों के अभिनय को आकार देता है। निर्देशक की सोच, दृष्टि और सृजनात्मकता ही किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। आज हम ऐसे ही प्रतिभाशाली निर्माता निर्देशक के जीवन कार्य और योगदान पर बातें करेंगे, जिन्होंने अपने अनोखे दृष्टिकोण और सृजनात्मकता से सिनेमा की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। साथियों, हिंदी सिनेमा में जहां एक ओर बड़े बजट की भव्य फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देशक अपनी सादगी भरी कहानियों और मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

28 जून साल 1971 दिल्ली में जन्मे आनंद एल राय, इनका परिवार भारत पाक विभाजन के दौरान सीमा पर खिंची दीवार के बाद सिंध छोड़कर देहरादून चला आया और कुछ समय बाद आनंद राय के पिता ने दिल्ली में अपना आशियाना बना लिया। आनंद राय का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। वहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वे नौकरी करने लगे। साथियों, यूं तो आनंद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी सी महसूस होती रही। दरअसल

नित्यानंद अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। श्रोताओ, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़कर फिल्मी दुनिया में करियर बनाया है। आनंद एल राय भी उनमें से एक हैं। मुंबई आकर आनंद राय ने अपने बड़े भाई रवि राय, जो कि उस समय टीवी धारावाहिकों का निर्देशन कर रहे थे, उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपने निर्देशन की शुरुआत की। ये यूं कहिए कि आनंद ने बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया साल 2007 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स के साथ। यहां आपको बताते चलिए कि फिल्म स्ट्रेंजर्स अल्फ्रेड हिचकॉक की स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन पर बेस्ड थी, लेकिन आनंद राय की यह डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लुढ़क गई, जिसमें जिमी शेरगिल, के मेनन, नंदना सेन, सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार थे।

साल 2008 में जैकी श्रॉफ और परमीत सेठी अभिनीत आनंद राय की अगली फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया।

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने वाले आनंद एल राय, इनके साथ अब कोई निर्माता काम करने को तैयार नहीं था। लगातार फेलियर होने पर आनंद राय ने हार तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, 3 साल का ब्रेक जरूर ले लिया। इन 3 सालों के ब्रेक के बाद आनंद राय के करियर का टर्निंग प्वाइंट आया साल 2011 में, जब उन्होंने तनु वेड्स मनु फिल्म के निर्देशन के साथ अपनी ग्रैंड वापसी की और हर किसी को अपने डायरेक्शन का दीवाना बना दिया।

आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत ये फिल्म आनंद राय की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद

गोविंद राय बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं। साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

आपको बता दें कि फिल्म रांझणा दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझणा ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया।

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला प्रधान फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

आनंद एल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनुवेट्स मनु, रांझणा, तनुवेट्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक हैं।

आपने साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

श्रोताओं, आनंद राय न केवल निर्देशक हैं, बल्कि वो एक सफल निर्माता भी हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले नीलबटे सन्नाटा, हैप्पी भाग जाएगी, मन मर्जियां, तुम बाट, अतरंगी रे, रक्षाबंधन, शुभ मंगल सावधान जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। फिल्म अतरंगी रे की बात की जाए तो ये फिल्म साल 2021 में आई, जो एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी थी। आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल राय पर। देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शिफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के फनकार।

0: छह गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनकी कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार, जिसके हैं ऐसे

तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं। जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं, वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं, न कभी यादों में तब्दील होते हैं, वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन आंखों।

हमेशा यह गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए

इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं।

दोनों का अपना नशा होता है। जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़े। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ यानी कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है, फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूँ तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

0: मीठी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

एफएम बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। आइए सुने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार। समाचार पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।

चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।